0: ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलते हैं कि महात्मा जी, लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी, और वो जाने को बोलते हैं। तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी, वो नहीं बोलते हैं। और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी सी विनती कर दो, कि तो उस पर मुझे लगा कि इसमें बापू बोलना चाहिए,
1: हाँ,
0: थोड़ा सा इमोशनल
1: अब तक
0: रहे।
1: वो महात्मा बोल रहा है, मगर
0: हाँ,
1: अब
0: अब तक
1: जो
0: प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली बोले अरे करना यार काइंड ऑफ। तो लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा। अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला, उसने नहीं नहीं प्रोटोकॉल ही हो जाएगा वो
1: हाँ
0: थोड़ी। मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है,
1: हाँ
0: ठीक है ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं, तो फिक्शन है। और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: बापू पूरे पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट। उसने नहीं बोल दिया। मैंने राज जी को बोला, सेट पे आए वो जब सीन करना था, हाँ चलो चलो। मैंने बोला राज जी ये, हाँ बोलो। मैंने सर ये ऐसा ऐसा है बापू, कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा ऐसा, और फिर मैं ये ऐसा, हाँ बहुत बढ़िया, ही लाइक इट। सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी
1: बिल्कुल
0: चाहिए,
1: बिल्कुल
0: वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो। तो दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंस।
1: क्या बात है।
0: तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसा ही रहा
1: हाँ हाँ
0: कि मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू। वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो चीजें होती गई। कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो
1: जी
0: विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था।
1: अच्छा,
0: तो विक्रम मराठी के में काफी कैरेक्टर्स करता है,
1: बड़ा
0: बहुत
1: नाम है
0: बड़ा नाम है, शोज
1: जी।
0: करता है। हम लोगों ने साथ में फोर इडियट्स जो की थी हमने साथ में पहली फिल्म थी,
1: अच्छा अच्छा
0: उसने कंटिन्यू किया। उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली। मैं वापस चला गया नागपुर, और जब वापस आया तो 4 साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया।
1: जी
0: बोले हम लोग अच्छे दोस्त हैं। ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना। हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर उतने व्यूअर्स नहीं मिले, बट वो आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए। आपको 4.5 घंटे का होगा, बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए हैं
1: जी
0: कि
1: जी
0: कैसे कैसे हुआ होगा। मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट, जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है।
1: अच्छा,
0: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए।
1: आपने बम्बई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है, तो हम उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है। कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ, और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ। मैं हाल ही में गोवा गया था तो मैं वहां पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले। गया तो फैमिली के साथ था, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता। और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
1: आइए सुनते हैं।
0: जी सर।

0: लफ्जों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह
1: नहीं
0: जाती
1: होती।
0: जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है,
1: जी
0: तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने
1: काम किया,
0: कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका
1: कहीं
0: है,
1: नहीं।
0: प्रगति के मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत, मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहां पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ।
0: जी
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय,
0: जी जी
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनैलिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है
0: जी
1: वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो शुरुआत
0: पढ़ाते
1: पढ़वाते थे। मैंने एक वो देखा रंजीत सर के रीडिंग में, डेढ़ पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके
1: अगर कोई चीज, एक शब्द बोला है, उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो
0: जी
1: एक
0: जी
1: छोटा सा, जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर देके बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो, तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है, तो ही विल वर्क ऑन यू।
0: जी
1: एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है, तो किसी दूसरे को दिया
0: अच्छा
1: जाए।
0: अच्छा
1: तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि
0: हाँ
1: एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
0: उस पर ज्यादा जोर दिया
1: ज्यादा
0: जाता
1: जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो
0: है
1: ये छोटी छोटी चीजें हैं
0: जी
1: जो
0: जी
1: मैं
0: जी
1: उनसे सीखा,
0: जी
1: और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं,
0: हाँ
1: परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो, तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी आप सबकी एक अलग अलग वो होती है। कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है, वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग,
0: जी हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: एक्सपेरिमेंट।
1: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके दिखता हूं,
0: जी
1: दूसरी बार दूसरा कुछ करके देखो,
0: बिल्कुल
1: जो कि
0: बिल्कुल
1: टेलीविजन में, फिल्म्स में पॉसिबल नहीं।
0: बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं, मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं
1: नहीं
0: है।
1: आएगा, सही बोला आपने, अपना अपना मजा है,
0: हाँ
1: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
0: हाँ
1: लाइव परफॉर्मेंस,
0: लाइव परफॉर्मेंस
1: वो चीज जो है वो आपको एक गूज़बम्प्स दे जाती है
0: जी। और उसका जो
1: तुरंत
0: भी रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त लाइव तुरंत आना है
1: तुरंत। यू फील सो गुड
0: हाँ
1: कि जो मैंने किया उस

0: किस लेवल, अच्छा एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया,
1: जी
0: कहीं पे बहुत ज्यादा आया।
1: जी
0: तो ये चीज जो है, जो लाइव परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है, और
1: हाँ
0: मैं एंजॉय करता हूँ डेफिनेटली। और आप 15 दिन महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे छह छह दस दस पंद्रह पंद्रह लाइनें डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक कैरेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में।
1: जी
0: महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है, वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है। मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता।
1: बिल्कुल
0: तो दैट मेक्स अ सेंस। और वो जो एक बार हो गया वो तो फिर
1: जी। अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और आप राजकुमार संतोषी साहब से जब मिलने गए और वो घर पे नहीं थे तो उनके सेट आउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा सीन होगा। तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे?
0: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि
1: हाँ
0: लॉकडाउन के दौरान
1: हाँ
0: मैं जब नागपुर में था
1: जी
0: और वहां पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है तो आप कहीं जा सकते थे, तो वहां मैं रामटेक गया। रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे अमोल खंते,
1: जी
0: उनका एक एडवेंचर विलेज है, वो
1: हाँ
0: भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे,
1: जी
0: तो मैं रिक्वेस्ट करके वहां चला गया। वहां पे खाली इसमें नेचर के साथ
1: हाँ
0: मैं बैठा रहता था, एक कॉपी और पेन लिए,
1: अच्छा
0: और वहां मुझे एक पर्टिकुलर कहानी एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होके लिखने की इच्छा हुई और मैंने वो वहां पे लिखी। 5 6 दिन में वहां पे था तो मैं लिख रहा था दिन रात।
1: अच्छा
0: फिर मैं वापस आया, नागपुर में भी रुका, तो वहां भी मैं वो कहानी को डेवलप करता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमन कबीर, वो भी नागपुर से, उसके साथ मैंने वो डेवलप की कहानी।
1: अच्छा
0: और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कैसे प्रेरित करता है, थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: लाइट कॉमेडी है
1: तो
0: स्टाइल
1: ये
0: में।
1: कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
0: हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना,
1: हाँ
0: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के
1: जी
0: साथ, लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
1: जी
0: जो
1: जी
0: शायद कुछ और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है, IPC 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था,
1: अच्छा
0: IPC 324। और वो जरूर बगल में, पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
1: जी
0: जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है,
1: हाँ
0: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म
1: जी जी
0: है, एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी।
1: ओह
0: या
1: क्या बात है।
0: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
1: जी
0: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारेगामा या
1: अच्छा
0: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहां पे वो रिलीज हुआ है। तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया,
1: जी
0: और
1: जी
0: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया।
1: तो
0: हालांकि
1: चलिए
0: बिल्कुल
1: इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
0: सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी।
1: जी आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी, मिसेस सीरियल किलर।
1: जी
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया,
0: अच्छा
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे, और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई,
0: अच्छा
1: छोटा सा किरदार था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
0: जी
1: जब
0: जी
1: तक, जैसे मैंने एक साथ ही, मैं अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक हैं।
0: जी
1: रुद्रा में लीड थे अजय देवगन साहब, तो वो कैरेक्टर मुझे आया। हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का है, छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूं। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार, वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं, उनको
0: अच्छा
1: अच्छा लगा है, और उनको थोड़ी टॉवरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला, अजय देवगन साहब को के सामने कौन टॉवरिंग दिखेगा? ही सेड, नहीं, आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाओगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे भी मैं घर पे बैठने वाला हूं, क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं,
0: अच्छा
1: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं, उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूं,
0: बिल्कुल
1: मतलब मैं परफॉर्म कर लूं, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे। थिंग्स
0: बिल्कुल
1: हैपन दैट वे ओनली। आई वेंट देयर, दे लाइक माई वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा करेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है। सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का था,
0: जी जी जी
1: तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे।
0: अच्छा
1: बट रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना, एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को,
0: जी जी
1: उनकी वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है, तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक
0: जी
1: प्रोजेक्ट मेरे
0: जी
1: मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में।
0: क्या बात।
1: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s,
0: अच्छा
1: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी,
0: अच्छा
1: और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वही 12-13 साल की एक रहेगी, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी, ऐसा
0: अच्छा
1: दिखाएंगे।
0: अच्छा
1: और कैरेक्टर अच्छा था। जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं, कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो,
0: जी।
1: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो,
0: अच्छा
1: दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं,
0: हाँ
1: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा, गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो निगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छा काम भी, एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन, तो
0: कई शेड्स हो सकते
1: कई
0: हैं।
1: शेड्स हो सकते हैं।
0: जी
1: सो जितने रस वो दिखा सकता है, उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा

0: किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था।
1: हाँ,
0: मैंने सुना था वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने पासे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू स्टोरी थी।
1: जी जी
0: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है।
1: ओह,
0: इस टाइप का एक वो कैरेक्टर था, लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस, तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था
1: जी।
0: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे।
1: अच्छा,
0: तो बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट एक साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में बालाजी टेलीफिल्म बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का,
1: जी।
0: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल।
1: अच्छा,
0: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसातें बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही।
1: जी जी
0: दैट वे
1: क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
0: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूं कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मल भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो। लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं,
1: जी।
0: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था, यूं ही चला चल रही।
1: हाँ, मकरंद देशपांडे
0: मकरंद जी थे उसमें,
1: हाँ, वो फिल्म आई,
0: शाहरुख भाई ने भी उसमें
1: हाँ,
0: साथ में उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत है कि उनकी कारवान में वो चले जा रहे हैं
1: जी, जी,
0: और ये गाना चल रहा है। और अभी बारिश आने ही वाली है,
1: हाँ,
0: जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन। और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट, मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो,
1: हाँ,
0: और फिर ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में ही पहुंच जाते हो।
1: क्या बात है। चलिए सुनते हैं यही गीत
0: जी।

0: विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी आया होगा। तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूंगा
0: जी।
1: तो सबसे ज्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में।
0: अच्छा।
1: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, आई प्रोड्यूस्ड इट, क्रिएटेड इट एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन हु इज कैमरा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इन्फॉर्मेटरी फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स
0: जी,
1: मैं एक साइड बनाता रहूं, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ साथ हम हमारे फिल्म्स को भी फंड कर पाए।
0: अच्छा।
1: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर हम, जैसे मैंने आपको बताया आईपीसी 324 एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है, जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई
0: जी,
1: बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके हम उसे पकाएंगे। और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूँ, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर
0: जी।
1: मैंने वागले के बाद में अभी वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है
0: जी,
1: तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था उसी लेवल का कोई एक अच्छा किरदार।
0: और एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को मिल जाए, तो वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला?
1: ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है
0: जी,
1: बिकॉज दायरे ओटीटी अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है। अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी
0: जी,
1: मैं आजाद हूं,
0: हुँ।
1: वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से, और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है।
0: ओहो, क्या बात।
1: तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था, इतने बाजू इतने सर किनले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से।
0: वाह।
1: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था, और फिल्म भी उतनी ही खूबसूरत थी। तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो, वो करने को कभी मिले तो मजा आए।
0: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है?
1: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया, ये गाना ही
0: गाना
1: बहुत एप्ट होगा कि हम जब जी जान से खेलते हैं
0: जी,
1: जी जान से लड़ते हैं
0: जी,
1: तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा, दुश्मन नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं, तो आपको मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल।

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत हो,
1: शख्सियत हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं,
1: ट्रू,
0: वो भी दुर्भावनाएं जो होती
1: दुर्भावना
0: वो भी हमारी दुश्मन है,
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है
0: जी,
1: आपकी फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे आर देयर टू हेल्प मी। आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीजों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है
1: जी,
0: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं,

0: आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहां बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं?
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से काम करना चाहिए जी जी। बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है, ये किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है। अच्छा। क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है।
0: हाँ।
1: और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है। उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें।
0: जी जी।
1: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जोड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा, और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं, जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है।
0: जी जी। हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं
1: जी,
0: और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए। तो विपुल, आप किसे के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा।
0: हाँ हाँ।
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSDFTI ये सब चीजें हमें पता नहीं थी।
0: हाँ।
1: लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं।
0: जी जी।
1: एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टेन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी।
0: हाँ।
1: और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के, उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूँ।
0: जी जी।
1: बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है, मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है।
0: हाँ।
1: जो कि दूर से देख के, ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है।
0: वाह।
1: वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन, मतलब
0: जी,
1: ट्रेनिंग ना हुई हो,
0: बट
1: ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है, वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था
0: जी, जी।
1: कि आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से।
0: सीखने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है, तो हम इस पे बात करेंगे, मगर यहाँ इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
1: जब संघर्ष की बात आई है, तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी,
0: हाँ,
1: उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे।
0: हाँ।
1: ये मुझे बड़ा बेहतरीन गाना लगता है।
0: क्या बात है
1: जी।
0: चलिए सुनते हैं।

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है। इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है उसमें आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में। और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग, सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है,
0: जी
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युडाए। तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो
0: अच्छा
1: तो बहुत अच्छी बात होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अभी यहां पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूं कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहां से, कम से कम राह के पत्थर तो हटा देते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था। कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का।
0: जी
1: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 मेल 3 फीमेल। उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं
0: वाह
1: बतौर कलाकार।
0: वाह वाह
1: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल। उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी कशेकर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी
0: जी
1: और शंतनु रोड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं
0: जी
1: डायरेक्टर,
0: जी
1: ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। ये कंटिन्यू करना चाह रहा था बट देन आई गॉट बिजी विथ कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स,
0: हाँ
1: वो हो नहीं पाया। बट मैं अभी भी चाहता हूं कि एक ऐसा

0: प्रोजेक्ट्स
1: हाँ
0: वो हो नहीं पाया, बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊं कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए, और जो यहाँ पे लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल जिनके पास समय है जो
1: जी
0: गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो वो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो,
1: जी जी जी
0: लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे,
1: क्या बात
0: तो ये
1: है।
0: मेरा सबसे जरूरी है। अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाएगा कैसे जाएगा। तो इस पे भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं,
1: अच्छा,
0: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं।
1: ओह क्या बात।
0: दिस इज वन ऑफ द थिंग। तो ये हमने
1: हाँ
0: रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि ये मैं
1: जी
0: कंटिन्यू
1: जी
0: करूं। तो स्ट्रगल स्मार्ट मैंने नाम भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया, strugglesmart.com, कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो
1: अच्छा।
0: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो। संघर्ष कोई गलत बात नहीं या कुछ निगेटिव सोच वाली बात नहीं है, पॉजिटिव
1: हाँ,
0: बात है।
1: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है?
0: ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये दो
1: जी
0: दो तीन साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही। लोग कांटेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम से अलाइन कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि 3-4 साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है। इट इज विथ मी,
1: अच्छा,
0: द डोमेन नेम इज ऑल्सो विथ मी, जो हमारे
1: ओके,
0: साथ ही है।
1: जी
0: मैं
1: जी
0: उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूँ, और तब तक अगर बाई चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली आई वुड लव टू गाइड देम। विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊं, जितना मैं कर सकता हूं। मैं बहुत बड़ा
1: जी जी
0: कलाकार तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मेरे ख्याल से वो मेरे लिए एक
1: निश्चित रूप
0: योगदान।
1: से, और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और यहां हम कोई गाना सुनते हैं।
0: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
1: जी
0: कि लोग यहां पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते,
1: हाँ
0: कि आपको बोलते हैं कि हाँ भी आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो,
1: हाँ
0: सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा, आपका करेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है। लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे।
1: हाँ
0: तो
1: ना, आप मुख्य कलाकारों में तो हैं
0: बिल्कुल
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है, और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व
0: इम्पोर्टेंस,
1: नहीं है।
0: महत्व नहीं है।
1: ओह
0: तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं, एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास।
1: हाँ
0: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा, शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा, या 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा।
1: हाँ
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, पर वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं,
1: लगे कि मैंने काम
0: लगे कि
1: किया।
0: विपुल देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया है।
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: मेरा
1: बिल्कुल
0: सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग,
1: ओहो
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: तो बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था।
1: क्या बात, क्या बात।
0: बाकी संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। तो
1: वाह
0: संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है।
1: क्या बात, बहुत ही खूबसूरत
0: बहुत
1: गाना है।
0: खूबसूरत गाना
1: आइए सुनते हैं।
0: जी।

0: तो जितने आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी है, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचिस को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका और
0: जी
1: लॉबी ऑफ फेम भी देखा। यहाँ पे कौन
0: हाँ
1: नहीं आया है,
0: जी जी
1: मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं इसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली, मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार।

0: से करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो खजाना है कभी जो कम नहीं होता, है जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता,
1: जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं।

खुदा ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे, बधाई हमने गाई है तो हम शेरा भी गाएंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे, बधाई हमने गाई है तो हम शेरा भी गाएंगे।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में कव्वाली अभी आप सुन रहे थे अधिकार फिल्म से। रमेश पंत ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत था। आप इस वक्त सुन रहे हैं रंग तरंग। लीजिए इस प्रोग्राम की अगली पेशकश।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, दीवाना एल्बम का नाम था। साजिद वाजिद ने म्यूजिक दिया और फैज अनवर ने इसे लिखा था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: कार्यक्रम रंग तरंग की ये पेशकश थी। दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं।

0: कार्यक्रम रंग तरंग की ये पेशकश थी। दीवाना एल्बम से सोनू निगम की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और ये है उसकी अगली पेशकश।

हम किसी से कम नहीं, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरूआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
1: The Security Council has been ineffective.
2: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई उस कदम नहीं उठा पाया है।
1: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए हुर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हुर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 495 अंक की वृद्धि के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 147 अंक बढ़कर 24,191 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। समीर ने इसे लिखा और नदीम श्रवण का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत

पौड़वाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दूरिया फिल्म का नाम था, सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा। अब वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।

0: डियर जिंदगी, ये था फिल्म का नाम। जसलीन की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, कौसर मुनीर ने इसे लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी भी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं जिंदगी और जीवन शीर्षक से जुड़े गीत।
3: तुमसा कोई दूसरा इस समीप हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: काला पत्थर इस फिल्म से अभी ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत था। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: प्रोग्राम यादों की महफिल की अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

मेरी जंग इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

रत छुपा सकता नहीं। कितनी दिलकश है मोहब्बत की जवान,

0: उदित नारायण और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी कसूर। समीर ने इस गीत को लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

मासूम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनूप घोषाल की आवाज में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था आरडी बर्मन की तर्ज। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक पोस्ट या इबारत टेक्स्ट की जाती है, पोस्ट की जाती है, और उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही उन शब्दों में से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से गीत बन रहे हैं, वो लिखना होता है अपने FB कमेंट्स पर। आपके प्यार भरे संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं और मैंने पढ़ भी लिए हैं। बहुत सारे गीत आपने फहरिस्त बनाकर लिखी है वहां पर, और बहुत सारे गीत मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेल खा रहे हैं, लेकिन जिनके मेल नहीं खा रहे हैं वो सुनिए, हमारे सवालों का जवाब भी दें और फिर वहां पर कमेंट कर सकते हैं। हम आएंगे आपकी लिस्ट पर भी, देखते हैं हमारी और आपकी लिस्ट कितनी मेल खाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस प्रोग्राम की, लेकिन उन लोगों के लिए, उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है, हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस प्रकार थी, सितम हो चाहे कितने भी, इस दिल को अब रोको ना यार, रिश्ता अगर सच्चा हो तो हर दर्द भी बन जाता है प्यार, कहीं ठहर जाए ऐसा समा जहां रोज रोज खेले नए ख्वाब, यादें चुपके से आकर मेरी पलकों पर उतर जाएं हर रात, रिश्ता कोई नाम का मोहताज नहीं होता, मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं होता, मन को छूकर मेरे ठहर जाओ तो कभी, मोहब्बत का मौसम यूं ही नाराज नहीं होता, कोई रोको ना इन उड़ते ख्वाबों के समा को, पलकों तले रोज रोज ऐसा ख्वाब नहीं होता। तो बताइए जल्दी से कि कौन से शब्द आपने चुने हैं और कौन से गीत उनसे बन पाएंगे, और शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, उसके बाद आएंगे आपके संदेशों पर।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे आंखें फिल्म से साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत। वैसे इस गीत को बहुत से श्रोताओं ने समझ लिया था, जान लिया था और लिख भी दिया था, तो सबसे ज्यादा जो कमेंट्स हमारे पास आए इसी एक गीत के जो भी आपने सुना है उसके आए थे और बहुत से प्यारे प्यारे संदेश हैं। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। कितने अनमोल है ये रिश्ते, कोई याद न करे तो भी उनसे मिलने की एक उम्मीद रहती है, हमारे श्रोतागण लिखते हैं। और सचमुच यही रिश्ता है आपका, आप श्रोताओं का हमसे यानी कि विविध भारती से, ये हमेशा बना रहे। एक और श्रोता लिखते हैं कि सितम दिल रिश्ता यार, इन शब्दों से सजे आज गीत सुनेंगे और एंजॉय करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश तीन अलग अलग भावनाओं को बयां करता हुआ प्रतीत हो चला है, जहां एक ओर सच्चे रिश्ते की आहट है तो दूसरी ओर प्यार की दास्तान और वहीं तीसरा पहलू यादों और ख्वाबों की दुनिया रच रहा है, यानी जीवन के मिश्रित एहसासों को समेटे हुए यादों और ख्वाबों से सजाए हुए प्यार के रिश्ते जीवन यात्रा को अनंत अभिलाषा और इच्छाओं तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, ये सभी मिले जुले रूप आज आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि काश प्यार ना किया होता तो अच्छा होता, क्योंकि पहले कर्म फिर सितम फिर अपने प्यार के लिए रोना गिड़गिड़ाना, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, दिन रात उसी में लगे रहिए। लेकिन

ये भी है कि प्यार एक ऐसा एहसास है कि हर कोई अपनी जिंदगी में से गुजरता जरूर है, और वो कहते हैं ना कि जरूर करना चाहिए, प्यार इंसान को बदल देता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये भारत जीवन के एक सुंदर उत्सव का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है, जहां प्रेम, स्मृतियां और आत्मीयता मिलकर हमारे रूखे जीवन को एक सजीव कलाकृति में बदल देते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय जीवन के विविध रंगों का मिलन है, और गीत इन्होंने लिखा है जो कि हम शामिल कर सकते हैं। देखते हैं अब कितने सारे गीत शामिल होते हैं आपकी पसंद के। चलिए बिना देरी के अगला गीत आपको सुनवाते हैं और देखते हैं कि कितने सारे लोगों ने ये गीत लिखा है लिस्ट में, और उसके बाद हम अपने सवाल जवाबों पर भी आएंगे। प्रोग्राम का ये अगला गीत

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्रियतमा, फिल्म का नाम, योगेश ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत। आपके खूबसूरत संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और इस गीत की डिटेल्स भी हम तक पहुंच चुकी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच्ची मोहब्बत जिंदगी का वो खूबसूरत ठहराव है जहां वक्त के सितम और हर दर्द भी प्यार में बदल जाते हैं। रूह से जुड़े ऐसे पाक रिश्ते किसी नाम या पहचान के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल सही लिखा आपने। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्ता नाम का मोहताज नहीं होता, ये तो विश्वास, अपनापन, सम्मान और सच्चे एहसास से बनता है। कई बार खून के रिश्ते भी दूर हो जाते हैं और कुछ अनजाने लोग दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि जीवन का अहम हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि ख्वाबों की दुनिया बेहद खूबसूरत होती है, कभी बादल, कभी पानी, कभी कोई जुदा हो गया तो फिर सपनों में आकर मिल जाता है और हम खुश हो जाते हैं। कभी कभी ख्वाब में रिश्ते टूट जाते हैं और सपने में टूटते ही वो रिश्ते भी टूट जाते हैं। रिश्तों की डोर भी नाजुक होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। सपनों के साथ और हकीकत के साथ एक बिल्कुल महीन सी एक रेखा होती है उसके बीच। बस ये जरूर है कि मन उड़ उड़ कर उस तरफ जाना चाहता है, यानी कि सपनों की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि जो हकीकत में नहीं मिलता उसे कहीं ना कहीं वहां प्राप्त करना चाहता है, वहां उसे पाकर आनंदित होना चाहता है। हमारे पहले गीत के बारे में बात करते हुए एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के सफर में कभी सितम मिलते हैं तो कभी दिल को छू लेने वाला प्यार मिलता है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो हर दर्द को मुस्कुराकर सहले और हर मुश्किल में साथ निभाए। बिल्कुल। रिश्ता अगर सच्चा हो तो दर्द की गुंजाइश ही नहीं रहती, सिर्फ प्यार ही प्यार होता है दो दिलों के बीच में, ऐसा भी कहना है हमारे एक श्रोता का। तो ये एक्सपीरियंस की बात है और जिस तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही है हर किसी का अपना अपना अनुभव है। बिल्कुल। और इसीलिए तो हम यहाँ पर साझा करते हैं अपने विचार, ताकि हर कोई अपने बारे में अपने अनुभवों के बारे में लिख पाए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सितम अपनों के अक्सर हमें अंदर तक तोड़ देते हैं, क्योंकि अपनों से चोट की उम्मीद कोई नहीं करता। अक्सर ऐसा दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है और साहिर लुधियानवी ने अपनी मशहूर शायरी में भी इस दर्द को घोल डाला है और वो गीत बहुत प्यारा है, ऐसा इन्होंने लिखा। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जो हिंदी सिनेमा के गीतकार हैं उनको पूरा क्रेडिट जाता है, पूरा श्रेय जाता है इसके लिए। और हर एहसासों को उन्होंने इस तरह से पिरोया है कि हमें लगता है वो हमसे जुड़ा हुआ है, हर गीत हमसे जुड़ा है। लेकिन ये भी है कि जिंदगी में कुछ भी एक सा नहीं होता, बदलाव तो रहता ही है, जीवन बदलता रहता है, स्थितियां बदलती रहती है और मौसम भी तो बदलता रहता है। मौसम का काम ही बदलना है, कहते हैं ना कि मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, तो ऐसा ही कुछ है। अगला गीत समा के ऊपर आप सुनिए और साथ ही साथ क्यों ना, ये जो मौसम बदलता है इसी तरह से बहुत से परिवर्तन हमारी जिंदगी में आते हैं, तो ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आदतें एक बार अगर आ जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। आप मुझे लिखें, मैं इंतजार कर रही हूं आपके संदेशों का।

जमीन आसमां। इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज थी, जैसा कि आप सब लोगों ने अपने संदेशों में भी लिखा है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि क्या बात है, उनकी फहरिस्त से मिलते जुलता ये तीसरे नंबर का गीत भी शामिल हो गया है, ऐसा समाना होता, और बहुत दिनों के बाद ये हैट्रिक लगी है और वो बहुत खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। दूसरे श्रोता हमारे एक लिखते हैं धुनों के बारे में, और उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम के शुरुआत में अनाउंसमेंट उद्घोषणा के पहले जो हमने फिलर बजाया था उसके बारे में वर्णन किया है, साथ ही साथ उन्होंने और भी जो हमने फिलर्स बजाए थे उसके बारे में लिखा है और पूरा जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा समाना होता इसमें भी ये बेहतरीन बांसुरी का प्रीलूड यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, रोनू मजूमदार जी ने बजाया, साथ में गिटार और वाइब्रेटोन। ऐसा समाना होता, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खुशी होती है जब हमें ये सब आप लिखकर भेजते हैं, और अच्छा लगता है कि गीतों के साथ साथ जो म्यूजिक या फिर जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं उसके बारे में भी आप सोचते हैं, उसे इतने संजीदा तरीके से सुनते हैं और लिखते हैं। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सितम सहने वाले को पता होता है फिर भी वो सहता है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई दूर हो या पास, पर प्यार उसके लिए हमेशा हो, कभी साथ कभी दूर, लेकिन हर परिस्थिति में प्यार होना बहुत जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए सुरीला सफर को आगे बढ़ाते हैं और ये अगला गीत सुनते हैं। इसमें आप मुझे बताएं कि अभिनेता और अभिनेत्री इस गीत को जिन पर फिल्माया गया है वो कौन है, वो मुझे लिख भेजिए। और साथ ही साथ हम जहां परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि मौसम किस तरह से बदल जाता है, कभी बहुत ज्यादा भीषण गर्मी थी, फिर बरसात आई तो बस बरसात ही बरसात, उससे परेशान हो गए कुछ लोग लगातार बारिश से, और अब मौसम बहुत खुशगवार है। तो ये जो बदलाव है, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कुछ परिवर्तन हमें करने होते हैं अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए। कुछ ऐसे आदतें, कुछ ऐसी चीजें जो हम अपनी सेहत में ठीक हो, अच्छी हो, इसीलिए अपनाते हैं, हालांकि वो हमें कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें उन्हें अपनाते हैं। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपने अपनाई है अपनी सेहत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, और जो आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छी है?

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में ये नाखुदा फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे, और आपका अंदाजा एकदम सही है, बिल्कुल ये फिल्म आया गया है राजकिरण और स्वरूप संपत पर, बिल्कुल। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर चल रहा है जिसमें विविध भारती के गीतों की झड़ी लगी है। सचमुच सुरीले सफर में एक से बढ़कर एक गीत है और दिल को खुश कर देते हैं ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहां पर आदत की बात की गई है वहां सुबह सूरज के उगते उगने से पहले जाग जाते हैं और ध्यान योग करते हैं, दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से आपका जो स्वास्थ्य है और आयु है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि समय कोई बांध नहीं सकता क्योंकि निरंतर चलता रहता है, हम सभी को समय के साथ ही चलना चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसी आदत है जो हमें जरूर शामिल करनी चाहिए अपनी जिंदगियों में, और अक्सर हम समय की कद्र थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं, या फिर हमारी जो टाइमलाइंस होती है, जो हमने अपने आप को वक्त

वक्त दिया रहता है, उस वक्त से भी हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, समय पर अपना काम समाप्त नहीं करते, जिससे कि बाद में वो जो काम है वो बस इकट्ठा होता चला जाता है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस और इन सब चीज़ों का, परेशानियों का सबब बनता है। तो ज़रूर जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, समय को किस तरह से अच्छी तरह से मैनेज किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, बारिश का नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ, लेकिन मौसम है, मौसम तो बदलेगा जरूर, मौसम निरंतर चलता रहता है और लेकिन बदलता भी रहता है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बारिश भी जल्द ही होगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उठते हैं क्योंकि पूजा और योग दोनों रह जाते हैं नहीं तो, और फिर पूरा दिन ऐसा लगता है कि ना तो योग किया और ना ठीक से पूजा की, और फिर दूसरे जो काम है वो सब रहते हैं। तो हालांकि इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस आदत को अपनी ज़िंदगी में शुमार किया है कि जल्दी उठना है। और ऐसा भी कहते हैं ना कि कुछ दिन यानी कि 21 दिन तक अगर आप एक आदत को करें तो वो फिर आपकी ज़िंदगी में, दिनचर्या में शामिल हो जाती है। तो बस वो जो शुरुआत के कुछ दिन हैं, शुरुआत के कुछ स्टेप्स हैं, शुरुआत के कुछ कदम हैं, बस वो उठाने में वक्त लगता है। बिल्कुल। सुरीला सफर में अब दिल को छू देने वाला एक और गीत आपको सुनवाते हैं। वैसे तो सभी गीत दिल को छू लेते हैं, लेकिन ये गीत, यहां पर एक शब्द छुपा है।

याराना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज में, अनजान ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत था। आदतों की बात की जाए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अभी तो मैंने बहुत देर से आपका प्रोग्राम जो है ज्वाइन किया है, जुड़ा हूं, कुछ तो मिस कर दिया है, तो अब समझ में आ रहा है कि वक्त से जुड़ना बहुत जरूरी है। हमारे एक और श्रोता के लिखते हैं कि पहले वो बहुत ज्यादा खर्चा किया करते थे, लेकिन अब बचत को ध्यान में रखते हुए एक आदत अपना ली है कि अब बचत पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही, और कहते हैं ना कि मौके और मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तो मौका या मुसीबत कुछ भी आए उसके लिए आप हमेशा से तैयार रहिए, और बचत तो बहुत जरूरी चीज है जिंदगी में। एक और श्रोता लिखते हैं कि बुजुर्गों के लिए नियमित मॉर्निंग वॉक ही स्वस्थ रहने का एकमात्र विकल्प है, और ये प्रतिदिन कम से कम 5 किलोमीटर या अधिक से अधिक 8 किलोमीटर वॉक करते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सुबह उठकर छत पर बैठ जाते हैं और योगासन करते हैं, ध्यान करना अच्छा लगता है, और जब सूर्य देवता उदय होने लगते हैं तभी वो सूर्य नमस्कार करते हैं, और कुछ देर तक सूरज की किरणों को देखना भी अत्यंत सुख देता है, जो कि नेत्र ज्योति में भी बढ़ावा करता है, वृद्धि करता है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि ऐसी ही कुछ एक चीजें हैं जो वो पहले कतराते थे करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने छोटी छोटी आदतों से शुरुआत की है अपनी जिंदगी में उन्हें शामिल करने की, क्योंकि वो अच्छी है। जी हाँ, स्वास्थ्य संबंधी चीजें तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी आदतें आप हमें बता सकते हैं, जैसे कि किसी चीज को ना कहना। ऐसा भी होता है कि हम किसी के कहने पे वो चीज करते चले जाते हैं लेकिन हमारा मन नहीं होता है, या फिर हमें उतनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन अगर अगले को बुरा लग जाए तो, रिश्ता टूट जाए तो, किसी को अपमानजनक लगे तो, हम उन चीजों को करते चले जाते हैं बगैर मन के और बगैर क्षमता के, तो ऐसा भी होता है। तो कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें जो आप चाहते हैं कि नई पीढ़ी से भी सीखें और अपनी जिंदगी में शामिल करें, वो भी आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं इंतजार कर रही हूं। फिलहाल हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

सनम तेरी कसम इस फिल्म से ये गीत था। किशोर कुमार की आवाज में गुलशन बावरा ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसीलिए तो ये गाना बना है, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, कि हम नाना भी करते हैं लेकिन फिर भी वो काम कर लेते हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि हंसने से पीड़ा दूर होती है, तो हंसना जरूर चाहिए, ये एक ऐसी आदत है जिसे अपनी जिंदगी में जरूर जरूर शामिल करना चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सालों पहले उन्होंने भावनगर वैशाली टॉकीज में याराना और कालिया एक साथ देखी थी और इन्हें ये गीत सुनकर वो याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि छू के मेरे मन को ये गीत जो था, ये प्रेम, अपनापन और भावनाओं की कोमलता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। इसकी धुन और शब्द दोनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो श्रोता के मन में मधुर यादें और भावनाएं जगा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब आदत की बात आती है तो शाम को खाना बनाना उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो हम ये जो चीज है जो हम बदल नहीं सकते, उसमें कुछ और छोटा मोटा बदलाव ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिससे हमें आरामदायक महसूस हो, कुछ आराम आए, क्योंकि खाना तो बनाना पड़ेगा ना, आप नहीं तो किसी और को खाना बनाना, खाना ये सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जरूर कि अपनी आरामदायक तरीके से और अपनी कन्वीनियंस से, जिसे कहते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बदलाव में सब करने को तैयार हूं, परंतु विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने में कभी भी बदलाव नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार भरे संदेश के लिए, आपके इस प्यार के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें पसंद होता है वो बाकी सबको पसंद नहीं होता, जैसे कि बहुत तेज आवाज में गीत चलाना, बच्चों को अपना सुनना होता है।

कोई और कुछ और सुनना चाहता है, तो ऐसे में जो घर है उसमें जो आवाजों का जो युद्ध छिड़ता है उसकी बात ही अलग हो जाती है। लेकिन फिर वो अपनी खुशी के लिए मोबाइल पर सुन लेते हैं धीरे धीमे आवाज में। जी हाँ बिल्कुल, तो ये जो बदलाव है छोटे छोटे जिसे एडजस्टमेंट्स कहते हैं, ये भी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, है ना? चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में बड़े दिल वाला इस फिल्म से गीत सुन रहे थे। आरडी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते और प्यार पर आज सुरीला सफर उन्हें बहुत पसंद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये भी लिखते हैं एक श्रोता कि जो बात हमें ठीक नहीं लगती उसके लिए ना कह देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात जो हमें गलत लग रही है सामने वाले का दृष्टिकोण एकदम अलग होता है, सही होता है, तो हमें दोनों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सही गलत का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता लिखते हैं कि कहो कैसे रास्ता भूल गए, ये जो गीत है ये सुनते ही उन्हें अचानक ऐसा लगा ये गीत तो सोचा भी नहीं था, तो ये गीत उनके लिए बड़ा अच्छा वाला शौक था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम बिल्कुल जानबूझकर आते हैं, रास्ता भूलकर नहीं आते हैं और बार बार आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आषाढ़ की दोपहरी को गुलजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। एक और श्रोता कहते हैं उनकी सबसे बड़ी बुरी आदत यह है कि सुबह से उठकर रेडियो का कान मरोड़ते हैं और इस आदत से पूरा घर परेशान है क्योंकि उन्हें सुबह सुबह गीत सुनना पसंद नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो आपकी बुरी आदत जो दूसरों को बुरी लगती है लेकिन बुरी नहीं है, इसे बरकरार रखिए, इसे बिल्कुल भी ना बदलें।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं युवा कौशल पर। दोस्तों, युवाओं के सपनों को पंख तो लग जाते हैं, लेकिन उड़ान भरने में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नए दौर में युवाओं के पास अकूत की

प्रतिभा है, बस उन्हें दिशा देने की जरूरत है। तकनीकी और बौद्धिक दृष्टि से आज के युवा जहां बहुत समृद्ध हुए हैं, वहीं उनके कदम भटक भी रहे हैं। करियर के चुनाव में उन्हें दिक्कतें भी आ रही हैं। सोशल मीडिया भी युवाओं के मन को भटकने में अहम भूमिका निभा रही है। तो आइए आज जरा सोचें कि किस तरह हमारे युवा आगे बढ़ें और अपनी प्रतिभा को अंजाम दें।

दोस्तों, किसी ने कहा है, प्रतिभा जन्मजात हो सकती है, लेकिन कौशल लगातार अभ्यास और सीखने से विकसित होता है। हर युवा अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए कुछ ऐसे सोपान हैं जो हर युवा को अपने व्यक्तित्व और कौशल को निखारने में मदद करते हैं। जैसे कि पहला सोपान, स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण। जब मंजिल स्पष्ट होती है तो रास्ता भी आसान हो जाता है। इसके अलावा निरंतर सीखने की आदत, बदलते समय के साथ स्वयं को अपडेट रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। तीसरा सोपान है अनुशासन और समय प्रबंधन। समय का सदुपयोग ही सफलता की नींव रखता है। चौथा सोपान है संवाद और आत्मविश्वास। अपनी बात प्रभावी ढंग से रखना भी एक महत्वपूर्ण कला।

करता है। और पांचवा सोपान है तकनीकी और डिजिटल दक्षता, क्योंकि आज का युग तकनीक का युग है। और आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि सकारात्मक सोच रखें, धैर्य और लगातार अभ्यास करें। यही वो गुण हैं जो किसी भी युवा को साधारण से असाधारण बना सकते हैं।

दोस्तों, आज का युग डिजिटल और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था का युग है। ऐसे में रोजगार के अवसर भी तेजी से बदल रहे हैं। अब केवल पारंपरिक नौकरियों पर निर्भर रहने के बजाय युवा अपने कौशल के बल पर रोजगार तलाशते हैं। वो अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं। यदि युवा तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वे अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता, वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में वे प्रशिक्षण पा सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रिशियन, सोलर पैनल टेक्नीशियन, ड्रोन संचालक और सीएनसी मशीन, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग जैसे तकनीकी कौशल भी आज रोजगार की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। जरूरत है उन्हें अपनी प्रतिभा जानने और पहचानने की। सरकार की ओर से भी बहुत सारे संस्थानों द्वारा बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं, अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। युवाओं को चाहिए कि वे इनका लाभ उठाएं और कम समय में अच्छे रोजगार तलाश सकें। जो युवा स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं, वे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन सेवाएं ले सकते हैं, ई कॉमर्स, डिजिटल कंटेंट निर्माण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपना व्यवसाय भी वे चला सकते हैं। तो युवाओं के सामने रास्ते बहुत सारे हैं, बस जरूरत है कि सही रास्ता वो चुन सकें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन

0: व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद

0: और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
1: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
1: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
0: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: The Security Council has been ineffective.
3: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
2: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमरीका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल

0: और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल टीटीडी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
0: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
0: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ, प्रतिदिन आपका कार्यक्रम

0: रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
1: सूरज कुमार ढाकसे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
1: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
0: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
1: जी,
0: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
1: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं। कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
0: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
1: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
0: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
1: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था। फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
0: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
1: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
0: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
1: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्र वासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
0: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था श्रोताओं। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
1: जी,
0: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
1: जी।
0: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे। ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
1: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला, और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
0: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
1: जी।
0: अभी जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
1: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्र वासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
0: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
1: जी।
0: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश
1: जी,
0: और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
1: तो श्रोताओ, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में
1: जी।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी।
0: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं,
1: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला

0: सो
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
2: धरती का हरियाला उत्सव।
3: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
4: नाना जी, नाना जी।
5: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
4: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
6: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
7: नाना जी,
6: इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
4: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
5: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
6: ये लो, नानी जी भी आ गई।
8: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
5: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
8: हाँ वो तो है।
4: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
8: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
5: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
4: कहाँ से आया है
5: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
4: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
5: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
6: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
5: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
4: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
5: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
4: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
5: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
4: अच्छा नाना जी।
5: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
4: अच्छा।
5: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
4: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
5: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
8: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
5: हाँ।
8: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।
4: ओ।
8: हमारे देश की लगभग 60 से 70% खेती

0: मानसून पर ही निर्भर करती है।
1: बिल्कुल।
0: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
2: अच्छा।
0: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
2: अच्छी अर्थव्यवस्था।
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
2: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
2: ओ।
0: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
1: वही, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
2: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव। और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम, शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनाती। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे।

0: अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है। पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए।
1: अच्छा?
2: जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो। अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा, तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय, हाँ? कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है। मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे, जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ, एक अपराध हो गया।
4: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया। ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र, तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ,
0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
5: नरेंद्रनाथ, तुम सो रहे हो?
6: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
5: क्या सोच रहे हो तुम?
6: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
5: हाँ, बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
6: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
5: नरेंद्रनाथ, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो।

0: प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
1: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
2: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है और यही मेरा कर्तव्य भी है।
1: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्र उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर

मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की, उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे, तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया।

0: स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
2: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सोनाली जी आपको और सुनने वाले हमारी सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को प्यार भरा मंजरी का नमस्कार। और थोड़ा सा आप कहेंगे अच्छा अच्छा सा भीनी भीनी हवाएं आए सब तरफ और बादल भी आए, जहां पानी नहीं बरस रहा वहां बरसे,
0: ये हम प्रार्थना करते हैं
1: और ये दिली तमन्ना भी है। और देखो ना, बादलों का जो परिवार था ना वो इधर से उधर चला गया,
0: यानी हमारे साथ में लुका छिपी खेल रहे हैं बादल।
1: हाँ,
0: है ना?
1: अभी तो उन्होंने कहा कि नहीं अब यहाँ बहुत बरस ली, अब चलो चलते कहीं और, तो कहीं और चले गए। लेकिन कभी ना कभी रात में आके थोड़ा बहुत बरस जाते हैं,
0: और जब रुक जाती है बारिश तो हम पसीने से भीग जाते हैं।
1: बिल्कुल, तो मौसम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन

0: मौसम में अपनी सावधानियां भी बहुत जरूरी होती है ना, कि
1: बहुत
0: क्या
1: सावधानी
0: ध्यान
1: रखना
0: रखना है अपने
1: जरूरी है,
0: को।
1: क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि छाता रख लिया जाए, फिर ऐसा लगता है अरे छाता फालतू में रख लिया, हमें तो गॉगल
0: सही
1: रखना
0: बात है। और देखो इसी के साथ देखो हम लोग अपने विषय की ओर भी बढ़ चलते हैं, वो भी हमें
1: जी।
0: ध्यान रखना है कि भाई आज तो मकई के व्यंजन के बारे में बातें होंगी। हमारे साथियों ने बहुत सारी चीजें लिखकर भेजी
1: हाँ,
0: है ना।
1: बहुत सारे हमारे साथियों ने मकई के व्यंजन लिखकर भेजे हैं, पर जब झमाझम बारिश होती है ना, उसी वक्त वो मकई के व्यंजन खाने में और भी आनंद आ जाता है।
0: बिल्कुल
1: हालांकि बाजार में बहुत सारी नरम नरम मुलायम सी मकई के दाने आ चुके हैं, तो जब बारिश गिरेगी ना तो उस वक्त हम मकई के पकौड़े बनाएंगे, उसकी चाट तो बनती ही है, और बहुत
0: बिल्कुल।
1: सारे मीठे व्यंजन भी मकई के बनते हैं। वैसे हमारे,
0: मकई का हलवा, मकई का
1: हाँ,
0: सूप बनता
1: मकई
0: नमकीन
1: की
0: में,
1: खीर।
0: यानी अनंत है नहीं। और फिर देखो हमारी बातें होंगी पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र, ये भी बड़ा प्यारा सा विषय है और सबके विचार भी आ गए हैं, तो आप भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा प्यारा सा पड़ोसी है, अच्छा मित्र है, ये भी बता सकते
1: और साथ
0: हैं।
1: में मंजरी, जब पड़ोसी का जिक्र चलता है तो व्यंजन जो है ना, कटोरी में डाल के पड़ोसियों को भी दिए
0: आदान
1: जाते।
0: प्रदान होता है, और साथ में कभी कभी चीनी खत्म हो गई, चाय की पत्ती
1: हाँ।
0: खत्म हो गई, इसका भी तो
1: और
0: होता
1: वो थोड़ा थोड़ा
0: है ना।
1: कम होते जा रहा, पर उसमें जो प्यार होता था ना,
0: हाँ
1: उसमें जो उस उनकी जो छोटी सी एक कटोरी भर के जो व्यंजन आता था
0: जी
1: ना, उससे जो हम इतने, हम घर में भी लड़ाई होती कि अरे थोड़ा मेरे लिए भी
0: थोड़ा
1: रखना, वो
0: मेरे।
1: आंटी जो पड़ोस वाली आंटी, उनकी जो फलानी फलानी सब्जी है वो बहुत अच्छी लगती है, तो ये आदान प्रदान फिर से अगर शुरू हो जाए तो उसमें क्या बात होगी।
0: नहीं कहीं कहीं पे तो देखो सोनाली होता भी है, अभी भी हमारे जो अच्छे अच्छे पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बना के देते रहते हैं। और शब्द हमारा विचार आपके, इसमें भाई हिम्मत की बात होगी।
1: और जब हम कभी संकट में आ जाते हैं, संकट की घड़ी आ पड़ती है हमारे जीवन में, उस वक्त हमें हिम्मत देने के लिए हमारे पड़ोसी ही सबसे पहले आते हैं।
0: बिल्कुल। और साड़ियों का संसार, इसमें सोनाली आज किस साड़ी की बात करने वाले हैं हम लोग।
1: आज हम अरनी सिल्क की जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे श्रोता भाइयों ने, हमारी बहनों ने इस विषय में भी बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिए
0: अच्छा
1: हैं।
0: अरनी साड़ी को अरनी भी और अरनी दोनों भी बोला जाता
1: यानी
0: है ना।
1: अरनी भी कहते हैं और अरणी भी कहते हैं।
0: जी। और विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं आज हम, तो सबसे पहले तो विश्व युवा कौशल दिवस की सभी को बधाई दे देते हैं कि सब लोग के बच्चे जो है वो अपने अपने हुनर से आगे बढ़े, है ना,
1: और खूब
0: और
1: तरक्की करें।
0: खूब तरक्की करें, और हम लोग आगे बढ़ते हैं गीत के साथ।
1: सुनते हैं।

0: तो हम भी चलते हैं।
1: बिल्कुल, विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं और हर वर्ष सोनाली 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी ताकि युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और सतत विकास के लिए आवश्यक कौशलों के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत बदलाव हुआ है। आज इतने सारे तकनीकी कोर्स उपलब्ध हो गए हैं कि युवाओं को बेहतर करियर के लिए वो उनको अपनी रुचि अनुसार चुन सकते हैं। जैसे पहले होता था ना कि शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और बैंक जॉब के बारे में, या बिजनेस कर लेंगे या दुकान खोल लेंगे जैसा सोचा जाता था। इनके अलावा भी बहुत से कोर्स हैं, लोगों की सोच बदली है क्योंकि आज इंटरनेट जुड़ गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि युवाओं को रोजगार परक एवं तकनीकी कौशल प्रदान करना। यानी कि समय के साथ साथ बदलाव हुआ है और हमारे युवाओं ने भी, युवतियों ने भी इस चीज को स्वीकारा है।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, साथ ही युवाओं को कुछ कौशल सीखने चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए तो संचार कौशल, यानी अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कहना और दूसरों को ध्यान से सुनना। साथ ही डिजिटल कौशल, यानी डिजिटल स्किल की बात की जाए तो उसमें कंप्यूटर है, फिर इंटरनेट है, ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सुरक्षा है और नई तकनीकों का उपयोग करना। साथ ही एआई की समझ, एआई टूल्स की जिम्मेदारी से उपयोग और उसकी उत्पादकता को बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल, और समस्या समाधान और तार्किक सोच, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल्स की बात की जाती है तो टीम का मार्गदर्शन करना और जिम्मेदारी निभाना भी युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, और टीम वर्क, दूसरों के साथ मिलकर काम करना और सहयोग की भावना रखना, इस तरह की जो स्किल्स हैं वो भी बहुत मायने रखती है। और समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग कर लक्ष्य, समय पर जो लक्ष्य होता बांधा किया जाता है उसको पूरा करना होता है।
0: और साथ ही वित्तीय साक्षरता, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी बजट बनाना, बचत, निवेश और धन का सही प्रबंधन, साथ ही उद्यमिता, यानी नए विचारों को व्यवसाय में बदलने और रोजगार सृजित करने की क्षमता रखना, साथ ही रचनात्मकता और नवाचार, यानी नए विचारों पर काम करना, अलग अलग सोच को विकसित करना और

0: साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और संतुलित व्यवहार करना।
1: बिल्कुल। और सोनाली, इसके साथ साथ भाषा कौशल, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का ज्ञान, अनुकूलन क्षमता यानी बदलती परिस्थितियों और नई तकनीकों के साथ स्वयं को बदलना या ढालना, प्रस्तुतिकरण और सार्वजनिक भाषण यानी आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने अपने विचार रखना, जीवन कौशल लाइफ स्किल्स, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मविश्वास, धैर्य, निर्णय क्षमता और सकारात्मक सोच को समझना। आज युवाओं के लिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे कौशल भी आवश्यक हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम और सफल बना सके।
0: और वैसे ही होता है ना कि आजकल पढ़ाई के साथ साथ माता पिता जो बच्चे 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड में आ गए कि इस तरह के उन्हें कोचिंग भी के लिए भी भेजते हैं, ताकि जो बचपन से ही ये सारी क्षमताएं वो डेवलप कर लेते हैं, अगर विकसित कर लेते हैं तो आगे चल के उन्हें नौकरी में बहुत फायदा होता है। और इसी तरह की बात हमारे साथी ने भी लिखा है कि विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, अच्छे कार्य, उद्यम के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल से प्रशिक्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और प्रतिवर्ष इस दिन को मनाने की घोषणा की गई।
1: बिल्कुल। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि आज के समय में केवल शैक्षिक डिग्री ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल भी सफलता की कुंजी बन चुके हैं। कंप्यूटर, संचार, तकनीकी शिक्षा, उद्यमिता और डिजिटल कौशल युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। भारत में स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे पहले इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विश्व कौशल दिवस का संदेश है, कौशल ही आत्मनिर्भरता और उज्जवल भविष्य की पहचान है। तो अपनी स्किल्स को
0: डेवलप करना चाहिए।
1: और एक साथी ने और भी लिखा है कि कुकिंग स्किल्स से तकनीकी का उपयोग करके भी आप लाभ उठा सकते हैं।
0: बहुत लाभ उठा रहे हैं। कितनी
1: बल्कि
0: सारी गृहणियां जो है वो अपनी कुकिंग स्किल, पहले जो पुराना जमाना हुआ करता था ना कि हम सिर्फ घर में ही खाना बनाते थे, पर आज जो अलग अलग प्रांत के लोग जो हैं वो दूसरे दूसरे प्रांत के डिशेस खाना पसंद कर रहे हैं, और जिससे जो गृहणियां हैं जिनमें कुकिंग की स्किल है उन्हें भी रोजगार मिल रहा है।
1: बिल्कुल। और जो हमारी जो लड़कियां भी हैं वो भी अच्छी अच्छी क्वालिफाइड हैं, एजुकेशन अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छी अच्छी डिशेज बना के कुकिंग स्किल्स को बढ़ावा देकर के कुछ ना कुछ अपना आर्थिक रोजगार, अपने लिए आर्थिक धन
0: कमा रही हैं।
1: तो कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी गुण है, जो भी शौक है, आप उसको आगे बढ़ाइए और अपनी आर्थिक मदद आप परिवार को भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है।
0: यानी बस अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि हमारा ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट है जिसमें हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। और हम अब आगे बढ़ेंगे गीत के साथ।
1: जी,

0: तो सुनाली, बहुत प्यारा सा ये गीत था। तो जैसे इन्होंने कहा कि तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, तो इसी तरह हम सखियों में, सखी सहेली में भी हम दोनों सखियों का भी ऐसे ही रहता है कि एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, है
1: और
0: ना।
1: जब हम साड़ी पहनते हैं
0: फिर भी
1: उस
0: एक दूसरे
1: वक्त
0: की
1: भी,
0: तारीफ, उस समय भी एक दूसरे की तारीफ करते
1: और हमें
0: हैं,
1: तालमेल भी बहुत बिठाना पड़ता
0: बिल्कुल। तो
1: है
0: देखो,
1: ना।
0: आज हम बात करने वाले हैं अरनी सिल्क साड़ी की, जिसे अरनी या अरनी भी कहा जाता है। अरनी सिल्क साड़ी भारत के प्रसिद्ध पारंपरिक रेशमी साड़ियों में से एक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के अरनी नगर में किया जाता है। ये साड़ी अपनी बेहतरीन बुनाई, शुद्ध रेशम, आकर्षक रंगों, टिकाऊ गुणवत्ता और शानदार जरी के काम के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली ये साड़ी आज देश विदेश के फैशन प्रेमियों की भी पसंद बन चुकी है।
1: और अरनी में रेशमी साड़ियों की बुनाई का इतिहास लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद के शासकों के समय इस क्षेत्र में रेशम उद्योग को विशेष संरक्षण मिला था, और समय के साथ यहाँ के बुनकरों ने अपनी पारंपरिक कला को नई तकनीकों के साथ जोड़ा, जिससे अरनी सिल्क साड़ियों की अलग पहचान बनी है। आज भी अरनी में अनेक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी शिल्प से जुड़े हुए हैं, और ये कला केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत भी है।
0: बिल्कुल। और अरनी सिल्क साड़ी का निर्माण कई चरणों में पूरा होता है, जैसे रेशम का चयन, उच्च गुणवत्ता वाले मलबेरी शहतूत रेशम का उपयोग किया जाता है, धागों की रंगाई, रेशम के धागों को विभिन्न आकर्षक और टिकाऊ रंगों में रंगा जाता है, ताना बाना तैयार करना, करघे पर धागों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जाता है, और जरी का उपयोग असली या उच्च गुणवत्ता वाली जरी के बॉर्डर और पल्लू

0: बुने जाते हैं।
1: और साथ ही हाथ करघे पर बुनाई की जाती है। अनुभवी बुनकर कई दिनों तक मेहनत करके एक साड़ी तैयार करते हैं और तैयार साड़ी की मजबूती, रंग और डिजाइन की जांच की जाती है और एक उत्कृष्ट अरनी साड़ी बनने में मंजरी 7 से 20 दिन तक, और जबकि जटिल डिजाइन वाली साड़ियों में इससे भी अधिक समय लग सकता है। और इस साड़ियों में चौड़े और आकर्षक जरी बॉर्डर होते हैं जिनमें मंदिर, मोर, आम, कमल, बेल बूटे और जामिती डिजाइन होती है। और ये साड़ी वजन में बहुत हल्की होती है और जिसके कारण लंबे समय तक पहनने में आरामदायक होती है। साथ ही मजबूत बुनाई के कारण वर्षों तक सुरक्षित रहती है।
0: और तमिलनाडु में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और पारिवारिक आयोजनों में अरनी सिल्क साड़ी विशेष रूप से पहनी जाती है। ये शुभता, समृद्धि और पारंपरिक भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। दक्षिण भारतीय दुल्हनों के विवाह संग्रह में इसका विशेष स्थान होता है सोनाली। और अरनी के हजारों बुनकर इस पारंपरिक उद्योग से जुड़े हैं। वे आधुनिक डिजाइनों को अपनाते हुए भी अपनी प्राचीन बुनाई शैली को संरक्षित किए हुए हैं। उनके धैर्य, मेहनत और कलात्मक कौशल के कारण ही अरनी सिल्क साड़ी विश्व भर में सम्मान प्राप्त कर रही है।
1: और साथ ही स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों में इन साड़ियों का निर्यात होता है और तमिलनाडु के हस्तकरघा उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये साड़ियां सशक्त बनाती है। महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां भी इस उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरनी साड़ियों को केवल ड्राई क्लीन करवाना चाहिए और सूती कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और सीधे धूप में लंबे समय तक ना रखें। अरनी साड़ियों को धोना बिल्कुल नहीं है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानकारी दी सुनाली तुमने। और समय समय पर साड़ी को मोड़ बदलते रहने, जो तह होती है उसको बदलते रहना चाहिए ताकि रेशम और जरी सुरक्षित रहे। अरनी सिल्क साड़ी केवल एक परिधान नहीं बल्कि भारतीय हस्तकरघा परंपरा, उत्कृष्ट शिल्प कला और सांस्कृतिक गौरव का जीवंत प्रतीक है। इसकी बारीक बुनाई, शानदार रंग संयोजन और आकर्षक जरी का काम इसे भारतीय रेशमी साड़ियों में विशिष्ट स्थान दिलाता है।
1: और ये साड़ी हमें उन कुशल बुनकरों की अथक मेहनत और सदियों पुरानी कला की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी विरासत को आज भी जीवित रखा है। इसलिए अरनी सिल्क साड़ी भारतीय संस्कृति और हस्तशिल्प की एक अमूल्य धरोहर मानी जाती है।
0: और हम सभी सखियां जो है वो अपने अपने वार्डरोब में चेक कर लेगी ये साड़ी है कि नहीं है,
1: और नहीं है तो खरीद ले।
0: और फिलहाल ये सुने, गीत
1: सुनते हैं।

0: तो सोनाली देखो कितनी अच्छी सी बातें इस गाने में भी थी, है ना। तो
1: कि जब
0: साड़ी
1: हमारी कोई सहेली साड़ी पहन के जाती है, तो अब अगर हम बोले कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो वो कितनी खुश हो जाती है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो आज भी जब आई थी तो हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे ना, साड़ी तो नहीं लेकिन हाँ कुर्तों पे हम लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। ऐसी बातें हो जाती हैं जब सखियां मिलती हैं।
1: यानी ये जो छोटी से जो तारीफ, जो छोटा सा शब्द है ना, ये हम सभी का मनोबल बहुत कई गुना बढ़ा देता है। तो बीच
0: और
1: बीच में से तारीफ करते रहना चाहिए।
0: तारीफ करने के लिए भी देखो बड़ी हिम्मत क्या कलीना चाहिए रहता है कि आप फिर किस तरह से किस
1: हमारी
0: भाव से
1: हिम्मत बढ़
0: तारीफ करें।
1: जाती है।
0: हमारी हिम्मत भी बढ़ जाती है और हम अभी हम लोग बात भी करेंगे हिम्मत के विषय में कि हिम्मत कैसे अपने अंदर रखनी चाहिए कि हर मुसीबत का सामना भी हम अच्छे से कर सकें। तो हमारे बहुत सारे विचार आ ही चुके हैं। तो अब अंतराल का समय हो चुका है तो
1: जी
0: लेते हैं अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सहेली, और हम लोग बात करने वाले हैं, शब्द हमारा विचार आपका, इसमें हम लोग हिम्मत के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोनाली, देखा जाए जब भी हम हिम्मत की बात करते हैं
0: जी
1: तो केवल कठिन समय में आगे बढ़ने का नाम हिम्मत नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी है। और हर जगह हिम्मत दिखाना समझदारी नहीं होती, जहां विवेक और धैर्य की आवश्यकता हो
0: जी
1: वहां केवल साहस नहीं बल्कि संयम भी जरूरी होता है। हिम्मत कहाँ कहाँ रखनी चाहिए सच्चाई का साथ देने में, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, गलत के खिलाफ आवाज उठाने में, अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर
0: जी
1: भी हमें हिम्मत दिखानी चाहिए, और अपने सपनों को पूरा करने में भी हिम्मत दिखानी चाहिए। असफलताओं से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, है
0: ये
1: ना?
0: तो बहुत सही बात आपने कही है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो दीपक है जो अंधेरों में भी जलता है, हर मुश्किल के सामने सीना तान कर चलता है, राहों में चाहे कितने भी तूफान आ जाए हिम्मत वाले कदम पीछे नहीं हट पाए, गिरकर उठना फिर आगे बढ़ जाना, सपनों को सच करने का यही अफसाना है, जो डर को अपनी मंजिल के बीच न आने दे वही इंसान सफलता का आसमान छू ले, हिम्मत से ही जीवन में नई राहें बनती है, इसी से जीत की खुशियां और उम्मीदें बनती हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जिसके पास हिम्मत होती है उसके लिए असंभव भी एक दिन संभव बन जाता है। हिम्मत वो

0: आवाज है जो हर हार के बाद भी कहती है एक बार और कोशिश करो। ये तूफानों से लड़ना नहीं बल्कि उनके बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना सिखाती है। बहुत सुंदर सी बात लेकर हमारे साथियों ने भेजी है।
1: एक साथी कहते हैं कि हिम्मत का अर्थ केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि एक मानसिक और आत्मिक शक्ति है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से हार मानने से इनकार कर देता है तो वही उसकी असली हिम्मत कहलाती है। ये डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और संघर्ष हमें नया अनुभव देते हैं। हिम्मत रखने वाले लोग इन अनुभवों से अपने भविष्य की नई कहानी लिखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार आपके भीतर हिम्मत की एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत शब्द का अर्थ साहस, बहादुरी और हौसला होता है। हम बोलचाल की भाषा में इसका बहुतायत प्रयोग करते हैं। हम तो हिम्मत हार गए या इस फैसले से हमारी हिम्मत बढ़ गई। ये व्यक्ति कि वो मानसिक शक्ति है जो उसे किसी कठिन परिस्थिति, डर या खतरे का निडरता से सामना करने और बड़े संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा देती है। डर पर काबू पाने की क्षमता साहस को दर्शाता है। किसी मुश्किल काम को करने का पक्का इरादा, जब कोई दिलेरी पराक्रम की बात होती है, इसे पराक्रम, दिलेरी, शौर्य या जीवट भी कहा जाता है।
1: एक साथी कहते हैं, एक मुहावरा है, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। अगर हम कोई असंभव कार्य करने की हिम्मत करते हैं तो खुदा यानी ईश्वर जरूर मदद करेगा। बस आपको खुद पर विश्वास रखते हौसला बढ़ाए रखना है। फिर वो व्यापार करने वाले हो, कारोबारी हो, पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, हिम्मत से जीवन नया पार लगा सकते हैं।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो आंतरिक शक्ति है जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। ये डर को खत्म नहीं करती बल्कि डर की मौजूदगी में इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसी से इंसान को सफलता मिलती है। हिम्मत वो सीढ़ी है, इनको लिखना है, जो हर हार को भी जीत में बदल
1: बदल
0: देती
1: देती।
0: है। बहुत सुंदर सी बात है कि हिम्मत अगर होगी, अगर उसकी सीढ़ी पर हम चढ़ गए तो हमारी हार जो होती है ना, वो भी जीत में बदल जाती है। और हिम्मत तो हमें देखो दिखानी पड़ती है। अभी कोई नया काम हम सीखते हैं, नई चीज सीखना चाहते हैं, जैसे वाहन चलाना है, स्कूटर चलाना या कार चलाना है, तो हमें हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है, तभी हम सीख सकते हैं।
1: बच्चों को भी हमें हिम्मत देना पड़ता है।
0: बिल्कुल।
1: जब नए नए बच्चे चलना सीखते हैं तब भी डरते हैं, पर माँ जब उसे थाम लेती है कि डरो नहीं, हम हैं साथ में, तो वही हिम्मत उसकी ताकत बन जाती है।
0: बिल्कुल। इसी तरह बच्चे जब पढ़ने वाले होते हैं, स्कूल जाने वाले होते हैं, तो वो किताबें देख के डरते हैं, विषय देख के डरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, तो उन्हें हिम्मत दिखानी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि देखो अभी हम समझाते हैं, तुम समझ जाओगे, डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, दिमाग पर जोर मत दो, आराम से सुनो। ऐसी बातें करते तो उनका उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है, तो वो हर चीज कर लेते हैं।
1: परीक्षा के समय में भी हिम्मत जुटाते हैं ना हम, हिम्मत बढ़ाते हैं बच्चों की, विद्यार्थियों की, देखो घबराओ नहीं, परीक्षा अच्छे से देना। अगर किसी ने पीठ पर हाथ थपथपा दी कि देखिए तुम अच्छा कर रहे हो, परिणाम अच्छे ही होंगे, और अगर परिणाम इधर उधर हो भी गए तो डरने की बिल्कुल भी
0: बिल्कुल
1: बात नहीं है। इस तरह से अगर कोई हमारे इर्द गिर्द हिम्मत बढ़ाने वाले लोग होते हैं ना, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होता है।
0: बिल्कुल सुना ली। और इसी के साथ साथ हमारे एक साथी और लिखते हैं, हिम्मत साहस हौसला इसके कई रूप है। बड़ी से बड़ी स्थिति को डट कर सामना करना हिम्मत का काम है। किसी भी गलत बात के लिए आवाज उठाना बहुत हिम्मत का काम है। अपने मन की ना सुनकर सही राह पर चलना भी हिम्मत का काम है। कोई बात किसी की ना पसंद आए, सही ना लगे, उसको मना करना, ये भी बहुत हिम्मत की बात है। हिम्मत के रूप तो कई हैं। बचपन में तो मम्मी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी। अगर गलती करी करते थे तो डांट पड़ जाती तो चुप रहकर सुन ही लेते थे। हिम्मत नहीं होती तो सर नहीं होती थी सर उठाने की।
1: यानी पुराने जमाने की बात ही कुछ और हुआ करती थी।
0: देखिए मम्मी ही नहीं भाई, पापा लोग से, पिताजी लोग से भी, बड़े
1: उनकी आंखों से ही डरते थे,
0: उनकी आंखों से डरते थे। तो ये बात थी कि उस समय हम लोग अगर वो कुछ कहते थे तो हिम्मत नहीं होती थी कि हम उन्हें जवाब दें। आजकल पलट के जवाब सुनने को मिल जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो ये तो एक ऐसी आदतों की बात होती है, लेकिन हिम्मत अगर आपके अंदर है, हौसला है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे फौजी भाइयों और सिपाहियों, सैनिकों में बहुत हौसला होता है, हिम्मत होती है कि सरहद पर खड़े होकर वो दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और देश के प्रति अपनी हिम्मत और जज्बे को दिखाते हैं। तो उनको हमें बहुत बहुत सलाम नमस्कार करना चाहिए
1: और गीत सुनना चाहिए।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।

0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: तो भाई देखो सोनाली, अब हमारी बात होने वाली है पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र। इस पर हमारे साथी लिखते हैं कि इसका जवाब एक लाइन में नहीं है। पड़ोसी हो सकते हैं सच्चे मित्र, पर होते ही हैं, ऐसा जरूरी नहीं। रात 2 बजे तबियत बिगड़े उस समय दोस्त और रिश्तेदार फोन पर होंगे, पर पड़ोसी दीवार के उस पार हर दिन की छोटी छोटी जरूरतें आपसी रिश्ते को गहरा करती है। लेकिन यही पड़ोसी मित्र कब नहीं बन पाते जब सिर्फ दीवारें साझा हों, पर दिल नहीं, ईर्ष्या, राजनीति, शोर शराबा या दखलंदाजी से पड़ोस का रिश्ता खराब भी हो सकता है। तब वो सिर्फ फ्लैट नंबर बनकर रह जाते हैं। पड़ोसी अपने आप में मित्र नहीं होते, उन्हें मित्र बनाया जाता है। एक नमस्ते, एक कप चाय, त्योहार पर एक प्लेट मिठाई, बस इतनी पहल से दीवारों के बीच का रिश्ता भी दिल का रिश्ता बन जाता है। वाकई में जब कोई दिक्कत होती है तो एक दूसरे के ही काम आते हैं हमारे पड़ोसी, जो भी होते हैं, सब किसी के भी पड़ोसी हैं, वो एक दूसरे के काम ही आते हैं। तो उनके साथ अपना संबंध बना के रखिए, क्योंकि रिश्तेदार तो दूर होते हैं, अचानक आपको दिक्कत आएगी तो वही आपके काम आएंगे, और आप उनको दिक्कत आती तो आप उनके लिए मदद के लिए खड़े हैं।
2: हमारे एक साथी लिखते हैं मंजरी कि ये सच है कि पड़ोसी हमारे लिए रिश्तेदार से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपदा के समय रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। हमारे साथ तो पड़ोसी के संबंध को प्रगाढ़ बनाने में उनके सबसे छोटे बच्चे ने बड़ी भूमिका निभाई है। 3-4 महीने से लेकर अब 1.5 साल का होने तक वो बच्चा हमारे साथ ऐसा घुल मिल गया है कि अब अपने घर से ज्यादा हमारे साथ रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, देर रात कभी भी दादी बाबा कहते हुए दरवाजे पर आ जाता है, और हम भी उसके भोलेपन के व्यवहार से ऐसे बन चुके हैं कि सब काम छोड़कर उसे बुला लेते हैं, और फिर हमारे घर में उसकी छोटी छोटी शरारतों से एकदम से रौनक आ जाती है। उस बच्चे ने अपने निश्चल और नटखट प्रेम से हम दोनों परिवारों को एक साथ बांध दिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर।
1: और एक साथी और लिखते हैं कि पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र ही नहीं बल्कि सच्चे रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी हमारी मदद के लिए पहुंचते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मुझे 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वहां से लौटने के बाद बहुत परहेज वाला खाना खाने को कहा गया। मेरे घर के सामने वाली आंटी ने रोज कुछ ना कुछ बनाकर मेरे लिए भेजती थी ताकि मेरी मम्मी को ज्यादा परेशानी ना हो। मना करने पर बोलती थी कि जब मुझे जरूरत होती है तब तुम भी तो जी जान से सेवा करती। वाकई में एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार रहेगा तो आपका घर परिवार और आपके अगल बगल से लेकर पूरा मोहल्ला भी खुशहाल रहेगा, क्योंकि सबके पड़ोसी ऐसे हो जाएं तो।
2: एक साथी ने लिखा है कि पहले सगो पड़ोसी, सगे संबंधी तो दूर दूर रहते हैं। इस बात पर यह कहावत पड़ी होगी कि सगा पड़ोसी, इसलिए जो अच्छे संबंध हो तो वो ही पहले सुख दुख में भागीदार बनता है, इसलिए पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि एकल या विभक्त कुटुंब पद्धति में अब पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र तथा रिश्तेदार बन रहे हैं। जी हाँ, कभी कभी वो हमारी प्राइवेसी को जरूर डिस्टर्ब कर देते हैं, परंतु सुख दुख और आपातकालीन संकट में वो ही तो सबसे पहले हमारे काम आते हैं, सहारा बन जाते हैं। बदलती समाज व्यवस्था में पड़ोसी जीवन का अहम हिस्सा है। त्योहारों की रौनक और सुख दुख के सच्चे साथी बन गए हैं। थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में होते हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए। दरवाजे से दरवाजा जुड़ा है, जुड़ा रहे दिलों का तार। खुशी, गम और हर मुश्किल में काम आते हैं पड़ोसी मित्र बार बार। क्या बात है।
2: एक साथी लिखते हैं, पड़ोसी हमारे सबसे निकटतम सहयोगी और सच्चे मित्र होते हैं। आपातकाल में दूर बैठे रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही उपलब्ध होते हैं। एक अच्छा पड़ोसी सुख दुख साझा कर जीवन को सुरक्षित बनाता है। और पड़ोसियों के या पड़ोस धर्म के बारे में हम अधिक पढ़ सकते हैं। यदि आप पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या आप जानना चाहेंगे एक दूसरे के साथ तालमेल और सद्भाव कैसे बढ़ाएं? त्योहारों और समारोहों में सहयोग के तरीके किसी भी अनबन को सुलझाने के उपाय हम जान सकते हैं। भैया एक उसमें कटोरी में डाल के कुछ मिठाई दे दी तो पड़ोसी भी ये जो संबंध जो है ना प्रगाढ़ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये छोटा सा बर्तन।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक साथी लिखते हैं, सोनाली पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र हैं। अब ये बहुत अचंभित और कहानी सुनने जैसी बात लगती है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी आज भी है, पर आज की जो जैन जी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। प्राइवेट कॉलोनी में अब ये दूरियां बढ़ गई है, फ्लैट और सोसाइटी में ये ज्यादा दिखाई देती। मैंने कोरोना काल में प्राइवेट कॉलोनियों में को भी देखा और सोसाइटी और फ्लैट के सिस्टम में भी देखा है। फ्लैट वाले बहुत अच्छे पड़ोसी साबित हुए प्राइवेट कॉलोनियों के हिसाब से। हमारे जमाने की वो पड़ोसी नहीं कि किसके घर की दाल में आज कौन से मसाले की छौक पड़ी है, वो भी पता चल जाता था। और कहने पर बड़ी

0: सौंधी सुगंध आ रही है तो कटोरी दाल भी आ जाती थी, या अगर कोई 2 दिन नहीं दिखाई दिया तो तीसरे दिन आपके घर आकर उनसे पूछ लिया गया, आप 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? ये भावनात्मक लगाव खत्म हो गया है जो सचमुच चिंतनीय है। बहुत इन्होंने पते की बात
1: बहुत
0: लिखी है
1: सही बात की, और
0: जी।
1: खासकर शहरों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। छोटे शहरों में और गांवों में अभी भी लोग पड़ोसियों के घर हक से जाकर बैठते हैं, हक से खाना खाते हैं,
0: जी
1: वहीं पर रह भी जाते हैं, पर यहाँ पे शहरों में बहुत ही गंभीर परिस्थिति आ चुकी है। पर इस गंभीर परिस्थिति को हम हल्का करेंगे गाना सुनकर।
0: जी

0: तो भाई देखो सोनाली, तुम आई तो मैं सोच रही थी आज तो तुम पक्का मुझे मकई के कुछ कुछ व्यंजन खिलाओगे, लेकिन तुम लाई नहीं। चलो हम रेसिपी पढ़ के संतुष्टि दे
1: भाई बारिश तो गिरने दो, उसके बाद में हम कुछ, बारिश गिरने के बाद ही मकई
0: चलो
1: खाने
0: चल,
1: का
0: चलो
1: आनंद
0: माफ
1: बढ़ता
0: किया
1: है
0: है ना,
1: जी।
0: चलो रेसिपी पढ़ के अपनी भूख को शांत कर लेते। हमारे साथी ने लिखकर भेजा है मकई की चाट, इसकी सामग्री नोट कीजिएगा। एक एक 1.5 कप या 2 कप स्वीट कॉर्न या देसी भुट्टे के दाने। सब्जियों में आपको लेना है 1 छोटा प्याज, 1 टमाटर और 1 हरी मिर्च। और मसाले में आपको लेना है 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और नमक आपके स्वाद के अनुसार, काला नमक या आप सादा नमक भी ले सकते हैं। और इसमें 1 बड़ा चम्मच मक्खन लेना है आपको, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको बनाने की विधि है कि आप भुट्टो को उबाल ले एक पैन या बर्तन में पानी डाल करके, कॉर्न के दाने आप 5 से 10 मिनट उबालिए और इसको छान लीजिए। तड़का लगाने का लिए आपको एक पैन में मक्खन गर्म करना है, उसमें उबले हुए कॉर्न 1-2 मिनट के लिए भूने। आप बिना भुने भी इसकी चाट बना सकती है। और इसमें मसाला मिलाए जो आपने फ्राई किया है, उसको मसाला मिलाए। 1 बड़े कटोरे में गर्म या सामान्य कॉर्न ले और इसमें सभी कटी हुई सब्जियां, प्याज टमाटर हरी मिर्च और मसाले, चाट मसाला जीरा पाउडर लाल मिर्च नमक आदि डालें, मिला लें। नींबू का रस डाल दें, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से आप मिलाएं और ये आपकी चटपटी मसालेदार कॉर्न चाट तैयार हो
1: यानी
0: गई।
1: जो लोग डाइटिंग करते हैं वो भी खा सकते हैं,
0: बिल्कुल खा सकते हैं, अनार के दाने भी आप डाल सकते हैं और
1: हाँ।
0: पड़ोसियों को चाहते हैं आप, है ना।
1: और मकई का हलवा बनाने की विधि
0: वाह
1: लिखकर भेजी है कि ताजे नरम कच्चे भुट्टे के दाने को मिक्सी में से पीस ले, फिर एक पैन में घी गरम करके भुना हुआ मकई का पेस्ट डाले। अब तब तक भुने जब तक वो पैन ना छोड़ने लगे, अर्थात पैन में चिपके नहीं। फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक पकाए। तैयार है पौष्टिक मकई का हलवा। ऊपर से मेवे डालकर हलवा सर्व करें। और इसमें अगर आपने ज्यादा दूध डाल दिया और थोड़े से दाने ऐसे उबले हुए बिना पिसे हुए दाने डाल दे तो मकई की खीर भी बन सकती है।
0: क्या बात है। और एक साथी लिखती है कि मेरे घर मकई की सब्जी बनती है वो कुछ इस तरह से कि सबसे पहले बिना छिलके वाले साबुत मकईयों को

0: फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। तैयार है पौष्टिक मकई का हलवा। ऊपर से मेवे डालकर हलवा सर्व करें। और इसमें अगर आपने ज्यादा दूध डाल दिया और थोड़े से दाने ऐसे उबले हुए बिना पिसे हुए दाने डाल दे, तो मकई की खीर भी बन सकती है।
1: क्या बात है। और एक साथी लिखती है कि मेरे घर मकई की सब्जी बनती है, वो कुछ इस तरह से कि सबसे पहले बिना छिलके वाले साबुत मकईयों को हल्दी नमक पानी के साथ कुकर में उबाला जाता है। ठंडा होने पर इसके 1 से 3-4 पार्ट में इसको काटा जाता है। उबली हुई मकईया के टुकड़े प्याज आलू टमाटर की सब्जी में मिलाकर 4 मिनट तक पकाया जाता है, ताकि सब्जी का मसाला मक्की के टुकड़ों में आ जाए। ग्रेवी गाढ़ी या पतली आप चाहो तो इसे रख सकते हो। और मकई के दानों के आप बेसन में मिला करके पकौड़े बना लीजिए, है ना।
0: और एक है ना, सखी ने लिखा है कि भुट्टे के दाने का छिलका या चीला, यानी दाने को बारीक पीस ले। अब इसमें कटी हरी मिर्च, नमक, 1-2 चम्मच बेसन या चावल का आटा या सूजी बारीक कटा प्याज मिला ले और तवा पर इसका चीला बनाए। ये बहुत पतले नहीं बनते, थोड़े मोटे रहते। अगर इसमें आप प्याज नहीं मिलाना चाहते तो बिना प्याज के बहुत अच्छी लगती है। चटनी या दही के साथ खाते, पर मैं तो कहूंगी किसी की जरूरत नहीं, खुद ही बहुत स्वादिष्ट और मीठे लगते हैं। और मकई ना दो तरह की आती है, एक पीले रंग की मकई होती है और सफेद। तो पीले रंग के जो दाने होते हैं ना मीठे होते हैं, और सफेद वाले जो होते हैं इतने मीठे नहीं होते, यानी फीके होते हैं। तो जब नमकीन डिश बनाना होता तब सफेद वाले मकई का इस्तेमाल करें तो
1: बात है
0: ज्यादा
1: सोनाली,
0: अच्छे।
1: तुमने बहुत अच्छी सी टिप्स दी है, तो बड़ा स्वाद आ गया इन सब रे व्यंजनों को सुन करके, देख करके और पढ़ करके। तो अब चलो एक गीत सुन लिया जाए।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली, मकई के सूप के बारे में भी बता देते कि मकई के दाने इसकी लेना है आपको, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर लेना है, और सब्जी को हल्का भूने, पानी में डालकर उबालें, थोड़ा कॉर्न पीस कर मिलाएं ताकि सूप गाढ़ा हो जाए, और गर्मा गर्म आप इसको परोसें।
1: तेने अभी जब सर्दियों के दिन आते हैं या फिर जब झमाझम बारिश गिरती है, जब वातावरण एकदम से ठंडा हो जाता है, उस वक्त ये गरम गरम सूप जो है ना, ये बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत भाता है। भले ही थोड़ी सर्दी हो जाए ना, उस वक्त भी ये सूप दे दे तो बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किचन में जाते हैं, कुछ नई चीज हमें बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें अपना कौशल भी दिखाना पड़ता है, और साथ में हिम्मत भी बहुत दिखानी पड़ती है कि जो हम बना रहे हैं
1: जी
0: वो सही बनेगा और लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और जब अच्छी चीज बनती है तो लगता है थोड़ी सी पड़ोसी को दे दे। तो यानी कहना चाहिए कि हमें आज के सारे विषयों को मिलाकर एक अच्छी नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों को बढ़िया बढ़िया कुछ ना कुछ खिलाते
1: और
0: रहना
1: श्रोताओं को
0: चाहिए।
1: कहते हैं हम धन्यवाद और
0: जी,
1: लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और मंश्री वर्मा का नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के मेहमान ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: दोस्तों नमस्कार, आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक साहित्यकार को जो नाटक भी लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं, कहानियां और उपन्यास भी लिखते हैं। विवेक रंजन जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के माध्यम से आपको, विविध भारती परिवार को और तमाम श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
2: बड़ा आत्मीयता का भाव, सारस्वत भाव।
1: क्या
2: और जिस ढंग से नाटक पर मुझे अभी साहित्य एकेडमी, मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी से अवार्ड भी मिला और विविध भारती की पहचान हवा महल से है मेरे जहन में। बचपन से हम लोग 8:15 का इंतजार करते थे और हवा महल का बहुत बड़ा
1: अब 8 बजे का समय हो गया।
2: 8 बजे का हो गया। जी हाँ
1: जी। और भी जो बहुत सारे पुराने प्रोग्राम है, छाया गीत, संगीत सरिता, वो अभी भी ब्रॉडकास्ट?
2: जी हाँ जी हाँ, छाया गीत नियमित सुनता था मैं। हाँ। और कहीं हम लंबी यात्रा पर जाते हैं तो

0: एफएम विविध भारती ही लगा लिया जाता है।
1: क्या
0: और
1: बात है।
0: आपको बताऊं ममता जी कि एक दिन बड़ा रोचक प्रसंग हुआ। मेरी जो श्रीमती जी हैं उन्होंने कहा आज खाना नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले एफएम रेडियो नहीं बज रहा है और मैं विविध भारती सुने बगैर खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये विविध भारती की लोकप्रियता है। और आप जैसी रेडियो सखी, आपकी बहुत सारी छाया गीत मैं बड़े अच्छे से सुनता रहा हूं और
1: धन्यवाद।
0: मुझे प्रसन्नता है कि आज आपसे बातचीत हो रही है। आप कहानीकार भी हैं, आप उपन्यासकार भी हैं और साहित्यकार हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपके बारे में चर्चा करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम सबसे पहले विवेक रंजन जी जानना चाहते हैं आपसे कि ये जल्लाद क्या है, कहाँ से विचार आया ये नाटक लिखने का, इसके लिए पुरस्कार भी मिला आपको?
0: जी हाँ, मुझे मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी ने अभी रिसेंटली जो साहित्य एकेडमी के पुरस्कार डिक्लेयर किए उसमें हरिकृष्ण प्रेमी नाट्य पुरस्कार 51,000 रुपए का है, वो घोषित हुआ है मेरी नाट्य कृति जलनाथ पर। और जलनाथ कैसे लिखा मैंने, मैं आपको बताऊं, विश्व जल वर्ष था यूएनओ का, तो नॉर्डिक देशों के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें मुझसे ये चाहा गया कि मैं पानी के महत्व को लेकर के कोई पौराणिक आख्यानों को जोड़ करके एक नाटक तैयार करूं। तो मैंने ये विभिन्न जो हमारे धार्मिक या कहें आध्यात्मिक चिंतन वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि जैसा आप जानती ममता जी कि इस सृष्टि का उदय भी पानी से हुआ और जो अंत की परिकल्पना है आध्यात्मिक रूप से वो भी जल प्रलय से है।
1: जी हाँ।
0: आप जानती हैं कि हमारे ऋषि मुनि पानी से ही मंत्र उच्चारित कर श्राप दे दिया करते थे, वरदान दे दिया करते थे। और न केवल भारतीय मनीषा के उसमें, हम इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें तो
1: जल ही जीवन है
0: जल
1: ये
0: ही
1: कहा
0: जीवन
1: जाता
0: है,
1: था।
0: पानी का लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें आज भी कितने सारी कंट्रीज हैं जहां पर शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, जबकि हम विज्ञान से इस कदर प्रगति कर चुके हैं। अभी आपने देखा कि तेल खाड़ी देशों में जो युद्ध हुआ वहां भी जो समुद्र के पानी को शुद्ध करके पेयजल बनाया जाता है, तो वो एक बड़ी समस्या थी कि अगर वो उन पानी के संयंत्रों पर बिजली की कमी या कोई के कारण से पानी नहीं बन पाएगा तो जीवन के लिए संकट उपस्थित हो
1: जी।
0: सकता। तो पानी का महत्व निर्विवाद है।
1: तो इसमें ये जो नाटक है ये जलनाद,
0: जी
1: इसमें कैसे पात्रों का चयन किया आपने, संवाद कैसे गढ़े, कहाँ से आपके पास आइडिया आया,
0: इसमें,
1: क्या रिसर्च किया
0: जी
1: आपने?
0: हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च करी और पानी से संबंधित जितने दृष्टांत मुझे मिलते चले गए उनको नाट्य रूपांतर में मैं बदलता रहा। तो 12 इसमें नाटक हैं। जैसे मैं एक कविता का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करूं
1: जी।
0: जो मैंने ऋग्वेद से, जो हमारा एक ऋग्वेद का मंत्र था जिसमें जल देवता को संबोधित करते हुए
1: जी।
0: बात की गई है,
1: हाँ
0: तो मैं उससे एक जो उसका हिंदी मैंने भाव अनुवाद किया है एक अंतिम पैरा पढ़ देता हूं।
1: जी,
0: हे
1: जरूर।
0: जल के देवता, मेरा आचरण अब तेरे जैसा हो, तेरा रसायन मेरे पोर पोर में समा जाए। तू प्रवाहमान अग्नि है, तू आ मुझे तेजस्वी बना, वर्चस्व प्रदान कर। जिस प्रकार हम जानते हैं ये ऋग्वेद की ऋचाएं
1: ऋचा।
0: हैं, उसका हिंदी अनुवाद है अंत में मैंने किया कि पानी की एक बहुत बड़ी गुण है कि वो जिस पात्र में रखा जाता है वह रेप आकार ले लेता है। पानी का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसमें जो रंग मिला दिया जाए वह उस रंग में रंग जाता है। तो ये एक, इसका अगर हम बौद्धिक विवेचन करें तो ये हमारे लिए जीवन सूत्र भी है।
1: जी, बहुत बढ़िया। और आपने व्यंग्य भी लिखे हैं,
0: जी हाँ,
1: और एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं, तो हरिशंकर परसाई जी को आपने पढ़ा है, उनसे क्या कुछ पाया, क्या कुछ सीखा आपने?
0: ममता जी, व्यंग के ट्रिपॉइड मध्य प्रदेश में हैं।
1: जी।
0: शरद जोशी जी, बाद में उनकी कर्मभूमि मुंबई रही, वो भोपाल से थे।
1: उनका प्रतिदिन एक कॉलम
0: जी
1: आता था।
0: हाँ,
1: और
0: और हरिशंकर परसाई जी का एक कॉलम आता था सुनो भाई साधो,
1: सुनो भाई साधो जी।
0: तो मैं ये सब पढ़ते हुए अखबारों में बड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार साहित्यिक रहा है तो मुझे पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो ये सब पढ़ा मैंने। रविन्द्रनाथ त्यागी जी, वो भी मध्य प्रदेश के थे।
1: जी।
0: और जो एक जन कहा जाए कि व्यंग के ट्रिपॉइड, ये तीन स्तंभ रहे हैं और उनका पूरा साहित्य मैंने पढ़ा। और अवचेतन में कहीं ना कहीं एक व्यंग के बीज
1: आपके भीतर
0: अंकुरित होते रहे।
1: जी।
0: व्यंग

0: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम
1: जी
0: कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं और बड़ा लोकप्रिय है, लोग उसे पढ़ते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। और मेरी व्यंग की 11 किताबें हैं जिनमें मेरे अनेक व्यंग संग्रहित, समय समय पर जो लिखता गया वो किताबों के रूप में आते चले गए एक के बाद एक।
1: कुछ महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र करना चाहेंगे आप?
0: हाँ जरूर, मैंने कुछ संपादन किया वैश्विक रूप से व्यंग संग्रहों का, मैंने वैश्विक लेखकों को एकत्रित किया। मेरा परिदृश्य, मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा वैश्विक हो गया है क्योंकि बच्चे मेरे सब विदेश में हैं तीनों, तो उस वजह से जैसे मैंने एक मिली भगत यानी सामूहिक व्यंग संग्रह बहुत से निकले हैं, भारत से भी कई निकले हैं और बड़े बड़े निकले हैं, लेकिन पहला वैश्विक संग्रह अगर मैं कहूं तो मुझे बताने में गर्व होता है कि मिली भगत, जैसा नाम से ही है,
1: जी
0: उस
1: जी
0: नाम से मैंने ये निकाला था। तो इसमें पूरे विश्व के कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से जो व्यंगकार उस समय व्यंग लिख रहे थे, उनके व्यंग दुबई से, वो लेकर के और उनका एक सामूहिक संग्रह निकाला था। तो
1: क्या
0: इसका नाम
1: बात
0: मिली भगत है और उसका संपादन मैंने किया था।
1: जी
0: जो आपने बात की कि मेरे व्यंग की किताबों की बात, तो राम भरोसे ये एक शीर्षक है,
1: जी
0: यानी जो भारतीय आम आदमी है वो किसी समय ऐसा लगता था कि जैसे वो राम भरोसे है,
1: जी
0: अंत्योदय, जो गांधी के अंत्योदय का आदमी है, उसको जब हमने राम भरोसे एक प्रतीकात्मक नाम दिया। व्यंग में एक लक्षणा शक्ति होती है, एक,
1: मुश्किल भी होता है
0: जी
1: व्यंग्य
0: हाँ
1: लिखना,
0: जी हाँ
1: क्योंकि जो चुटीले व्यंग्य होते हैं, जब हरिशंकर परसाई के व्यंग्य को पढ़ने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप उस व्यंग्य को लिखकर गुदगुदा सकें या फिर करारा चोट कर सकें,
0: जी हाँ
1: दोनों। तो आपके लिए किस तरह की चुनौती रही?
0: व्यंग में मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। उलट बांसी में हम किसी चीज की अतिशयोक्ति से इस तरह से बताते हैं कि उसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बता देते हैं कि सामने वाला उसको संप्रेषित हो जाता है कि ये इसके विपरीत, मैंने उसके हंसी उड़ा रहा
1: जी जी
0: है ना। और एक प्रयोग होता है जिसमें हम किसी पे अवलंबन लेकर के, जैसे
1: किसी
0: कोई
1: व्यक्ति विशेष को
0: हमने एक पात्र
1: टारगेट
0: चयन
1: करते हैं।
0: किया, जैसे एक मेरा व्यंग है कि वोटिंग की लाइन में अर्जुन, तो अर्जुन को पात्र बना करके, जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, तो उस तरह का हम किंकर्तव्य मूड हो जाते हैं कि हम इसको वोट दें कि उसको वोट दें, दोनों चेहरे तो एक से हैं।
1: जी जी
0: कई
1: जी
0: बार ये स्थितियां होती
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: तो हम किंकर्तव्य विमूढ़ नहीं हो सकते हैं,
0: जी हाँ
1: हम इस समय जानना चाहते हैं कि आप गाने भी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो इस
0: जी
1: समय एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को। आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए, ममता जी आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सुना जाए,
1: सुनते हैं।
0: क्योंकि लोग कुछ भी कहते रहेंगे, हमें अपना एक दृष्टि और एक
1: लक्ष्य
0: एक ना लक्ष्य निर्धारित कर उस ओर बढ़ना होता
1: जी,
0: है।
1: अमर प्रेम फिल्म का
0: ये
1: गाना
0: अमर
1: है,
0: फिल्म फिल्म का गाना है,
1: सुन
0: किशोर कुमार की आवाज है,
1: जी।
0: आनंद बख्शी जी ने इसे बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, तो क्यों ना हम ये गाना सुने।
1: सुनते हैं यही गीत।

0: विवेक रंजन जी, आपने लिखे भी हैं, नाटक लिखे हैं, व्यंग्य लिखे हैं और उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन हमें बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एमटेक किया, बिजली विभाग में आप अभियंता के रूप में कार्यरत रहे, तो उसकी कहानी थोड़ी बताइए, कैसे वहां पहुंचे और कोई खास याद वहां से जुड़ी हुई है जो?
1: ममता जी, मैं इसके लिए कहूंगा कि आप बड़ी लकी हैं, क्योंकि आपकी अभिरुचि भी साहित्य में है और आप आकाशवाणी जैसे संस्थान में काम भी कर रहे हैं।
0: जी जी जी।
1: मैं इतना लकी नहीं था।
0: विरोधाभास रहा
1: मेरे जीवन में, क्योंकि भारतीय स्थितियों में अनेक लेखकों के साथ मैं जानता हूं कि जो आजीविका के लिए कुछ और हैं और जिनको रुचि कुछ और है। तो मैं एक साहित्यिक परिवार से आता हूं, मंडला में मेरे दादाजी जो थे उनके गीत प्रभात फेरियों में गाए जाते थे।
0: अच्छा, क्या
1: मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध जी, उनकी 40 विभिन्न किताबें हैं जो आध्यात्मिक प्रसंगों की रचनाएं हैं। उन्होंने भगवत गीता, रघुवंश, मेघदूत जैसी रचनाओं के हिंदी काव्यानुवाद किए और उनको अनुवाद पर सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला। तो मैं उससे था, मैंने जब हाई स्कूल में था तब तक हमारे यहाँ 11वीं कक्षा जो होती थी वो हायर सेकेंडरी होती थी, तो मैंने हायर सेकेंडरी तक मंडला की जिला पुस्तकालय और जो भी मंडला के जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उनके सारे साहित्यिक उपन्यास चार्ट डाले थे।
0: तो उसमें पढ़ने का एक खास शौक हुआ करता था, दौर था पढ़ाई का,
1: बहुत दौर था, क्योंकि मनोरंजन के और साधन नहीं थे। रेडियो, अखबार के साहित्यिक कॉलम वो लोग हम लोग पढ़ा करते थे, पत्रिकाएं आती थी तो हम भाई बहन दौड़ते थे जब भी कोई नया पत्रिका का अंक आता,
0: कौन पहले पढ़ेगा।
1: तो ये जमाना था।
0: मनोहर श्याम जोशी का साहित्यिक ये साप्ताहिक हिंदुस्तान तो इंतजार होता था कि कौन पहले पढ़ेगा,
1: धर्मयोग
0: जी, जी।
1: और उससे भी पहले छोटे की बात करें तो पराग, नंदन, ये सब हम लोगों के बचपन में पढ़ पढ़ के वो संस्कार आए। तो हम बात कर रहे थे कि मंडला में जब हमारा साहित्यिक परिवार से था तो मैं पढ़ने में होशियार था ईश्वर की कृपा से। लक्ष्य निर्धारित हो तो हम सब अपने उसको उस दिशा में चल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना एक अच्छा व्यवसाय माना जाता
0: है। इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना आपने कैसे देखा, पहले ये बताइए कि कहाँ से बीज पड़ा, क्योंकि आप तो साहित्यिक रुचियों में जा रहे थे।
1: रुचि में था, बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन गणित में मैं हमेशा अव्वल
0: थे।
1: जी हाँ, तो जब मेरा 11th हुआ और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो मैंने सलाह की, मैं मंडला जैसी छोटी जगह, मंडला एक आदिवासी प्रमुख जिला है और कान्हान अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य अभयारण्य है उसके लिए जाना जाता है, तो वहां से था। तो मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने रायपुर से बी किया, फिर उसके बाद बी करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया MSCT भोपाल से, और इस प्रकार इंजीनियरिंग में मैं निष्णात हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया विद्युत मंडल में, तो मैं वहीं से चीफ इंजीनियर बनकर रिटायर हुआ। और आजकल की तरह नहीं कि उस समय, तो आजकल तो जब तक बच्चों की कंपनियों का नाम याद करते हैं हम तब तक वो कंपनी बदल लेते हैं।
0: तब आपने एक जगह नौकरी ज्वाइन की तो बस वहीं पे स्थायी रूप से, लेकिन विद्युत मंडल में, विद्युत विभाग में अभी भी बहुत सारे शहरों में बिजली की बहुत कटौती होती है, महानगरों को छोड़ दें मुंबई में तो बिजली जाना मतलब एक खबर बन जाती है, लेकिन अभी भी देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती होती है, तो ऐसी कभी कोई घटना की शिकायतों से भर दिया गया हो, कोई ऐसी घटना याद आती है?
1: आप सही कह रही हैं, लेकिन बिजली का परिदृश्य बहुत बदल चुका है ममता जी। मुझे ये बताने में खुशी है कि अब एक समय था कि जब उत्पादन कम था और मांग
0: खपत ज्यादा थी,
1: अब हमारी मांग के अनुरूप काफी बिजली बन रही है और बहुत सारी उसमें नवाचार भी हुए हैं। अब अलग कंपनियां हैं जो विद्युत बनाती हैं, भारत में बिजली बनाने के जो अपने श्रोताओं को बताना चाहूं

0: कहूंगा मैं कि सबसे स्वच्छ बिजली बनती है पनबिजली, जहां पर पानी की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको पानी को नीचे गिराकर गति ऊर्जा में बदला जाता है, और उससे टरबाइन मैंने बिजली बनाने का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि तांबे का कोई जो हमने फेराडे लॉ पढ़ा है कि बिजली तभी बनती है जब कोई उनमें बल अंतर होता है, तो वो कॉपर का पूरा कॉइल जब घूमता है किसी मैग्नेट के अंदर तो बिजली बनती है। अब उसको घुमाने का तरीका क्या हो सकता है, तो या तो भाप की शक्ति से घुमाया जाता है तो थर्मल बिजली कहलाती है,
1: जी
0: उसमें कोयला जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, चिमनियों से धुआं निकलता है। दूसरा होता है पन बिजली, जिसमें कि स्वच्छ पानी गिरता है लेकिन उसकी लागत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बांध बनाया जाता है, पानी भरता है तो बहुत से गांव विस्थापित होते हैं, हर एक की अपनी समस्याएं भी हैं। और परमाणु बिजली होती है, तो मैं मंडला में पदस्थ था तो मंडला जिले में एक चुटका परमाणु परियोजना नर्मदा नदी के बांध के किनारे, जो बरगी बांध है उसके जल भराव के क्षेत्र के किनारे प्रस्तावित है, तो उसके प्रारंभिक सर्वे से लेकर के और उस जमीन का, क्योंकि वहां पर जो न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट है उनकी मांग ये थी कि हमें फाउंडेशन की दृष्टि से जमीन अच्छी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए,
1: जी
0: पानी का केमिकल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए और वहां की आबादी कम होना चाहिए क्योंकि कभी कोई दुर्घटना हो तो इन सारी दृष्टियों से जो मंडला का क्षेत्र था वो सही पाया गया और उसके सर्वे वगैरह मैंने किए। तो एक ये बात है, कच्चे माल के रूप में पानी और जमीन यही दिया जाना था, तो ये वो प्रस्तावित है, अभी जब भी बनेगा तो वो भी परमाणु बिजली घर भी मध्य प्रदेश को मिलेगा।
1: जी बड़ी अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए
0: जरूर
1: कौन सा
0: जरूर।
1: गाना।
0: एक बैजू बावरा 1952 में एक फिल्म आई थी ममता जी,
1: बहुत मशहूर फिल्म है।
0: मन तड़पत हरि दर्शन को, और इस गाने की खासियत पे हम चर्चा करना चाहेंगे।
1: जी
0: एक धार्मिक सद्भाव की बात करें तो मोहम्मद रफी साहब ने इसको गाया था, नौशाद जी ने
1: संगीतबद्ध किया है।
0: संगीतबद्ध किया था, और शकील बदायूनी जी के शब्द हैं और गीत है मन तड़पत हरि दर्शन
1: जी
0: को आज।
1: तो
0: तो
1: ये ऐसे
0: आज भी ये
1: कलाकार हैं।
0: धुन पूरे हम सब के मंदिरों में बजती है और सब मानव के मन मंदिर में ये बजती रहे और सद्भाव हो देश में, ये मेरी कामना है।
1: क्या बात है। मेरे ख्याल से राग भैरवी पर आधारित ये गाना है
0: क्या बात है,
1: तो
0: आपने उसका राग भी बता दिया ममता जी,
1: जी
0: आपकी तो खैर बात ही कुछ अलग है।
1: तो अब यही गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: आप चूंकि बिजली विभाग में कार्यरत रहे हैं
1: जी हाँ
0: और बिजली विभाग में जो कार्यरत होते हैं शिकायतें बहुत सारी मिलती हैं,
1: जी हाँ
0: तो कोई ऐसी यादगार बात बताना चाहेंगे आपके पास शिकायतों की भरमार? आपके घर वालों ने भी कभी कोई शिकवा शिकायत की कि आप तो बिजली विभाग में काम करते हैं और हमारे घर पे बिजली गायब है,
1: ममता जी,
0: तो ऐसी कोई
1: बहुत
0: बात है
1: अच्छा
0: तो?
1: सवाल किया आपने और इस सवाल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: जी
1: मैं जब चीफ इंजीनियर था तो
0: हाँ
1: मैं अपने जो लाइन स्टाफ था उसको ये कहा करता था कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उनको इस ढंग से मोटिवेट करता था। क्या होता है ममता जी कि किसी भी विभाग में जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जवाबदारियां समझते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जिनका सीधा सामना आम नागरिकों से होता है, हम कहीं बैंक जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो जो विंडो क्लर्क होता है, यदि उसका भाव आपसे बातचीत अच्छी है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें मानवीय गुण हैं, उसमें नैसर्गिक समस्या को निपटाने की भावना है, तो जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड होकर निकलता है। तो वही बिजली विभाग की बात है कि जो हमारे लाइनमैन हैं, जो हमारे लोगों को बिजली कनेक्शन चाहिए होता है, लोगों को अपना बिल पटाना होता है, लोगों को बिजली सही ढंग से उनको अच्छी बिजली बराबर उसी उस पे वोल्टेज पे प्रॉपर मिलती
0: जी
1: रहे,
0: जी जी
1: ये उनकी उसके लिए पैसे देने को आज लोग तैयार हैं, लेकिन कई बार हमारी सेवाएं अगर नहीं होती तो वो तकनीकी सीमाएं जहां पर हैं वहां हैं, लेकिन जहां मानवीय सीमाएं हैं, जो हमारे व्यवहारिक सीमाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा ज्यादा काम करके थोड़ा सा वो कर, तो इसको मोटिवेट करना पड़ता है टीम भावना से। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में इसीलिए जाना भी जाता था
0: क्या बात है।
1: कि इस ढंग से हम लोगों को अपने मोटिवेट करते थे। और बिजली का परिदृश्य बहुत बदल गया, मेरी एक किताब भी है बिजली का बदलता परिदृश्य, क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय था अंधेरा कायम रहे, मैंने लोग बोले कि बहुत बार बार खुशियां मनाने का मौका मिलता है एमपीबी की तरफ से, क्यों? क्योंकि बोले जितने बार बिजली जाती है उतने बार जब बिजली आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि वाह बिजली आ गई।
0: जी
1: तो हमने वो खुशी छीन ली है, अब लगातार मिलती है बिजली, लेकिन ये है कि कभी तकनीकी, क्योंकि आप जानती हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क है भारत का, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं।
0: आपकी श्रीमती जी ने कभी कोई कंप्लेन की, शिकायत की कि नहीं?
1: हाँ श्रीमती जी तो शिकायतों का पुलिंदा होती हैं, क्योंकि
0: अच्छा
1: मैं दीपावली में भी जब हम लोग देर रात घर में पूजा कर पाते थे, क्योंकि हमें पूरे शहर की बिजली का देखना होता था
0: हाँ
1: कि बराबर बिजली सप्लाई हो गई, सबके घरों में पूजा अच्छे से हो जाए, प्रकाश रहे, कहीं कोई त्रुटि आए तो हम उसे तुरंत निराकरण कर सकें, तो मैं पावर हाउस से देर रात लौटता था, तब हम घर की पूजा करते थे।
0: जी जी
1: तो ये मेरी अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे किसी भी सिस्टम के पीछे जो पूरी एक टीम लगी होती है, जब यहां मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो यहां मैं पूरे सारे बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूं,
0: बिल्कुल
1: वे सब पूरा, जैसे हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो जो हमारा पुलिस बल है, जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है,
0: जी
1: जब हम उनकी तरफ से बात करते हैं तो वो पूरी टीम लगी होती है, तब कहीं जा करके
0: बिल्कुल। और जब कभी जरा सी बिजली गुल होती है तो लोग शिकायतों की भरमार कर देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि उस विभाग में भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और कहीं कोई त्रुटि हुई तो पूरी टीम काम में लग जाती है।
1: जी हाँ।
0: चलिए अब हम यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
1: तो हम सबको मुस्कुराहटें देना चाहते हैं, तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, ये
0: जी
1: उन्नीस
0: जी
1: सौ उनसठ ये
0: अनाड़ी
1: मेरे
0: फिल्म का गाना है।
1: अनाड़ी फिल्म का, ये मेरी जन्म वर्ष है 1959,
0: अच्छा
1: 28 जुलाई
0: क्या बात है,
1: 59।
0: तो
1: जी
0: सुनते हैं ये गाना।
1: जी हाँ।

0: अनाड़ी फिल्म का ये गाना था। विवेक जी, हमें बताइए कि आपने नाटक लिखा है, व्यंग्य लिखा है, अन्य विधाओं पर भी लिखा है, तो तीनों विधाओं में से आपके लिए कौन सी विधा में लिखना आसान होता है और कौन सी विधा बहुत मुश्किल लगती है, और कोई
1: ये
0: रचना प्रक्रिया बताना चाहते हैं वो भी बताइए
1: जरूर,
0: लिखते समय।
1: व्यंग मेरी मूल विधा है,
0: जी
1: क्योंकि जब कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम सीधे किसी को कटाक्ष नहीं कर पाते, सीधे बात नहीं कह पाते, किसी से गाली गलौज नहीं कर पाते, तो अपने मन का फ्रस्ट्रेशन मैं कागजों पर उतार देता हूं और उसे मैं व्यंग में अभिव्यक्त करने में ज्यादा सहज और सरल समझता हूं। कई बार क्या होता है कि विचार अपने हिसाब से विधाएं चुन लेते हैं,
0: जी
1: जो मैं कभी कभी कहता हूं कि हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में कवि अवश्य होता है। युवा प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, मैं कभी जब बहुत सारे विचार मन में कौंधते हैं तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें संप्रेषित करने की जो विधा है वो कविता है। आप भी रचनाकार हैं और
0: बिल्कुल
1: आप इसे समझ सकती हैं,
0: जी जी
1: क्योंकि कविता एक ऐसा शब्द चित्र बनाती है कि उसमें हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से रंग भर सकता है और वह चित्र मुखरित हो जाता है उसके परिवेश के अनुरूप। तो कविताएं भी मैं करता हूं। मेरा 19 पहला काव्य संग्रह आक्रोश नाम से आया था,
0: जी
1: तो उसमें भी गिरिजा कुमार माथुर जी आकाशवाणी में रहे हैं,
0: जी जी
1: उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, मैं कोट करना चाहूंगा।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं साहित्यकार विवेक रंजन श्रीवास्तव। आपसे बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान।
1: उन्होंने लिखा था कि मुझे युवाओं के आक्रोश भरे स्वर बड़े अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो मेरी किताब का शीर्षक ही है आक्रोश, और ये तार सप्तक अर्धशती समारोह भोपाल में हुआ था तो उसमें ये विमोचित हुआ था और ये मेरी पहली किताब थी।
0: जी, अगर कुछ पंक्तियां याद हो तो आप सुनाना चाहें सुनाइए, या किसी अन्य कविता संग्रह से कोई कविता याद हो तो सुनाइए।
1: हाँ जरूर, मैं आक्रोश की पहली कविता सुना देता हूँ।
0: जी,
1: छोटी सी कविता है, शीर्षक है

0: वस्त्र, वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। ये और बात है, ये और बात है कि तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफेद तौलिए में लपेट दिया गया और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की गलियों में।
1: क्या बात है।
0: और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की धूल भरी सड़कों पर। जब भी तुम्हारा उससे सामना हुआ, तुम्हें छी गंदा लड़का कहकर उसका परिचय दिया गया। और आज जब उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, जब आज उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की एक छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, तो तुमने उसे अपना फटा पुराना पतलून देकर कपड़ों में भी कर दिया है एक बार फिर से निर्वस्त्र।
1: क्या बात है।
0: तो ये जनवादी नेचर की कविता थी।
1: हाँ, तो यहाँ पर कोई आपकी व्यंग्य रचना की कुछ लाइनें अगर याद है तो आप सुनाएं प्लीज।
0: जरूर ममता जी, मैं एक व्यंग का अंश छोटा सा सुनाना चाहूंगा। विसंगति ये है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो वो चल निकलता है, और उससे पहले जैसे निराला जी ने भी एक बार कहा था कि जब उनका नाम हो गया और रचनाएं छपने लगी तो उन्होंने वो रचनाएं पुनः प्रेषित कर दी जो कभी वापस आ गई थी शुरू के दिनों की।
1: जी जी।
0: ये उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी तरह का है कि विसंगति है नाम का महत्व, और तो ये जो रचना का शीर्षक है छींक का महाकाव्य, उसका छोटा सा अंश पढ़ता हूं मैं। परम आदरणीय साहित्यकार श्री विभूति नारायण आगाध जी की 3 महीने से एक गंभीर कविता लिख रहे थे, पर शीर्षक ही नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन अचानक उन्हें छींक आई, आंखें। छींक इतनी जोरदार थी कि कागज पर स्याही का एक बिंदु बन गया और उसके नीचे अनजाने में ही चूं जैसा कुछ लिख गया। आगाध जी उसे काटने ही वाले थे कि उनकी वरिष्ठता जाग उठी। उन्होंने सोचा, मैं आगाध हूं, मेरे अवचेतन से निकला कोई भी शब्द साधारण कैसे हो सकता है। उन्होंने कागज पर 3 शब्द और जोड़ दिए, धूप की किरण और चू। उसी शाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक जी नई रचना लेने उनके पास पहुंचे और कागज पढ़ते ही उनकी आंखें चमक उठी। अद्भुत, इस चू में पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है। आगाध जी, आपने आधुनिक मनुष्य की छटपटाहट को पकड़ लिया है। आगाध जी ने मन ही मन सोचा कि यह तो सर्दी जुकाम का कमाल था, लेकिन गंभीरता चेहरे पर लाते हुए बोले, इसे पाने के लिए चेतना को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना पड़ा।
1: क्या बात है।
0: रचना मुख्य पृष्ठ पर छपी और फिर आलोचना जगत में तूफान मच गया। मार्क्सवादी आलोचक ने लिखा कि चूं शोषित वर्ग का विद्रोह है। मनोविश्लेषकों ने इसे दमित अहम की चीख बताया। अस्तित्ववादियों ने इसे जीवन की निस्सारता का सर्वोच्च उदाहरण बताया। एक युवा आलोचक ने तो यहां तक लिख दिया कि कबीर के अनहद नाद के बाद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाद यही चू नाद है। सोशल मीडिया पर चू ट्रेंड करने लगा, लोग बिना समझे उसकी प्रशंसा करने लगे। तो आशा यह है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो उसकी रचनाएं चल निकलती है।
1: जी, क्या बात है। बढ़िया आपने रचना सुनाई, व्यंग्य रचना। और अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: ये सुना जाए कि जिंदगी प्यार का गीत है, सौतन से।
1: जी, सौतन फिल्म का गाना है। सुनते हैं यही गाना।

0: विवेक रंजन जी, व्यंग्य रचनाओं पर आपकी बात हुई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य, समकालीन साहित्य में, समाज में किस तरह के सकारात्मक बदलाव आप महसूस करते हैं?
1: बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ममता जी हो रहे हैं। स्त्री विमर्श पर आजकल बड़ा चर्चा है और साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो तीसरा जेंडर है उस पर भी बहुत सारी रचनाएं आ रही हैं।
0: जी जी,
1: और कहानियों ने भी यथार्थवाद को पकड़ा है।
0: जी,
1: कहानियां अब उस ढंग की नहीं रही कि जो एक आदर्श ही प्रस्तुत करती थी, अब यथार्थ को लेकर के, यथार्थ नायक जो जिस ढंग का, जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारी चीजें कहानियों में देखने पढ़ने मिल रही हैं।
0: तो आपको क्या लगता है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से
1: जी
0: बहुत सारे कथाकार जिनको नहीं जाना जाता है तो वो भी चर्चित हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया ने क्या सृजन कार्य को कम किया है या बढ़ावा दिया है? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ना लिखना लोग कम कर रहे हैं या ज्यादा, आपके नजरिए से क्या है?
1: सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया है, क्योंकि पहले मुझे याद है ममता जी, आपको भी याद होगा कि हम लोग जब रचनाएं किसी पत्रिका के लिए भेजा करते थे तो साथ में एक पता लिखा, टिकट लगा, लिफाफा रखना होगा।
0: जी जी,
1: और मुझे याद है कि तब हम राइस पेपर पे कार्बन लगा करके मैं लिखता था डॉट पेन से,
0: क्या बात है,
1: नीचे कांच रख करके। मैंने वो युग जिया है और भेजी है रचनाएं उस ढंग से, और हम डालते थे डाक में वो लिफाफे और फिर इंतजार करते थे कि अब मैंने रचना की, या तो स्वीकृति आएगी या अस्वीकृति आएगी और मेरा हाथ का पता लिखा लिफाफा लौट के आएगा। तो एक वो समय
0: से इंतजार होता,
1: जी हाँ, ये एक समय था। और आज उसका नुकसान भी कहें और फायदा भी कहें, नुकसान ये है कि असंपादित रचनाएं बेहिसाब इधर मन में आया, और स्वसंपादन का युग है, हमने बटन दबाया और फेसबुक के जरिए, मैंने ब्लॉगिंग 2005 से शुरू की थी,
0: जी,
1: जब
0: जी,
1: हिंदी ब्लॉगिंग शुरू हुई तो मेरे ब्लॉग्स बहुत पढ़े जाते थे और उन पे हिट्स मिलते थे। आर्कुट का जमाना था, अब सब कुछ टर्न हो गया।
0: जी हाँ, एक समय था,
1: एक समय
0: बहुत
1: था, जी हाँ,
0: हुआ था जी।
1: तो उसमें भी मैं था, फिर ब्लॉग में आया, फिर फेसबुक आई, फेसबुक में आ गया। तो इन सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका ये लाभ तो मिलता है कि रचनाकार के मन में जो भी भाव आए, आप सहमत होंगी कि वो लिखता है और उसको संपादक की कोई गरज नहीं होती, वो खुद लिख करके खुद उसे संप्रेषित कर देता है। लेकिन उसका जो साहित्य की दृष्टि से दुष्परिणाम की अगर बात करें तो असंपादित रचनाएं जा रही हैं।
0: जी जी,
1: संपादन का एक अलग महत्व होता है। संपादक वह प्रहरी होता है जो पाठक और लेखक के बीच कहीं कोई एक ऐसा कर्टन लगाता है कि उसे बड़े तरीके से प्रस्तुत करता है,
0: एक पुल का काम करते
1: पुल का
0: हैं,
1: काम करता
0: कि
1: है।
0: अगर पुल अच्छा है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से
1: नहीं, उससे
0: आप,
1: परिष्कार
0: आप
1: भी
0: पार
1: होता
0: जा
1: है,
0: सकते हैं,
1: परिष्कार भी होता है। मैं तो चूंकि घर में मैंने, मेरी वाइफ मेरी पहली श्रोता है हमेशा, जब मैं लिखता हूं तो उसे पकड़ के जबरदस्ती बिठा के सुनाता हूं, और वो बहुत से परिष्कार रचना में होता ही है,
0: तो क्या प्रतिक्रिया देती है, अच्छी बुरी,
1: सुधार के बिंदु बताती है। वो भी एक साहित्यिक परिवार से है, उसके पिताजी ने, वो स्वतंत्र लेखिका भी है और महिला पत्रिकाओं में उसकी रचनाएं छपती हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पे क्या लिखा जाना चाहिए, क्या कौन सी बात ऐसी है जो संप्रेषणीय रचना की दृष्टि से हमने लिख ली, लेकिन सामाजिकता के मर्यादा की दृष्टि से, क्योंकि साहित्य में स जुटा हुआ है, सबका हित
0: जी।

0: तो जो कुछ हम जब जब पुरस्कार मिल जाता है किसी को, कोई रचनाकार कुछ लिखता है, तो हम समाज के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हम रहें ना रहें साहित्य रहेगा,
1: जी बिल्कुल, किताब रहेगी
0: किताब
1: आपकी,
0: रहेगी,
1: लोगों का
0: रचनाएं
1: नाम
0: रहेंगी।
1: रहेगा।
0: तो ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की थी,
1: हाँ
0: तो उसमें ये कमी मुझे लगती है, लेकिन उसका लाभ यही है कि नंबर ऑफ लेखक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब विदेशियों की बात करें, तो विदेशों में बहुत सारे बच्चे हमारे युवा आज गए, हर तीसरे घर से कोई ना कोई किसी विदेश में है, तो वो उनके साथ उनके मम्मी पापा गए। अब उनके मम्मी पापा वहां क्या काम करें, फ्री हैं, तो बहुत से जो महिलाएं हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई, उन्होंने विदेश में लेखन को अपना अभिरुचि बनाई, और उसके कारण नए लेखक साहित्य जगत को मिले, और प्रवासी लेखकों का एक बड़ा संसार है ममता जी,
1: एक
0: और
1: उनकी
0: उनका,
1: बाकायदा दुनिया
0: हाँ
1: है
0: उनका
1: और
0: एक,
1: बहुत सारी पत्रिकाएं
0: अच्छा
1: हैं जिसके
0: ईश्वर की
1: माध्यम
0: कृपा से
1: से।
0: वहां पर रहते हुए संपन्नता के कारण वो उनकी किताबें फिर भारत से ही छपती हैं।
1: जी,
0: और अब किताबें भी आप ये देखिए कि फिजिकल किताबें, तो एक समय था कि हमारे पिताजी की किताबें 1,000 का संस्करण छपता था, आज आप भी लेखिका हैं, आप जानती हैं कि 200 प्रतियां यदि एक संस्करण में छप रही हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ये परिवर्तन हुए हैं समाज
1: जी,
0: में।
1: प्रवासी साहित्य की बात आपने की, तो आप खुद विदेशों में गए
0: जी
1: हैं,
0: हाँ,
1: आपने जिक्र भी किया
0: जी
1: कि यूएस और दुबई और कई जगह पर
0: जी
1: गए
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो प्रवासी साहित्यकारों, उनकी दुनिया कैसी है,
0: उनकी
1: कि
0: दुनिया,
1: फायदे
0: जी हाँ,
1: नुकसान।
0: उनकी दुनिया को हिंदी एक मंच पर जोड़ने का बड़ा काम कर रही है।
1: जी
0: मैं यूएस में गया था, तो वहां काउंसलेट में मुझे बुलाया गया था, और वहां पर हिंदी दिवस का आयोजन था, तो मैंने लिखा कि रचना में कि हिंदी जो है वो हमें एक सूत्र में गर्व से जुड़ने का आपस में एक माध्यम बनती है। हिंदी एक फेविकोल की तरह काम करती है, जो बहुत सारे भारतीय विदेश में हैं उनको एक मंच पर लाने का काम हिंदी का कर रही है।
1: जी
0: तो इस तरह से प्रवासी साहित्यकार बहुत सारा अच्छा लेखन कर रहे हैं,
1: जी
0: और उनके संकलन भी आ रहे हैं
1: जी
0: और छप रहे हैं, चर्चा में हैं अभी। मैं,
1: विवेक रंजन जी, आपने नाटक भी लिखे
0: जी हाँ,
1: हैं, नाटक भी था,
0: जी
1: तो क्या होता है, आपकी रचना प्रक्रिया क्या होती है, उसके पात्र कहाँ से लाते हैं और संवाद कैसे गढ़ते हैं, उसके बारे में बताइए।
0: मैं ममता जी सायास बहुत कम लिखता हूं। सायास मतलब कोई जबरदस्ती कभी नहीं लिखता मैं, जो स्वतः कभी मैंने वैचारिक रूप से अंदर उथल पुथल जब विचारों की चलती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परिपक्व होती रहती है। मेरी रचना प्रक्रिया ये है, और किसी दिन सुबह 4 बजे नींद खुलती है, और फिर मैं सुबह के समय में 2-3 घंटे में रचना पूरी कर लेता हूं। तो इस ढंग से मैंने कई नाटक लिखे, और हर नाटक का, हर कविता का, हर व्यंग्य का मेरा एक भाव है, और मैं संदेश भी ये मित्रों को देना चाहता हूं, रचनाकारों को, युवा रचनाकारों को, कि हम जो कुछ भी लिखें उसका एक हमारा मंतव्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना
1: कि लोग
0: चाहिए।
1: पढ़ें।
0: हाँ, लोग पढ़ें और उससे कुछ सकारात्मकता समाज में जाए। केवल नाम की गरज से लिखना या किसी के कहने पर कुछ लिख देना वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है
1: जी,
0: जी।
1: तो क्या होता है, फिक्शन लिखना पसंद करते हैं या किसी यथार्थ परक
0: हाँ,
1: विषय पर?
0: मैं जैसे जब कोई व्यंग जब लिखता हूं तो पीड़ा होती है किसी बात को लेकर के, बड़ा मन व्यथित होता है कि यार ये क्या विसंगति है, तो उसको फिर व्यंग में अभिव्यक्त कर देता हूं। कोई दृश्य कभी बड़ा मनोरम लगता है, कोई बड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें बहुत से रंग भरने की कोशिश होती है, तो शब्द चित्र बनते हैं, तो मैं कविता लिख देता हूं। जैसे मैंने अपनी जब कामवाली का जीवन देखा, मेरा कहना यह है ममता जी कि हर व्यक्ति अपने आप में एक उपन्यास है, चलता फिरता उपन्यास है। जो मेरे घर में काम करने वाली है, उसकी पीड़ा जब मैंने पास से देखी, समझी कितनी मेहनत वो सुबह से कहां से आकर के करती है हमारे लिए, अपना सर्व, मैंने फिजिकल मेहनत, जब हम विदेशों में जाते हैं देखते हैं कि खुद फिजिकल मेहनत करना पड़ती है, जो यहाँ पे हाउस हेल्प
1: जी
0: समय
1: जी
0: उपलब्ध कराती हैं,
1: सहायिकाएं होती
0: जी
1: हैं, सहायक
0: सहायिकाएं
1: होते
0: होती
1: हैं,
0: हैं,
1: आपको
0: जी
1: बहुत मदद मिलती
0: जी
1: है।
0: हाँ, तो फिर उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी। तो
1: अच्छा
0: इस तरह से
1: जी,
0: मैंने कि उसके घर में जब खुशियां नहीं मिल रही थी, उसे उसका हस्बैंड उसको पिटाई करता था, तो उसने अपनी खुशियां हमारी खुशियों में ढूंढ ली। मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो खुश होकर के वीडियो कॉल पे उनसे बात
1: बातें
0: करती है,
1: करना।
0: तो ये एक कहानी को जन्म देता है। नाटक के लिए जब कोई, जैसे अब ये मेरे जो मुझे 2012 में भी ऐसा

0: साहित्य एकेडमी का नाटक के लिए ही पुरस्कार मिला था, तो वो हिंदोस्तान हमारा, तो उसमें जैसे डीपीएस लखनऊ में किसी ने मुझसे फेसबुक के जरिए आमंत्रित किया कि हमारे स्कूल के लिए कोई नाटक लिखिए, तो मैंने फिर हिंदोस्तान हमारा देशभक्ति का एक नाटक बच्चों के लिए लिखा था। तो इस तरह से रचना प्रक्रिया चलती है।
1: तो ये तो हो गई, आपने कहा कि हम घर में सहायिका काम कर रही, वहां से उसके दर्द को साझा करते हैं, लेकिन एक कवि हृदय होता है, अमूमन कवियों की कविताओं की शुरुआत प्रेम कविता से होती है, और आपने अपनी श्रीमती जी का जिक्र किया दो बार, तो उनके लिए भी कोई कविता लिखी है, अपनी पत्नी के लिए कोई कविता लिखी है? तो
0: उनके लिए तो जरूर लिखी है, मगर वो प्रेम पत्रों में बंद है। आज मैं आपको कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाना चाहता हूं कि अच्छा लगता है, शीर्षक है। भाव काव्य के मंथन लौट करते घर लौटें तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है।
0: जब हम किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहां से कुछ अगर दो पंक्तियां गुनगुनाते हुए लौटें तो अच्छा लगता है। ये भाव है, है ना। भाव काव्य के मंथन करते घर लौटें तो अच्छा लगता है, शब्द तुम्हारे कुछ जो लेकर घर लौटें तो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है।
0: कौन किसे कुछ देता यूं ही, कौन किसे सुनता है आज, छंद सुने और गाते गाते घर लौटे तो
1: अच्छा लगता है।
0: मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है।
0: पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक। सोशल मीडिया पर ये देखने में मिलता है, लाइक और डिसलाइक, मैंने बस एक दूसरे
1: लाइक कमेंट,
0: लाइक कमेंट। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक, गीत गजल सुन द्रवित हृदय जब रो देता तो अच्छा लगता है। कविताओं की विषय वस्तु तो कवि को ही तय करनी है, शाश्वत भावों की अभिव्यक्ति सुन पर अच्छा
1: लगता है। वाह।
0: रचना पढ़े बिना समझे बिन नाम देख दे रहे बधाई, आलोचक पाठक की पाती पढ़कर लेकिन
1: अच्छा लगता है। वाह।
0: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर।
1: क्या बात है।
0: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर, पढ़ने मिलता लिखा स्वयं का छपा हुआ जो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया।
0: बहुत पढ़ा और लिखा बहुत, कई जलसों में शिरकत की, बैठे घंटों श्रोता बनकर अब मंचों पर जब बैठो तो
1: अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया।
0: शब्द तुम्हारे कुछ लेकर के घर लौटो तो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। लता मंगेशकर का गाना है रेशमा और शेरा फिल्म से, तू चंदा मैं चांदनी।
1: बहुत ही बेहतरीन गाना है।

0: तो विवेक जी, ये तो कविता आपने सुनाई,
1: जी
0: अब नाटक पर फिर से आते हैं।
1: जी
0: नाटक जो लिखे हैं,
1: जी
0: तो ये इच्छा होती है कि नाटक रंगमंच पर आए, तो क्या
1: जी
0: आपके रंगमंच पर भी नाटक मंचित किए गए हैं?
1: जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो हिंदोस्तां हमारा के कुछ नाटक बाल नाटक थे, तो वो DPS स्कूल लखनऊ में, ज्ञानदीप मंडला में
0: जी
1: मंचित हुए, और स्कूलों में कई जगह वो बाल नाटक मंचित हुए। इसी तरह से जो अभी जलनाद है वो अमेरिका में एक
0: मंचन
1: जगह,
0: हुआ।
1: हाँ, मैं मंचन हो रहा है उसके अंशों का, और NSD को भी भेजा गया है ये नाटक। तो देखिए, जैसा बोला जाता है ना कि गीतों को छू ले कोई, मैंने अगर कोई गीत गा ले तो गीत अमर हो जाता है,
0: होठों से छू लो तुम मेरा
1: और
0: गीत, अमर
1: गीत
0: कर
1: अमर कर दो।
0: दो।
1: और उसी तरह से नाटक के मामले में कि नाटक दृश्य और श्रव्य विधा है
0: जी
1: और उसकी संप्रेषण क्षमता बहुत ज्यादा है, यानी कहानी को जब हम पढ़ेंगे तब हमारे मन में हमारे परिवेश के हिसाब से चित्र बनेंगे, लेकिन नाटक जब हम देखते हैं
0: जी
1: तो उसका सीधा असर, इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर दोनों दृष्टि से पड़ता है, संवाद डिलीवरी से भी और जो कुछ हम आंखों से देखते हैं।
0: जी
1: तो नाटक का महत्व ही उससे है। और जिस ढंग से हवा महल में जो झलकियां आप लोग सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को, तो उसमें आवाज की ही नाटकीयता से सारे भाव प्रेषित होते हैं।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: मेरी झलकियां, मैं कामना करता हूं कि विविध भारती से भी आए,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल
1: इस ढंग का कुछ प्रयास मेरा है।
0: जी जी जरूर, आपकी कलम में ताकत है तो फिर ये जरूर होगा। हमें अब बताइए कि आपके लेखन को किन साहित्यकारों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? मतलब आपने पढ़ा है बचपन से इतने
1: जी
0: सारे साहित्यकारों को,
1: जी
0: तो किन साहित्यकारों से आप प्रभावित रहे?
1: मूलतः मैं परसाई जी से प्रभावित हूँ, अपने आप को परसाई जी से प्रभावित मानता हूँ, क्योंकि व्यंग की जो प्रारंभिक मेरी भावनाएं जागी वो उनके स्तंभों को पढ़ने से हुई, और फिर आगे जैसे जैसे मैं और गहराई से पढ़ता गया तो निश्चित ही जोशी जी ने, शरद जोशी जी के व्यंग, त्यागी जी के व्यंग, उनसे भी मैं प्रभावित रहा हूँ।
0: जी, और इन दिनों क्या लिख रहे हैं आप?
1: इन दिनों मैं कहानी पर काम कर रहा हूं और ललित निबंध पर काम कर रहा हूं,
0: जी
1: क्योंकि ललित निबंध में साहित्य अमृत एक पत्रिका है, तो उसमें बड़े अच्छे ढंग से ललित निबंध बहुत पढ़ने मिलते थे। ललित निबंध विधा कम लिखी जा रही है, संस्मरण विधा कम लिखी जा रही है,
0: विस्मृत हो रही है एक तरह
1: विस्मृत
0: से
1: हो रहे,
0: आजकल।
1: रिपोर्टाज बहुत कम लिखे जा रहे हैं। तो मेरा यह है कि चूंकि बहुआयामी बहुविध व्यक्तित्व अपना मेरा ऐसा कुछ बन गया है, तो पहले उस विधा की रचनाएं बहुत सारी पढ़ता हूँ, श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ता हूँ, और फिर वो ईश्वर ने भाव दिए हैं, शब्द दिए हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता दी है, तो उसमें अभिव्यक्त करता हूँ।
0: जी विवेक रंजन जी, बड़ी ही रोचक बातें आपने कहीं साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। विविध भारती परिवार की ओर से और श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ। नमस्कार।
1: धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती परिवार को कि ये आज आपने मुझे अवसर दिया, और तमाम श्रोताओं को कि आपने मुझे सुना और आप मुझे पसंद किया नहीं किया ये तो आपके पत्रों से मालूम होगा। विविध भारती को आपके फीडबैक का जरूर

0: इंतजार रहेगा
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
0: थैंक यू ममता जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जुबैर खान। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम FM 103 पर। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी युवा साथी दिव्या सिंह, लेकर आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम युव वाणी, जहाँ करेंगे हम आज की बात, देंगे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और साथ ही कराएंगे आपका मनोरंजन फिल्मी गीतों के साथ। तो साथियों, कल्पना कीजिए कि आपके पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी के लिए जरूरी कौशल नहीं, और वहीं कई ऐसे युवा होते हैं जिनके पास हुनर और कौशल है पर डिग्री नहीं। तो ऐसे में युवा तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके हाथों में सही कौशल हो। इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करना और उन्हें रोजगार, स्वरोजगार व आत्मनिर्भरता के लिए जागरूक करना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में इस दिवस की घोषणा की थी और 2015 से इसे पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। आज के समय में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि शिक्षा के साथ कौशल भी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बन चुका है। श्रोताओं, आज का युग तेजी से बदल रही तकनीकों का युग है। AI, रोबोटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सुरक्षा और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में लगातार नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ऐसे में युवाओं के लिए केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उन्हें व्यावहारिक ज्ञान, तकनीकी क्षमता, संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, समस्या का समाधान और टीम वर्क जैसी कौशल भी विकसित करने होंगे। साथियों, कौशल विकास का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम युवाओं को रोजगार योग्य बनाता है। कई बार कंपनियां डिग्री से अधिक उम्मीदवार के कौशल को महत्व देती हैं।

यदि युवाओं के पास किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता हो तो उसके लिए रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कौशल विकास केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं है, यह युवाओं के उद्यमी बनने की प्रेरणा भी देता है। आज हजारों युवा अपने हुनर के दम पर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन व्यवसाय चला रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। तो आइए श्रोताओं, हम सभी इस विश्व युवा कौशल दिवस पर यह संकल्प लें कि हम केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने ज्ञान के साथ साथ अपने कौशल का भी निरंतर विकास करेंगे, क्योंकि युवा अपने उम्र से नहीं हुनर से बड़ा होता है। जिस हाथ में कौशल होता है वही सफल होता है। तो साथियों, चर्चाओं का सिलसिला तो हमारा यूं ही चलता ही रहेगा, तो आइए इसी के साथ सुनवाते हैं आपको ये वार्ता, विकास का आधार युवा कौशल। वार्ताकार हैं प्राची यादव।

नमस्कार। युवाओं को किसी भी देश का भविष्य कहा जाता है। उनके पास वह ऊर्जा, सृजनशीलता और नवीनता है जो किसी भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब उन्हें सही शिक्षा और कौशल विकास के अवसर मिले। इसलिए युवाओं का कौशल विकास न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है। कौशल विकास से तात्पर्य उन तकनीकी और सॉफ्ट स्किल को सिखाने से है जो रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें तकनीकी कौशल जैसे प्रोग्रामिंग, मशीन ऑपरेशन और डिजिटल मार्केटिंग शामिल है। साथ ही सॉफ्ट स्किल जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी शामिल है। इन कौशलों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये युवाओं को न केवल रोजगार प्राप्त करने में मदद करते हैं बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और अपने समुदाय में सकारात्मक योगदान देने में भी सक्षम बनाते हैं। आज की डिजिटल और तकनीकी दुनिया में तकनीकी कौशल की मांग तेजी से बढ़ रही है। प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। तकनीकी कौशल प्राप्त करने से युवाओं को नए और उभरते हुए रोजगार के अवसर मिल सकते हैं जिससे वे अपने करियर में सफल हो सकते हैं। सिर्फ तकनीकी कौशल ही नहीं, सॉफ्ट स्किल भी किसी व्यक्ति के पेशेवर और व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, नेतृत्व और टाइम मैनेजमेंट जैसे कौशल किसी भी प्रोफेशन के लिए अनिवार्य है। ये कौशल न केवल रोजगार प्राप्त करने में मदद करते हैं बल्कि कार्यस्थल पर भी बेहतर प्रदर्शन करने में सहायक होते हैं। कौशल विकास में सरकार और संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस भूमिका को विस्तार से समझते हैं। सरकार ने कौशल विकास के लिए विभिन्न नीतियां बनाई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कौशल विकास नीति। इन नीतियों के माध्यम से लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित किया जाता है। संगठन और बोर्ड। सरकार ने विभिन्न संगठन और बोर्ड स्थापित किए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और विभिन्न राज्य स्तरीय कौशल विकास मिशन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सके। सरकार ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना और संचालन करती है जहां तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करती है ताकि वे उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। विभिन्न स्कॉलरशिप योजनाएं हैं जो छात्रों को उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। ये संस्थान तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं। इसमें ITI, पॉलिटेक्निक और कौशल विकास केंद्र शामिल हैं। कोचिंग और प्रशिक्षण केंद्र। यह केंद्र विशेष कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, टेलरिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क्स। अगर उद्योग की बात करें तो उद्योग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित करते हैं जिससे उनके कार्य क्षमता बढ़ती है। उद्योग विभिन्न कौशल विकास संस्थानों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं ताकि प्रशिक्षण और शिक्षा का स्तर औद्योगिक मानकों के अनुरूप हो। कौशल विकास के लिए

0: बेसिक शिक्षा प्रदान करते हैं और विभिन्न स्किल कोर्सेज संचालित करते हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी से कौशल विकास में सुधार आता है, जैसे कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में निजी कंपनियों की भागीदारी होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सरकार और संस्थान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और कौशल विकास संभव हो सके। सरकार और संस्थानों की भूमिका कौशल विकास में बेहद महत्वपूर्ण होती है। सरकार नीति निर्माण, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान देती है, जबकि संस्थान वास्तविक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दोनों के सहयोग से ही कौशल विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट किसी व्यक्ति के ज्ञान, दक्षता और विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों और उपायों को अपनाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों को विभिन्न पेशेवर और व्यक्तिगत क्षेत्रों में अधिक सक्षम बनाती है। कौशल विकास के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा, ईडेक्स, यूडेसिटी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कौशल सिखाने वाले कोर्स। MOOC यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करना। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम विद्यार्थियों को वास्तविक कार्य अनुभव प्रदान करते हैं। यह उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण और कार्य अनुभव का संयोजन होता है। नियमित कार्यशालाएं और सेमिनार जिसमें विशेष कौशल सिखाए जाते हैं, इनका आयोजन उद्योग विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है जो अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY जैसी सरकारी योजनाएं जो प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं, विभिन्न प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम के बाद प्रमाण पत्र नियोक्ताओं के लिए एक मान्यता होती है कि व्यक्ति ने आवश्यक कौशल हासिल कर लिया है। व्यक्तिगत विकास और सेल्फ लर्निंग व्यक्ति की स्वयं सीखने की प्रवृत्ति और लगातार खुद को अपडेट करने की चाहत, पुस्तकें पढ़ना, ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखना और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर काम करना, इन कदमों के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने पेशेवर जीवन में अधिक सक्षम बन सकते हैं बल्कि व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। अंत में मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहूंगी कि अपने कौशल को निखारने के लिए हमेशा तैयार रहें, सीखना कभी ना छोड़ें और नए नए कौशल सीखने की कोशिश करें। आपका कौशल ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और यह आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। धन्यवाद।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे विकास का आधार युवा कौशल पर ये वार्ता। वार्ताकार थी प्राची यादव। इसी के साथ आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
2: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
3: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
4: लग जागने के
2: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं। हर लफ्ज में छुपी है

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी कलाई होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीती कल की मिठास और आज की

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: सुनिए सुनिए सुनिए 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:00

ब्रेक के बाद स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। साथियों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जिसने लाखों युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी है। एक ऐसी पहल जो केवल प्रशिक्षण नहीं देती बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता का रास्ता भी दिखाती है। यह योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे संक्षेप में PMKVY कहा जाता है। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि आज के समय में केवल डिग्री होना ही पर्याप्त नहीं है, इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण देना, उनके कौशल को निखारना और रोजगार व स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, निर्माण कार्य व कई अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए पाठ्यक्रम शामिल है। दोस्तों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यदि हमारे युवा कुशल होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। आप अपने नजदीकी कौशल प्रशिक्षण केंद्र पर संपर्क करें, आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और अपनी भविष्य को नई दिशा दें। दोस्तों, चर्चाएं तो हमारी होती ही रहेंगी, इसी के साथ आइए करवाते हैं आपका मनोरंजन कार्यक्रम के पहले गीत से, जिसे फिल्म सलाम नमस्ते से लिया गया है, शान गायत्री अय्यर की आवाज में।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे शान गायत्री अय्यर की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत। आइए इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युवाणी में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे युवा की जिन्होंने अपने जीवन में आई कठिनाइयों को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपने जुनून के दम पर पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ त्रिशनित अरोरा की। त्रिशनित अरोरा का जन्म 2 नवंबर 1993 को पंजाब के लुधियाना में हुआ। बचपन से ही उनकी रुचि कंप्यूटर और तकनीक में थी। वे पढ़ाई में औसत छात्र थे और 8वीं कक्षा में असफल भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जहां दूसरे बच्चे केवल कंप्यूटर चलाना सीख रहे थे, वहीं त्रिशनित कंप्यूटर की सुरक्षा, हैकिंग और सिस्टम की कमजोरियों को समझने में जुट गए। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की गहन अध्ययन किया और अपनी मेहनत व लगन के बल पर उन्होंने कम उम्र में ही कंप्यूटर सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में पहचान बना ली। साथियों, आपको बता दूं कि उन्होंने साइबर सुरक्षा पर कई किताबें भी लिखी, जिनमें डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। वे देश विदेश के कई मंचों पर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में जानकारी देते हैं और युवाओं को सुरक्षित डिजिटल जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रोताओं, उनकी सफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल अच्छे अंक ही सफलता की गारंटी नहीं होते। यदि आपके अंदर सीखने की इच्छा, मेहनत करने का साहस और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण है, तो आप किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। साथियों, त्रिशनित अरोरा की कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा है और साथ ही यह बताती है कि आवश्यकता अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत हो सकती है। सही दिशा, निरंतर अभ्यास, मेहनत व आत्मविश्वास के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी अलग पहचान बना सकता है। दोस्तों, चर्चा तो होती ही रहेंगी, इसी के साथ आइए अब सुनते हैं अमाल मलिक की आवाज में फिल्म साइना से ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म साइना से अमाल मलिक की आवाज में बहुत ही प्यारा संगीत। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपसे ज्यादा सफल है, ज्यादा प्रतिभाशाली है या ज्यादा अमीर है? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह तुलना हमें आगे बढ़ाती है या तो पीछे धकेलती है? सच्चाई यह है कि दूसरों से तुलना करना हमारी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हर इंसान दुनिया में अलग है, हर किसी की परिस्थितियां, संघर्ष, अवसर और मंजिल अलग होती है। जिस व्यक्ति की सफलता देखकर आप खुद को कम समझ रहे हैं, हो सकता है कि उसने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया हो या कठिन मेहनत की हो। हम अक्सर लोगों की सफलता देखते हैं लेकिन उनके संघर्ष नहीं। सोचिए, अगर एक आम का पेड़ यह सोचे कि मैं नारियल के पेड़ जितना ऊंचा क्यों नहीं हूँ, या गुलाब का फूल यह सोचे कि मैं सूरजमुखी जितना बड़ा क्यों नहीं हूँ, तो क्या वे

अपनी खूबसूरती को पहचान पाएंगे? बिल्कुल नहीं। प्रकृति हमें सिखाती है कि डर किसी की अपनी अलग पहचान होती है। दूसरों से तुलना करने के लिए कई नुकसान हैं। इससे आत्मविश्वास की कमी होती है, मन में हीन भावना पैदा होती है और हम धीरे धीरे अपनी खूबियां भूल जाते हैं। साथियों, अगर तुलना करनी ही है तो अपनी तुलना आने वाले कल से कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं पहले से बेहतर हूँ? क्या मैंने कुछ नया सीखा? क्या मैं अपनी गलतियों से आगे बढ़ा? यही तुलना आपको हर दिन बेहतर बनाएगी। याद रखिए, सफलता कोई दौड़ नहीं जहां सभी को एक साथ फिनिश लाइन पार करनी हो। हर व्यक्ति के अपना समय होता है, कोई जल्दी सफल होता है तो कोई थोड़ी देर से, लेकिन मेहनत और धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल जरूर पाता है। तो श्रोताओं, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि दूसरों की कहानी देखकर अपनी कहानी का फैसला मत कीजिए। आपकी मंजिल, आपका सफर और आपकी पहचान सबसे अलग है। अपनी तुलना किसी और से नहीं बल्कि अपने बीते हुए कल से कीजिए। यही सफलता की और सच्ची खुशी का सबसे अच्छा रास्ता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा साथ पसंद आया होगा और आपने कार्यक्रम का पूरा आनंद उठाया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें खत लिखकर बता सकते हैं और अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी कानपुर रोड झांसी, पिन कोड है 284128। इसके साथ ही दोस्तों, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज आकाशवाणी झांसी को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपका हमारा साथ बना रहे। अब इजाजत दीजिए अपनी युवा साथी दिव्या सिंह को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 103 पर। हम आकाशवाणी की झांसी के अंश से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत।

नमस्कार बहनों, मैं हूं आपकी अपनी सखी अर्चना त्रिपाठी और आप सुन रही हैं नारी जगत। आज की बात में हम चर्चा करेंगे कि एक विषय की जो हर महिला को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करता है, अपना स्टार्टअप शुरू करने की ट्रेनिंग। आज के समय में महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारी ही नहीं निभा रही है, बल्कि अपने हुनर और मेहनत के दम पर सफल उद्यमी भी बन रही है। अगर आपके पास कोई अच्छा विचार है, जैसे घर का बना हुआ अचार, पापड़, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, बेकिंग, हस्तशिल्प या ऑनलाइन सेवाएं, तो उसे एक सफल व्यवसाय का रूप दिया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि सही प्रशिक्षण। आज सरकार और अनेक संस्थाएं महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास, डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय प्रबंधन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ऑनलाइन बिक्री जैसे विषयों पर निःशुल्क या कम शुल्क में प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। इन प्रशिक्षणों में न केवल व्यवसाय शुरू करने का तरीका समझ में आता है, बल्कि बैंक ऋण, सरकारी योजनाएं और ग्राहकों तक पहुंच बनाने की जानकारी भी मिलती है। याद रखिए, किसी भी बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। आत्मविश्वास, सीखने की इच्छा और निरंतर मेहनत आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो बहनों, अपने सपनों को केवल अपने मत रखिए, अपने हुनर को पहचानिए।

प्रशिक्षण लीजिए और आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में अपना भी एक मजबूत कदम बढ़ाएं। बहनों, यदि आप अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं, नया हुनर सीखकर रोजगार या स्वरोजगार शुरू करना चाहती हैं, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी एवं वेलनेस, कंप्यूटर, स्वास्थ्य सेवाएं, रिटेल, फ्रूट प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है, जिससे नौकरी पाने या अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिलती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके कौशल को नई पहचान देना है। यदि आपके पास आसपास कोई भी अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र है तो वहां जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकती हैं और अपने सपनों को नई उड़ान दे सकती हैं। याद रखिए, सीखा हुआ हुनर जीवन भर आपका साथ देता है और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब महिलाएं रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई उड़ानें तलाश रही हैं और आप भी घर बैठे नया काम शुरू करना चाहती हैं, तो आइए सुनते हैं हस्तशिल्प कलाकार की प्रांजलि कपूर से खास बातचीत, और बात कर रही हैं प्रत्यंचा तिवारी।

0: मैनु, जैसा कि आप सभी जानती हैं कि हमारे नारी जगत, जिसके अंतर्गत हम आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने हुनर और परिश्रम के बल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, ना केवल समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया है बल्कि अपने साथ साथ कुछ महिलाओं को भी आगे लाने का प्रयास किया है। आज ऐसी ही एक महिला है जिनका नाम है प्रांजलि कपूर, जिन्होंने वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कि हमारे पर्यावरण के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होते हैं। आइए बातचीत करते हैं प्रांजलि कपूर से। तो प्रांजलि कपूर जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार।
1: नमस्कार
0: प्रांजलि जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं हमारी महिला श्रोताओं को।
1: मेरा नाम प्रांजलि कपूर है और मैं एक कंपनी चलाती हूँ जिसमें हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस होता है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली मैनेजमेंट का है और मैंने ग्रेजुएशन बीबीए एमबीए और उसके बाद पीएचडी की है, डॉक्टरेट डिग्री ली है मैनेजमेंट में। लेकिन 10-15 साल नौकरी करने के बाद मैं दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुई झांसी और फिर मुझे कुछ करना था क्योंकि मैं एक कंपनी में काम करती थी, तो फैमिली को देखने के साथ साथ मुझे काफी और चीजों पर भी ध्यान देना था, तो इसलिए मैंने अपना बिजनेस खोला। मैंने यहाँ पर आके 10 साल करीब काम किया, बच्चों को पढ़ाया, अपनी एक एकेडमी बनाई जिसमें हम डांस और ट्यूशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, इंग्लिश ग्रामर और ये सारी चीजें उसमें सिखाते आ रहे थे। और आर्ट एंड क्राफ्ट मेरा मेन जो था कि बच्चों को कुछ डिफरेंट होना चाहिए कि वो मोबाइल और ये सब देखने से अलावा, ये सारी चीजें देखने के अलावा हम कुछ नया क्रिएटिव करें। तो बच्चों को सिखाते सिखाते अब मैंने कुछ 3 साल पहले अपना एक बिजनेस शुरू किया हैंडीक्राफ्ट का, जिसमें मैं केवल सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा वर्क करती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म सिखाती हूँ जैसे चतेरी है, आपकी वर्ली है, लिपिन है, पिछवाई आर्ट है, ये सारी मंडाला आर्ट है, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। और वेस्ट मटेरियल से उनके घर में जो भी वेस्ट मटेरियल है, आप हमारे यहाँ आइए, बच्चे आते हैं, आप उनको कोई भी अपना घर का वेस्ट प्रोडक्ट दे सकते हैं और वो हम उसको बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया सीखें, अब खुद से कुछ बनाए ताकि उनका जो टैलेंट है वो और बढ़े।
0: तो प्रांजलि जी, जैसा आपने बताया कि आप सस्टेनेबिलिटी पे काम करती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारी महिला श्रोताओं को बता दीजिए कि किस तरह से फायदेमंद है
1: ये। जैसे आपके घर में कोई भी पुराने फर्नीचर्स हैं या कोई भी चीजें हैं जो आपको लगता है कि वो स्क्रैप है, आप उनको उठा के फेंक देते हैं, मतलब प्लास्टिक की चीजें हैं जो कि आजकल बहुत ही पर्यावरण को खराब कर रही है
0: जी,
1: ठीक है, जो हमारे यहाँ मतलब जिसको मैं कहती हूँ लैंडफिल्स में जाती है चीजें
0: जी,
1: पर लेयरिंग होती रह जाती है, कूड़े के ढेर लग रहे हैं शहर

0: के बाहर, तो हम कोशिश ये कर सकते हैं, हम पूरी तरह से उसको खत्म तो नहीं कर सकते,
1: जी
0: लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि नई चीज खरीदने से पहले हम पुरानी चीजों को कैसे अपनी उन्हीं उसी में हम रीयूज कर सके।
1: जी
0: ठीक है, जैसे आपके घर में से कुछ पुराने लकड़ी हुई या कुछ हुआ तो आपने उठा के जला दिया, तो आप उससे कुछ नया क्रिएट करें, कुछ फोटो फ्रेम्स बनाएं, उसी को कटवा के आप अपनी कोई शेल्फ, अगर कोई बड़ा पीस है तो आप दोबारा से उसको शेल्फ बनवा लीजिए।
1: जी
0: डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को निकालते हैं,
1: जी
0: जैसे लोहे का है, लोहे में से 10 चीजें मेरे पास कबाड़ की पड़ी हैं, तो मैं उनको जोड़ के कुछ नया बनाना चाहूंगी,
1: जी
0: या तो मैं घर के यूज की जैसे कोई टेबल या चेयर ऐसी कोई चीज बना लूं, ठीक है, या कोई डेकोरेटिव आइटम बना लो। आप अपने घर में नहीं यूज कर सकते तो आप उसको कहीं बाहर रोड पे या कहीं ऐसी जगह लगा दीजिए कि वो लोगों को देखने में अच्छी लगे, वो फिके नहीं। टायर्स के हम लोग सोफास वगैरह बनाते हैं, और मतलब इन सारी चीजों पे सस्टेनेबिलिटी पे वर्क करते हैं, रीयूज पे वर्क करते हैं।
1: जी
0: छोटी छोटी चीजें, पैकेट्स आ रहे हैं, आप उनको जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज तो इनके शूज वगैरह भी बना रही हैं, लेकिन हम उतना प्रोसेस नहीं कर सकते घर में, तो हम उनका कुछ बैग्स बनाते हैं। हमारी नानी और दादियां ये सब करती थी पहले, तो उन लगता था कि अरे ये क्या है, फालतू की चीजें हैं, लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो बाद में चल के हमारी आने वाली जेनरेशन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, जो कि इन्वायरमेंट को हार्म करेगी और फिर वो लॉन्ग टर्म में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। तो मैं बनाती हूँ जैसे आपकी घी की बत्तियां हो गई,
1: जी
0: ठीक है, आजकल मतलब रेडी टू यूज चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, तो हम लोग घी की बत्तियां बनाते हैं रेडी टू यूज। हम काउडंग के प्रोडक्ट्स बनाते हैं,
1: अच्छा
0: जैसे धूप स्टिक हो गई
1: जी
0: है ना, धूप स्टिक में चंदन और देसी गाय का गोबर लेके
1: जी
0: उससे मिक्स करके बनाते हैं।
1: जी
0: हम लोग दिए बनाते हैं काउडंग के,
1: जी
0: और हम लोग काउडंग की शीट्स बनाते हैं बड़ी बड़ी, जैसे किसी को बहुत इको फ्रेंडली का ज्यादा पसंद है तो हम लोग बड़ी शीट्स बना के उसपे पेंटिंग्स बनाते हैं।
1: जी
0: फ्रिज मैग्नेट्स होते हैं, वैसे भी जनरली आप चीजें ज्यादा नहीं यूज करते हो, 2-3 इयर्स में फेंक देते हो,
1: बिल्कुल
0: ठीक है, ये चलेगी आपकी, जब आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि वो गिरेगी तो टूट जाएगी, लेकिन फिर भी आप उन सब चीजों की तरफ जाएंगे तो वो अच्छा रहता है।
1: जी
0: फिर उसके बाद मेरे बड़े आर्ट पैनल्स बनते हैं, जैसे कि मंदिर के पैनल्स हो गए है ना, आपको फ्रिज के लिए चाहिए, आपको एलमिराज के लिए चाहिए, तो हम 5 फीट 10 फीट के पैनल्स बना के आपको देते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने घर में, जैसे आप दीवारों पे लगाना चाहो तो दीवार पे डायरेक्ट भी बनाते हैं हमने हम लोग सीमेंट के वॉल म्यूरल्स भी बनाते हैं, मतलब सीमेंट आपका लॉन्ग टर्म चलता है, 20-30 इयर्स 40 इयर्स।
1: जी
0: मैं कोशिश करती हूँ हम फाइबर की चीज ना यूज करें, सीमेंट की, मिट्टी की, ये चीजें यूज करें है ना,
1: जी
0: ताकि वो मतलब लॉन्ग टर्म चले और इन्वायरमेंट को हमारे ज्यादा हार्म भी नहीं करें।
1: बिल्कुल
0: इसके अलावा हमारा स्क्रैप का प्रोडक्ट्स बनता है, आप अपना कोई भी पुराना सामान हमें दे सकते हैं और हम उसके ऊपर रीवर्क करके आप कुछ नया क्रिएट करके दे सकते हैं,
1: जी
0: चाहे वो आपकी ग्रिल्स हो, पुराने पुराने दरवाजे हो जो कि ठीक हो, मतलब दीमक खाए ना हो है ना, कोई पुराना फ्रेम है, कोई स्टूल है, टायर्स का बनाते हैं, लोहे का अगर आपके पास कोई भी मटेरियल पड़ा है तो वो आप हमें दे सकते हैं, बॉटल आर्ट के लिए दे सकते हैं, कांच का मजाक भी बनाते हैं हम, जैसे हम पेंटिंग्स में आपकी पुरानी बॉटल्स को उसको थोड़े पीसेस करके मोजैक भी बना लेते हैं,
1: अच्छा
0: तो ये सारी चीजें, काफी सारी चीजें होती हैं जो
1: जी
0: सस्टेनेबिलिटी पे भी हैं और बाकी डिफरेंट सारी आर्ट फॉर्म्स पे हो।
1: प्रांजलि जी, देखिए कोई भी काम यदि कोई महिला शुरू करती है तो कुछ ना कुछ परेशानियां या कुछ ऐसे चैलेंजेस या जिनको चुनौतियां कह सकते हैं आती हैं लाइफ में, तो जब आपने अपने बच्चों को या अदर बच्चों को आपने जब आर्ट सिखाना शुरू किया, तब से लेकर अब तक का आपका जो सफर है वो कैसा रहा?
0: तब से अब तक तो बहुत अच्छा रहा है, मतलब सारा कुछ मेरे को लगता है कि बच्चों ने कई, मतलब मेरे जो छोटे छोटे बच्चे थे अब तो काफी बड़े बड़े हो गए, मतलब 10-15 इयर्स 10 इयर्स से मैं कर ही रही हूँ, तो उनमें एक नया क्रिएशन है, मतलब उनको अगर आप कुछ कहेंगे कि बेटा ये क्रिएट करके दो तो वो करके देंगे, वो हर चीज नेट से निकाल के या इस चीज से नहीं करेंगे, मतलब वो उनके अंदर अपने खुद की क्रिएटिविटी रहेगी, तो उस चीज पे मतलब मैं वर्क करती हूँ कि बच्चे खुद से चीजें क्रिएट करें।
1: अच्छा, आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा इस काम में?
0: मेरे हस्बैंड तो बहुत

0: सपोर्टिव है,
1: जी
0: मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो कई बार हमें किसी ना किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता
1: बिल्कुल
0: है।
1: जी
0: तो थोड़ा सा वो सपोर्ट करते हैं, मुझे कहीं जाना है तो मैं बोल के जाती हूँ कि आज आप प्लीज थोड़ा घर में देख लीजिएगा, या मतलब,
1: जी
0: तो फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है इस चीज में, तो मैं इस चीज के लिए बोलूंगी। और मेरी मदर भी बहुत मोटिवेटिंग है, तो वो हमेशा बोलती है कि बेटा कुछ भी करते रहो। मैं घर में भी जब मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम होता है बच्चों के अलावा, फैमिली के अलावा, तो मैं अपना कुछ कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ।
1: बिल्कुल। प्रांजलि जी, आपका सबसे फेवरेट आर्ट फॉर्म कौन सा है?
0: मुझे आजकल फ्यूजन वर्क करना बहुत पसंद आया है।
1: अच्छा
0: ये नया थोड़ा सा है,
1: जी
0: आप मॉडर्न उसमें कहेंगे, लेकिन जैसे मैं क्या करती हूँ, कुछ क्लब करती हूँ। मैंने पिचवाई और लिपन को क्लब कर दिया,
1: अच्छा
0: ठीक है। मैंने मंडाला और वर्ली को ऐसे क्लब कर दिया। अभी
1: जी
0: हमने कुछ बच्चों को पेंटिंग सिखाई थी, जो कि बहुत ज्यादा स्कूल्स वगैरह में भी उनके पसंद आई थी, तो उन्होंने छोटा सा म्यूरल बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने मधुबनी बनाई, फिर
1: अच्छा
0: उसके बाद उन्होंने वर्ली बनाई और फिर लिपिन बनाई। तो एक
1: जी
0: बड़ा आर्ट फॉर्म निकल के आया, बहुत ही
1: जी
0: क्रिएटिव था
1: जी
0: वो। तो आर्ट फॉर्म्स मुझे सारे ही बहुत पसंद है। मंडाला वैसे मेरा फेवरेट है,
1: जी
0: क्योंकि मंडाला में आपको ज्यादा चीजें नहीं, एक पेन पेंसिल कॉपी ऐसे यूज करना होता है। आप कहीं भी जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आप वो
1: जी
0: चीज क्रिएट कर सकते।
1: बिल्कुल, मतलब समावेश हो गया, सारी कलाओं का
0: हाँ,
1: मिश्रण बोल सकते
0: मिश्रण
1: हैं
0: बोलते
1: इसको।
0: हैं।
1: अच्छा, आपको लगता है कि लोकल आर्ट या फोक आर्ट जो फॉर्म्स हैं, इनको नए तरीके से प्रस्तुत करना जरूरी है आज के समय में?
0: हमें अपना ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखना है,
1: जी
0: तो हमें ओरिजिनल आर्ट तो आनी चाहिए।
1: जी
0: जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, तो चितेरी आती है, तो चितेरी में तो दैट इज द बेस्ट आर्ट, क्योंकि बुंदेलखंडियों के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
1: बिल्कुल
0: और ये कब से शुरू हुई, जब से हमने हमारे घर में शादियां और ये सारी चीजें शुरू हुई, तो शादियों के घर के बाहर
1: जी
0: वो वर वधू की फोटो बनाते थे,
1: हाँ जी
0: तो उन्होंने उसको चितेरी के थ्रू बनाना शुरू किया,
1: जी
0: है ना। तो पता चलता था कि ये इस घर में शादी होने वाली है
1: जी
0: या हो रही है।
1: जी साथ ही साथ एक आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स, इन दोनों रोल्स को बैलेंस करना कितना मुश्किल रहा है या कितना मुश्किल होता है?
0: ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप आर्टिस्ट मतलब आर्टिस्ट आर्ट करता है, लेकिन
1: जी
0: उसको सेल भी करना पड़ता है एज एंटरप्रेन्योर,
1: जी
0: है ना। तो मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ, मैं लोगों से बात करती हूँ, थोड़े से कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे पुराने,
1: जी
0: तो हम कोशिश करते हैं कि क्योंकि होता क्या है ना, आप कोई चीज बना रहे होते तो आप उसको बेच नहीं सकते, वो
1: जी
0: थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
1: बिल्कुल
0: तो और एंटरप्रेन्योर का काम ही यही है कि जो आप कर रहे हो उसको आप सेल आउट करो,
1: जी
0: लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को उस चीज की अवेयरनेस दो, है ना। तो जैसे आपके माध्यम से मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा थोड़ा सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करें आप अपनी मतलब जो भी आप घर में रीयूज और रिड्यूस कर सकते हैं चीजों को, वो
1: जी
0: उतना कम करें। मतलब शो ऑफ करने से अच्छा है कि हम अपनी पुरानी चीजों को ही प्रिजर्व करके रखें।
1: सहेज कर रखें
0: हाँ
1: उनको,
0: जी,
1: संभाल कर रखें।
0: संभाल।
1: जी प्रांजलि कपूर जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी हमें जानकारी दी ये आर्ट्स के बारे में। तो चलते चलते, आप हमारी महिला श्रोता जो हमारा कार्यक्रम अभी सुन रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी चीज का कोई चीज खत्म नहीं होती, आपको हर चीज की नई शुरुआत करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है, जैसे मैं बाहर से यहाँ आई तो मुझे भी लगा कि मैं क्या करूंगी, लेकिन मुझे मेरा ही पैशन था आर्ट का, तो मैनेजमेंट से आर्ट की तरफ आके मैंने कुछ काम करना शुरू किया। तो आपको भी अपना छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे आप उस चीज को शुरू कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मतलब मुझे हमेशा ही पैसे की तरफ या मतलब अपने आप अपनी क्रिएटिविटी को मरने नहीं देना है।
1: जी
0: आप चाहे सिलाई में करते हो, आप सिलाई कीजिए, है ना। आप आसपास अपनी कॉलोनी में अपने पड़ोसी को थोड़े से छोटे छोटे गिफ्ट दीजिए बना के, तो इससे होगा कि लोग आपको जानेंगे,
1: जी
0: है ना। और अपना क्रिएशन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो राइटिंग की फॉर्म में हो या आर्ट की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इससे आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन रहता है।
1: प्रांजलि कपूर जी, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपने दी और आप हमारे स्टूडियो में आई, अपनी जीवन यात्रा जो कला की है आपकी, उसको आपने हमारे साथ आज साझा किया, जिसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।

0: बात धन्यवाद,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: बहनों, यह थी हस्त शिल्प कलाकार प्रांजलि कपूर से प्रत्यंचा तिवारी की बातचीत। आशा है आप लोग को पसंद आई होगी। बहनों, करेंगे आगे की चर्चा, लेकिन उसके पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
3: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
4: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
5: लग जा गले के फिर हसी रात।
3: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं। हर लफ्ज में छुपी है बीत।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम नारी जगत में। बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली, ठंडी, फुहारें और सुकून तो लाता है, लेकिन साथ ही नमी, संक्रमण और कई छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आता है। ऐसे में केवल खान पान ही नहीं बल्कि कपड़ों का सही चयन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्षा ऋतु में हमेशा हल्के सूती या जल्दी सूखने वाले कपड़े पहनने का प्रयास करें। बहुत मोटे या भारी कपड़े नमी को लंबे समय तक अपने अंदर रोक लेते हैं, जिससे त्वचा पर खुजली, एलर्जी या फंगल संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। यदि बारिश में कपड़े भीग जाए तो उन्हें देर तक पहनने के बजाय तुरंत बदलें। बहनों, अब बात करें कपड़ों की चयन की, तो इस मौसम में गहरे रंगों के कपड़े भी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि उन पर कीचड़ के दाग कम दिखाई देते हैं। बाहर निकलते समय रेनकोट, छाता या और पानी से सुरक्षित चप्पल या सैंडल का उपयोग करें, ताकि फिसलने और संक्रमण से बचाव हो सके। बच्चों और बुजुर्गों के कपड़ों का भी विशेष ध्यान रखें। बहनों, सुंदर दिखने के साथ साथ आरामदायक और मौसम के अनुकूल कपड़े पहनना ही सही समझदारी है। छोटी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को कई बीमारियों से बचा सकती है। तो आइए बहनों, इस बरसात हम फैशन के साथ साथ स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दें, क्योंकि स्वास्थ्य तन प्रसन्न और मन को सुरक्षित रखता है। और हम जब बरसात की बात चली है, तो क्यों ना चले फिल्मी दुनिया में थोड़ा सा हम भी गुनगुना लें। तो ये सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो लिया है फिल्म बेटा से। आवाज है अनुराधा पौडवाल, विपिन सचदेवा की।

रहें, सजग रहें। बहनों, स्टूडियो की घड़ी अब इजाजत और नहीं दे रही है, तो जल्दी से पेन और कॉपी उठाकर आप कार्यक्रम का पता लिख लीजिए। कार्यक्रम का पता है नारी जगत कार्यक्रम, द्वारा के निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड नंबर 2841 2 8। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ। तो मुझे यानी अर्चना को जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

बहनों, जीवन में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपने मोबाइल फोन में परिवार के सदस्यों, नजदीकी रिश्तेदारों, डॉक्टर, एम्बुलेंस, पुलिस और महिलाओं हेल्पलाइन जैसे आवश्यक आपातकालीन नंबर हमेशा सेव करके रखें। जिन लोगों से आपात स्थिति में तुरंत संपर्क करना हो, उनके नंबर स्पीड डायल पर ही अवश्य सेट करें, ताकि जरूरत पड़ने पर बिना समय गवाए सहायता मिल सके। छोटी सी यह आदत संकट की घड़ी में आपके और आपके परिवार की सुरक्षा का बड़ा सहारा बन सकती है। सुरक्षित

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी जगत FM 103 पर। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया और पंच भैया को अपने विपिन भैया की नमस्कार। तो किसान भैया रो देखो जैसे अपने संजय भी भाई और अपन आगे अपनों कार्यक्रम लेके। तो आजकल हमारे किसान भैया देख रहे हैं देखो बरसात का मौसम चल रहा हो और बरसात में क्या है कि जो अपने खेत में आजकल देखा है कि बारिश देखो भैया बहुत कम हो रही है और अगर वही पानी अगर अपन ने इतने होते बेगा तो वह भैया नुकसानदायक है कि नहीं। पता लो खेत को पानी अपन ने जो गर्मियन में जो खाद बीज अपन ने खाद डालो पता लो ओवर की खाद खूब पट गया भैया ने खेत में और कहे पानी बरसो और वो पूरी बह के नाली के द्वारा अपने खेत से बाहर चलेगी तो कहे वो अपनी फसल खा फायदा न करे। तो ये बात को भी हमारे किसान भैया ने बिल्कुल ध्यान रखने के जो अपने खेत की मेड़बंदी है बिल्कुल ऊंची करके रखे। कहा खेत में पानी को भराव बनो रहे तो बिल्कुल खेत को पानी खेते में रहे और मजबूत मेड़बंदी करने ऊंचाई से जिन्हें भाई देखो तनक सी कटा मूंद अपन ने अपन लोग ज्यादा पानी बैस हो गए एक फुट पानी भर गए अपने खेत में वही बाहर निकल गए तो ऐसा भी हमारे किसान भैया बहन को नहीं करने और क्या करना कि अच्छी ऊंची मेड़ डाल दें ऊपरी ऊंची बंदी बना दें तो अपने जो खेत का जो पानी है उनको भराव है जो वन हो रहे तो आगे में जो अपन फसल में जैसे हमें तो खरीफ के मौसम चलो रबी में तो उनमें वो पानी अपन के काम आ जाते हैं। एक तो काहे का खेत में भाव रहे तो खेत की जो नमी है वो बनी रहे तो आगे की जो फसल बाकी लाने भी हो जाए। अगर देखो कहूँ अपनी भरेल है जैसे मान लो नरिया है तो उनमें अपन चेकडैम टाइप की भैया बनी है तो उतने भी बल को बंद कर दें तो वो जो पानी को रुकाओ सुई बन हो रहे। ये बात को हमारे किसान भैया बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर देखो खेत को पानी खेते में रखने आए तो उनके लाने मेड़बंदी अपन बहुत जरूरी है। मेड़बंदी के संगे संगे अपन बता दें कि भैया देखो अगर पानी की मात्रा अपने खेत में बनी रहे एक लाने कहा है भैया देखो मेड़ पे पेड़ भी लगा दें तो पेड़ भी अपने पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्या देखो पानी भी सूखने की क्षमता उनमें बन जाते हैं। तो ऐसे भी हमारे किसान भैया मैंने बल्कि बता दें कि देखो मेड़बंदी कई प्रकार की ऐसी सरकार की योजना चल रही है जैसे अपने जो घर को भी पानी है तो बने अच्छे बोरिंग में डाल दें जैसे सूखो ड्राई बोर है काउ को तो अपन वह अपन बरसात को पानी डाल सका तो आगे भविष्य में वो काम आ जाए। और एक बाद अगर अपने इतने देखो खेत तालाब योजना है तो ऐसी भी योजनाएं चलती हैं जो हमारे किसान भैया ने कई प्रकार को लाभ दे जाती तो अपनों के बहुत यही रहते किसान भैया बहन से कि जो भी अपन फसल बोए या फसल के संगे संगे जो अपनी खाली जमीन पड़ी तो उनमें बिल्कुल ऐसी मेड़बंदी कर दें कि देखो अपने कछु भैया ने कि अपने देखे हैं धान के खेत हैं तो बीच बीच में भैया ने देखो मेड़ डाल दे उन्हें कहा दे कि देखो ऊपर खेत है नचोर थोड़ा झला है तो ऊपर गए पानी भरने तो कैसे भर हो जाए तो उसमें मेड़बंदी अपन कर दें बीच में मेड़ डाल दें तो ऊपर को पानी ऊपर वाले खेत भर जाओ बीच में भर हो जाए और नीचे भर हो जाए तो बीच में अगर बड़ो खेत है तो तीन पार्ट में हमारे किसान भैया में बना सकते हैं और उनमें कहा धान की अपन रोपाई कर रहे थे जैसे तो धान में तो अपन देखते हैं भैया कि देखो खेत में पानी भर हो रहा थे बहुत तो ये बात को भी हमारे किसान भैया का उमदास ध्यान रखने और बात आउट है कि देखो अब बात करें खेती के संगे संगे और भी हमारे किसान भैया कछु व्यवसाय करवो चाहे जैसे आजकल देख रहे हैं कि कम जगह में अपन अच्छे उत्पाद लेने हैं तो क्या खेती करी जा सके मशरूम की तो ये बात को हमारे किसान भैया जाना कि कम जगह में कम लागत में मशरूम की खेती कैसे करें तो इनमें कहा है कि ज्यादा बड़ी की जरूरत सकते नहीं है। देखो जैसे धीरे धीरे पढ़ने का उससे प्रशिक्षण ले रहे हैं अपने कई एक विश्वविद्यालयों में कोर्स चलाया जाए कि देखो मशरूम अपन कौन सी मशरूम अपने खाने लायक है कौन सी नहीं है पता चलो अपन गांव में देखा था बोले भैया को कर्म होता है तो ऐसा नहीं है कि देखो जो मशरूम जंगली मशरूम होते और कछु मशरूम में जहरीली भी होते तो ऐसा नहीं कि अब देखो अपन ने कहीं मशरूम खावे के लाने भी हो और पता चलो अपन वो लकड़िया पे या कहीं जंगल में ऐसी जमीन उखा ले आए अपन ने वो खा ले तो नुकसान हो जो अपन खा बिल्कुल बीज दा हो जाए कि देखो जहाँ मशरूम की अपन खेती कर रहे हैं जैसे मिल्की है रोस्टर है और कीड़ा जरी है कई प्रकार की ऐसी मशरूम आती हैं जो अपने डॉक्टर भैया की सलाह से अपन एक बार अपन ट्रेनिंग ले लें अच्छे से समझ लें कौन मशरूम काय के काम में आउ थे तो वही हिसाब से मशरूम अपन की खेती कर सकते ये किला ने कहा है जो बरसात का मौसम है इस समय देखा और उमस चादना पड़ा तो अपने जो मशरूम की खेती है बाकी लाने उमस की आवश्यकता होते क्या देखो जैसे उमस अगर अपन ने कमरा में लगाए उनमें देखो उमस सूझे तो अपने आप ही बल्किया पैदावार अपन हम जाएंगे तो अपने किसान भैया बहन से क्या बोलते हैं कि देखो इस समय हमारे किसान भैया बहन है मशरूम की खेती कर सका तो कम लागत में अच्छा मुनाफा अगर कमाने हैं तो मशरूम की खेती करें तो कई प्रकार की मशरूम की दवाइयों में काम आउट है अपने तो जैसे भैया बहन से संपर्क करें और होते अपन संपर्क करके और जो कि बाजार की संभावना भी हो सके तो का नहीं भैया देखो ऐसी संबंधित कोई बतकावी उमदा से सुन लो जाए तो देखो देख रहे मशरूम की खेती प्रसंस्करण उत्पाद एवं बाजार की संभावना है और अपन को जो उनको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वैभव सिंह प्रशिक्षण सह शोध सहायक पादप रोग विज्ञान विभाग रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से और इनसे बतला कर रहे संतोष पाल भैया तो अपन सुने अपने किसान भैया बहन सुने का कछु भैया बता रहे
1: क किसान भैया रो, आज हमने अपने आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर वैभव जी को, जो कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से हैं, और इनसे आज हम चर्चा करते हैं मशरूम की खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस मशरूम के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ये मशरूम होता क्या है?
2: मशरूम एक प्रकार का कवक है, जिसे फफूद कहते हैं, इंग्लिश में फंगस भी कहते हैं। तो फंगस बहुत प्रकार के होते हैं, जो कुछ तो ऐसे होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन मशरूम उसी फंगस का फलन काय है, मतलब फ्रूटिंग बॉडी है, जिसको हम देख पाते हैं, हाथों में पकड़ पाते हैं और तोड़ के खाते हैं। तो मशरूम इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो हमने उसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है इस्तेमाल के हिसाब से। कुछ मशरूम ऐसे हैं जो हम खाते नहीं है, खाली वो छोटे छोटे होते हैं तो उनको देखने के लिए होता है। सेप्रोफिटिक एक्टिविटी है, मतलब डिकम्पोजर का काम करते हैं, तो जो ऑर्गेनिक मैटर खेतों में हो जाता है उसको गलाते हैं।
1: डॉक्टर वैभव जी, हम आपसे बात करते हैं, जो हमारे किसान भैया हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के, वे अधिकतर मशरूम की खेती के बारे में नहीं जानते हैं, सड़ी लकड़ियां पड़ी रहती हैं, उन पर एक फफूंद सा निकल आता है, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कुकरमुत्ता बोला जाता है, तो क्या वही मशरूम होता है?
2: जी, वो भी एक प्रकार का मशरूम है, लेकिन वो खाने योग्य नहीं होता है। जैसा मैंने बताया कि मशरूम के बहुत सारे काम हैं, हमने कुछ मशरूमों को अपने हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट लिया है। जैसे उसमें खाद्य मशरूम है, औषधीय मशरूम है, जहरीले मशरूम है। अब जहरीले में कुछ ऐसे होते हैं जो जानलेवा होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो जंगली हैं, जिनको खाया जाता है, लेकिन आमतौर पर हम उसकी सलाह नहीं देते हैं कि लोग जंगली मशरूम को खाएं।
1: बिल्कुल।
2: तो जो खाद्य मशरूम है और जो औषधीय मशरूम है, ज्यादा उसी का सेवन करना चाहिए जो गांव में हो जाता है बरसात के मौसम में, क्योंकि मशरूम को दो चीजें चाहिए होती हैं, सही तापक्रम और नमी। तो जैसे कि वर्षा ऋतु में नमी की पर्याप्त मात्रा रहती है, तो ये स्वतः ही अपने आप जहाँ इसका बीज होता है वो निकल आता है, और हर साल आप देखेंगे लगभग उसी जगह के आसपास निकलता है।
1: ऐसे अलग से कोई बीज बोना नहीं पड़ता है क्या?
2: प्रकृति में अलग से नहीं बोना होता, क्योंकि उसका

0: बीज झड़ जाता है, लेकिन जब किसान करता है तो उसको एक खास प्रजाति का बीज लाना होता है जो पता रहे कि हाँ ये बटन मशरूम का है, ये डिंगरी का बीज है या ये मिल्की मशरूम का बीज है, जिससे वही प्रजाति उसको वापस पैदावार में मिले। तो बुंदेलखंड में थोड़ी सी अभी कमी है जानकारी की, तो किसान भाई अगर चाहें तो जैसे फसल अवशेष है
1: जी
0: वो लोग बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग फसल अवशेष जलाते थे, सरकार ने अब बैन कर दिया, तो जलाने वाला तो अब रहा नहीं सिस्टम।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अब क्या करना है कि उसकी या तो खाद बना लेते हैं, है ना, खाद बनाते हैं या पशु को देते हैं। और मेरी सलाह है कि दोनों काम करने से पहले किसान भाई जो है उसको मशरूम उत्पादन के लिए इस्तेमाल कर लें, तो उनका भूसे का या जो भी फसल अवशेष है उसका दुगना लाभ उनको मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: पहला तो उन्होंने मशरूम ले लिया, उसके बाद चाहे वो खाद बना लें चाहे पशु को खिला दें।
1: डॉक्टर साहब वैभव जी, चर्चा करती हैं कि हमारे जो बुंदेलखंड क्षेत्र है इसमें किसान किस किस स्थान पर मशरूम की खेती कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि जो फसल अवशेष हैं उन पर कर सकते हैं। अब जैसे हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में जो जलवायु है इसके अनुकूल है क्या, और दूसरी बात कि जो मिट्टी होती है उस पर भी इसे उगाया जा सकता है क्या? और जैसे कुछ लोग चर्चा करते हैं कि छत में या पॉली हाउस में इस तरह से उगाने की क्या प्रक्रिया है?
0: ये बड़ा अच्छा आपने सवाल लिया। किसानों के मन में ये बड़ा एक भ्रम रहता है, तो उसमें कंपोस्ट का मतलब वो समझते हैं कि गोबर की खाद।
1: बिल्कुल।
0: तो पहला भ्रम है कि गोबर की खाद नहीं है, क्योंकि ये तरीका वही है कंपोस्टिंग वाला, इसमें भी कंपोस्ट बोलते हैं।
1: जी जी।
0: और मशरूम की खेती खुले में कभी नहीं होती है, जहाँ पे नमी अच्छी हो एक आध जगह एक आध प्रजाति को ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो 99% जो प्रजातियां हैं तो वो आपके बंद कमरे में ही होती हैं। इसलिए बुंदेलखंड में जो भूमिहीन हैं या जो उद्यमी टाइप के लोग हैं जो मशरूम को करना चाहते हैं बड़े स्तर पे, तो इसकी झोपड़ियां बनती हैं, इसको पक्के मकान में ले सकते हैं। आपके पास कोई पुराना कमरा हो उसमें कर सकते हैं, या एक आजकल चला है कंट्रोल कंडीशन का क्रॉप रूम बनता है, इसका जो प्रोडक्शन जहां लेते हैं उसको फसल कक्ष कहते हैं, तो वो कंट्रोल्ड वाला बन रहा है। उसमें क्या होता है कि आप गर्मी में भी बटन मशरूम ले सकते हैं जिसको जाड़े की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अपने बुंदेलखंड क्षेत्र वैसे ही गर्म जलवायु, तो ऐसी स्थिति में अपना बुंदेलखंड अनुकूल है मशरूम की खेती
0: कमरे के अंदर कर रहे हैं, इसलिए अनुकूल है समय के हिसाब से। देखिए अभी हम लोगों ने इस पे भी थोड़ा सा विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रचार प्रसार किया था कि आप वर्ष भर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं।
1: जी।
0: उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए साधारण कमरा या झोपड़ी है, तो आपको मशरूम की प्रजातियां समय के साथ अलग अलग लगानी है, अलग मौसम में अलग प्रजाति, गर्मी में गर्मी वाली, जाड़े में जाड़े वाली।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इसके कोई विशेष महीने सिलेक्ट किए गए हैं कि जैसे अभी हम और आप खरीफ की फसल के लिए सोचते हैं कि जुलाई का प्रथम सप्ताह में इसकी बोनी हो जानी चाहिए, इसी तरह मशरूम की क्या विशेष महीने या कोई ऐसा विशेष मौसम दिया गया है कि तभी उसकी खेती की जाए इससे किसानों को अच्छा लाभ मिल सके?
0: जी, जो लोग सीजन के साथ करेंगे, जो कंट्रोल कंडीशन में नहीं कर रहे हैं, जो एसी लगा के नहीं कर रहे हैं,
1: जी जी,
0: उन लोगों के लिए वर्षा का समय है और या फिर जो साल का टाइम है, जैसे हम बुंदेलखंड में आप जानते हैं कि अप्रैल और मई बहुत ज्यादा गर्म होता है, यहाँ तक कि जून भी काफी गर्म रहता है जब तक बारिश नहीं आती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इस मौसम में हमको बचना चाहिए, क्योंकि मशरूम को नमी चाहिए और तापक्रम चाहिए, और इस समय ये दोनों ही नहीं मिलता है। ना हम नमी मेंटेन कर पाएंगे और ना हम उसको टेम्परेचर दे पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही, खरीफ का मौसम है, तो किसान भाइयों को अलग अलग प्रजाति, जैसे अभी ढींगरी ले सकते हैं, मिल्की ले सकते हैं, तो इनका उत्पादन आप शुरू कर सकते हैं।
1: डॉक्टर वैभव जी, जैसे आपने बताया बंद कमरे में इनका उत्पादन लिया जाता है, तो अब किसान भाइयों को क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी? जैसे आपने बताया कि जो फसल अवशेष होते हैं तो उन्हें किसी पॉलीथिन में या कहाँ भरना होगा, कैसे रखना होगा, किस तरह उन्हें तैयार करना होगा, कैसे वो उन्हें सड़ाएं या क्या करें?
0: जी, मशरूम की खेती एक नई प्रकार की अलग प्रकार की खेती है
1: जी,
0: क्योंकि किसान की आदत है वो खुले खेत में खेती करने की, ये बंद कमरे की है और इसकी प्रक्रिया भी थोड़ी भिन्न है। तो मेरा एक सुझाव है किसानों से या जो मशरूम करना चाहते हैं कि प्रशिक्षण भी दिया जाता है विश्वविद्यालय में, प्रशिक्षण भी रहता है। तो मेरा एक सलाह रहेगी कि जो भी शुरू करना चाहते हैं अधिक जानकारी या प्रशिक्षण लेके शुरू करें, तो आपके फेल होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। हालांकि शुरुआत में कोई नया काम हम करते हैं तो दिक्कत आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर नहीं सकते, सब लोग कर रहे हैं। और इसमें जो कमरे हैं ये एक प्रकार का वर्टिकल फार्मिंग है
1: जी।
0: तो जो आपका जितना भी एरिया है जिसमें आप लेना चाहते हैं, हाइट अगर हम बढ़ाते जाएं, जैसे कि जो कमर्शियली करते हैं वो 16-17 फीट की छत लगाते हैं, तो वहां पे उनका 7 गुना बढ़ जाता है प्रोडक्शन। जितना भी एरिया आपने लिया वहां पे उनका, जैसे मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट की जगह आपने ली और आपने अगर 16 फीट की छत कर ली, जो इसमें रैक सिस्टम लगता है जिसको हम टीयर सिस्टम भी कहते हैं, वो 7 टीयर सिस्टम लगेगा, 2-2 फीट का गैप देके टीयर बनते हैं। तो ये आपका 7 गुना हो जाएगा, 100 स्क्वायर फीट 700 हो जाएगा, इसीलिए इसमें

0: लाभ ज्यादा मिलता है, कम एरिया में ज्यादा लाभ मिलता है। और अलग अलग मशरूम को उगाने का अलग अलग तरीका है। जैसे हम बात कर लें बटन मशरूम की, जो ज्यादातर लोग जानते हैं, खाते भी हैं, अगर आप किसी से बात करें तो बटन मशरूम की ही चर्चा करेगा। तो उसको उगाने के लिए क्या होता है कि भूसा लेते हैं, वो बेस मटेरियल है, उसको थोड़ा सा हमें पानी अच्छे से भिगाना होता है, ऐसे करके उसमें खाद डालना होता है, चोकर डालना होता है, जिप्सम, ये सब चीजें एक रेशियो में मिला के उसको पलटाई कर करके कंपोस्ट तैयार करनी होती है। अब इसमें भी टेक्नोलॉजी बड़ी विकसित हो गई, तीन तरीके की है, एक है लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड और एक है इंडोर मेथड। तो जो लॉन्ग मेथड है वो किसान भाई बिना किसी खर्चे के अपने खेत पे पक्की फर्श पे तिरपाल पे कर सकते हैं, इसमें कोई लागत नहीं लगती है। लेकिन जो शॉर्ट मेथड या इंडोर मेथड है, इसमें फेज वन फेज टू टनल बनानी पड़ती है जिसमें लागत लगती है। तो शुरुआती दौर में किसान लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, अन्यथा विश्वविद्यालय, अगर झांसी के आसपास के किसान हैं तो हमारे विश्वविद्यालय में संपर्क करके कंपोस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। जो टियर सिस्टम है, ये एक रैक सिस्टम है, जैसे कि आपने ट्रेनों में देखा है कि थ्री टियर होता है, वही ऐसे ही आपको हाइट के हिसाब से, जैसे झोपड़ी है या कमरे हैं, नॉर्मली वो 9-10 फीट के होते हैं, तो उसमें 3 से 4 टियर लगती है। अगर 10 आपका फिट का है छत, तो आप उसमें 4 टियर लगा सकते हैं। झोपड़ी है तो ज्यादातर उसमें 3 टियर बन पाते हैं, क्योंकि ढाल रहता है, तो उसमें उतनी जगह नहीं रहती है। लेकिन जैसे कमर्शियल हम करते हैं, जो पफ पैनल से कमरे बनते हैं, जो वातानुकूलित होते हैं, जिसमें पूरी चीज कंट्रोल में है, वहां पे हम, क्योंकि खर्चा हमारा ज्यादा होता है, उसको हम 7 टियर तक ले जाते हैं कि प्रोडक्शन ऐसा आए कि आपको मुनाफा भी हो।
1: अच्छा, इसके लिए अब उन्हें बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?
0: ये बड़ा मुख्य सवाल है, क्योंकि अक्सर जो लोगों के मन में इच्छा आती भी है तो उनको बीज ना मिल पाने की समस्या से जूझते हैं और उनका मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। असल में मशरूम प्रोडक्शन के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। एक तो आपके पास सब्सट्रेट होना चाहिए, मतलब जिसपे हम कंपोस्ट या जो भी हम जिसपे उगाएंगे। मैंने सब्सट्रेट इसलिए बोला कि बटन मशरूम में इसको कंपोस्ट कहते हैं, डींगरी या मिल्की में हम सीधे भूसे को गला के और उपचारित करके, चाहे गर्म पानी से, भाप से या जल से उपचारित करके सीधे प्रोडक्शन ले सकते हैं। और दूसरी चीज है कमरा होना चाहिए, तीसरी चीज है बीज। तो बीज के लिए अभी आसपास तो कोई ऐसी लैब नहीं थी झांसी के आसपास, लेकिन जब से हमारा विश्वविद्यालय आया है, हमारे यहाँ एक बड़ी आधुनिक लैब बन गई है जिसमें हम बढ़िया कंपोस्ट और ये सब चीजें देने वाले हैं। तो हमारे से बीज के लिए आप विश्वविद्यालय में संपर्क करें, झांसी में आसपास आपको यहीं पे बीज मिलेगा।
1: अच्छा, इनकी बीज की प्रक्रिया क्या रहती है कि इनकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है या कोई इस तरह की गांठ वगैरह आती है जिससे किसान अपने यहाँ लगा सके, इनका उत्पादन कर सके?
0: जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि मशरूम में कवक है।
1: अच्छा,
0: तो ये जिंदा चीज है। अब इसको हम करते क्या है कि कोई भी अनाज हो, क्योंकि हमें गेहूं आसानी से मिलता है, तो उसको लैब में हम प्रोसेस करके उसको हम थोड़ा सा भाप उबालते हैं, फिर उसको निश्चिवीकृत करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, उसके बाद उसमें कल्चर डालते हैं। तो बीज वही होगा, लेकिन आपने जो कल्चर उसमें डाल दिया वो बन जाएगा। मान लीजिए हमने बटन मशरूम का कल्चर डाल दिया, तो उसमें जो कवक है वो दानों के ऊपर एक सफेद परत बना लेता है।
1: जी, जी, जी।
0: तो ये बीज, इसको इसलिए स्पॉन कहते हैं।
1: जी, जी, जी।
0: क्योंकि ये जीव है, इसका कोई अपना स्पोर नहीं है, हम स्पोर इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जो उसके कवक के रेशे हैं उनको दानों पे उगाते हैं, ग्रो करते हैं और उसके बाद किसानों को देते हैं। अब किसानों को अपने यहाँ जो भूसा है या कंपोस्ट है उसमें इन दानों को अच्छी तरीके से मिलाना होता है। एक पॉलिथीन बैग में, अगर आप बैग सिस्टम लगा रहे हैं या आपने बेड सिस्टम लगाया हुआ है तो बेड बना के उसमें भी भर सकते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ज्यादातर जो ढींगरी है या मिल्की है इनको तो बैग में करते हैं। बटन के साथ ये ऑप्शन रहता है कि आप बेड सिस्टम भी कर सकते हैं, बैग सिस्टम भी कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, ये जो मशरूम होता है तो किसान भाई उगाते हैं और इसके कोई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं जिससे कि वो औषधि के रूप में इनका प्रयोग कर सके?
0: जी, ये तो बड़ा अच्छा सवाल है कि एक तो एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो भी आप बीज लें किसी अच्छी लैब से लें,
1: बिल्कुल,
0: और जो बीज आप लगाएं उससे जो मशरूम निकले उसी का सेवन करें और बेचें, लाभ कमाएं। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि इसके न्यूट्रिशनल कुछ बेनिफिट हैं, तो औषधीय जो मशरूम हैं उनके न्यूट्रिशनल से ज्यादा औषधीय गुण होते हैं।
1: जी जी।
0: जैसे दुनिया में जो सबसे महंगा भी है मशरूम वो कीड़ा जड़ी है, तो कीड़ा जड़ी जो है कीड़े के ऊपर कवक हो जाती है
1: जी,
0: उसको आप दवा के रूप में खाते हैं। ऐसे मशरूम जिनको हम दवा के रूप में लेते हैं उनको हम औषधीय बोलते हैं
1: जी।
0: और कुछ ऐसे मशरूम हैं जिनको हम खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसमें औषधीय गुण है, जैसे कि बटन मशरूम, इसमें क्या है, विटामिन डी है। विटामिन डी आपकी बॉडी के अलावा कहीं और नहीं मिलता लेकिन मशरूम में मिलता है, और अगर इसको थोड़ा यूवी का हम एक्सपोजर दे दें तो ये विटामिन डी का कंटेंट बढ़ भी जाता है।
1: जी।
0: तो विटामिन डी का बड़ा अच्छा सोर्स है। फिर इसमें प्रोटीन होता है, 22 से लेकर 35% तक मशरूम में प्रोटीन होता है अलग अलग प्रजातियों में। तो आप देखेंगे 22% प्रोटीन बड़ा कम फसलों में है। उसके अलावा इसमें फाइबर

0: होता है। जो बटन मशरूम है ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है।
1: जी
0: या हम बात करें शिटाके की, उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। शिटाके का मेडिसिनल इस्तेमाल भी है,
1: जी
0: दवाएं बनती हैं।
1: डॉक्टर वैभव जी, आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और मशरूम की खेती के बारे में, जो हमारे बुंदेलखंड में बहुत कम, यानी कि कहें कि ना के बराबर की जाती है, तो आपने जानकारी दी कि इससे किसान भाई दुगना फायदा ले सकता है मशरूम की खेती करके, और आपने किसान भाइयों को बिल्कुल सभी मुद्दों पर, सभी स्तर पर जानकारी दी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो देखो भैया बहन, हरा कितने उमदा से बहन जो बतका सुनूं, मशरूम की खेती प्रसंस्करण उत्पाद एवं बाजार की संभावना है। और अपन को जानकारी दे रहे थे डॉक्टर वैभव सिंह, प्रशिक्षण सह शोध सहायक पादप रोग विज्ञान विभाग, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से। और इनसे बतकाव कर रहे थे संतोष पाल भैया। तो देखो भैया बहन, हो कितने उमदा से, और भैया बहन ने बताओ कि देखो ज्यादा अपन खा खुले में भी नहीं करने हैं, बंद कमरे में अपन खेती कर सकत कैसे करने हैं, और कौन कौन से कल्चर कैसे मिलाने हैं। तो पूरा प्रशिक्षण भी उनके रानी लक्ष्मी कृषि विश्वविद्यालय दौ जाते। तो हमारे जो किसान भैया करवो चाहे तो जाके संपर्क कर सकते उनसे, अपने प्रशिक्षण लेके। और अगर अपन खेती करें तो कछु चीज को भी अपन, जैसे मान लो जो भी खेती कर रहा है वहां को अनुभव अपन ले लो, तो अपन वहां हिसाब से अच्छी पैदावार कर सकते हैं। भैया देखो अपन आगे बतकाओ तो और भी करें का नहीं, सुन लो जो कछु संदेश।
3: अरे भैया का करें, जब खेती किसानी में कौन फसल में कितने पानी देवे, खाद बीज कितने से ले आवे, किसे पूछ में कछु समझ ही में नहीं आऊ।
4: अब चिंता छोड़िए किसान भाइयों, क्योंकि आकाशवाणी झांसी प्रस्तुत करता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला। 24 कड़ियों के इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि से संबंधित जानकारियाँ और व्यवहारिक अनुप्रयोग की विधियाँ बताई जाएंगी। यह कार्यक्रम 10 मई 2026 से प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
5: अरे सच में भैया?
4: हाँ बाबू, बिल्कुल सच। हाँ
2: तो भैया देखो, जो सुनो अपन ने संदेश, अब बात आउट है कि देखो जो भैया बहन है, अब बात करें कि अपन खेती बाड़ी तो कर ही रहे, खेती के संगे संगे अपन बतकाव करें। बतकाव के संगे संगे देखो भैया, अगर कछु मनोरंजन हो जाए तो और उमदा सुई लगन लगाते। तो का नहीं उमदा सुने भैया, देखो जो देवी गीत और जहाँ गाय वाले कला जगदीश, स्वयं के संगी साथी। तो अपन सुने, अपने किसान भैया बहन सुने।

देखो भैया कि तुम दासा पढ़ने में जो लोकगीत सुनो देवी गीत और जाकर गावे वाले कलाकार थे जगदीश और उनके संगी साथी। अब बात आउ थे कि देखो हमारे किसान भैया बिल्कुल देखा कि आजकल अपने खेती बाड़ी में लगे रहते हैं और खेती के संगे संगे अपन देखा कि जैसे देखो बरसात को मौसम चल रहा इस समय का होते हैं कि जो जानवर हैं मान लो जो जहरीले जीव हैं उनके काहे के बचवो है बहुत जरूरी है अपन काहे कि आजकल अपन देखे पानी बरस रहो और पानी अगर उनके देखो दल्ला है जैसे और चाहे देखो बिच्छू है सांप है तो इनके दल्लन में काहे पानी भर जात और पानी भर जात तो वे काहे बाहर खेत के बाहर आ जात और खेतन में अपन देखत के चारों बहुत सारो जम जात तो नेचर को हमारे किसान भैया बहनों को नहीं दिखाता है। लेकिन अपन हाँ काहे कि जब भी खेतन पे जाए तो खेतन में जाते समय इन जहरीले जीवों से अपन को बचने हैं। बचने कैसे हैं? एक तो सबसे पहले अपन जब भी हार खेत जाए तो आगे देखो अपन एक लकड़िया वगैरह लेके जाए, लकड़िया वगैरह लेके जावे तो उनमें काहे के देखा थे कि जैसे हमारे जो लकड़िया के संगे अपन आगे डंडा लेके जाए तो आंगन चारे में गालत जाए और हल्ला करते हुए जाए तो पता लगे भैया कौन अगर जीव बैठ हुए तो वो भाग जाए अपने से। ये बात को भी ध्यान रखें। और देखो जब भी अपन को अगर देख रहे हैं कि अगर पानी को छेद में अगर दल्ला है तो जा रहा हो तो उतने अपन को कोनो प्रकार को हाथ है जैसे पैर है अपनों तो ये सब चीजें होते हैं नहीं लगाने हैं। ये बात को हमारे किसान भैया बहनों को बिल्कुल ध्यान रखने का से भैया अगर अपन ने ये सब चीजें उनको छेद बंद करने की कोशिश करी वो कल के दिन वही जानवर जहरीलो जीव है वो बैठे हुए वहां पे वो काट सकता है। अगर कोनो भी अगर लगे अपन हो कि कोनो जीव ने अपन काट लो तो तुरंत दिन भी एक देखो इतने उतने अपन झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े सीधे डॉक्टर भैया तुरंत अस्पताल में जाए और हर प्रकार की देखो उतने दवाई उपलब्ध होते हैं तो अपन देख लेंगे कोनो जानवर ने या कोनो जीव ने अपन कैसे जहरीले काट लो है कोनो कीड़ा मकूड़ा ने तो तुरंत उनको इलाज कराएं और डॉक्टर भैया की सलाह लें। जिन्हें कि भैया देखो अपन होते हैं बीते रहे तो उनमें नुकसान हमारे किसान भैया बहन को हो जाते हैं तो ये बात को हमारे किसान भैया ने बिल्कुल ध्यान रखना है। और जब भी खेती में अपन काम कर रहे हैं तो हमारे किसान भैया बिल्कुल जाना थे एक तो सबसे पहले बचाव के लाने का करने कि देखो जो अपने पैरन में भैया कहा है कि नंगे पाँव नहीं जाने नंगे पाँव के साथ नाम कहा है अपन बढ़िया जूता पहन के जाए काश में ये देखो कोनो बिच्छू है जैसे है तो ये सब चीज

ऐसे मजबूत जूता अपन पहने कि जी में अपन खेती में हमारे किसान भैया लगे रहते हैं, तो उनमें हमारे किसान भैया कोनो प्रकार को नुकसान ना हुए। और ये बात को हमारे किसान भैया बहुत अच्छे जाना थे कि देखो बरसात के समय कई प्रकार की अपनी ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, और जब भी देखें कि मौसम बदल रहा है और बादल चढ़े हैं तो कोनो प्रकार के पेड़ के नीचे नहीं आने, और जैसे भैया देखो चारों खट्टो या भरी देखो पुराने चारों पड़ो हुए या पुराने खर पतवार रखे होते तो उतने उतने बरसात में उनका नहीं उठाने का, इसमें ये उगे नहीं भी जीव जाके छिप जाते हैं। तो ये बात उनको भी हमारे किसान भैया बिल्कुल नहीं खाए। अपन खेत में का गलत के लिए मेड़ किनारे इकट्ठो बूढ़े जो बरसात के जो अवशेष में जो अपनी फसल कटी थी उनके जो अवशेष बचे जो पानी बरस हो तो पानी बरस तो उनके अंदर जीव पनप जाते हैं। तो ऐसा भी करने जब भी उन जीव अगर अपन देख लें कि देखो अगर अपन जरूरत है अपने खेत में जहाँ रखो है ढेर लगो तो उन्हें कछु लकड़िया कड़िया से या अपने डंडा से उनको हटाना है, यानी कि अपन देखो डायरेक्ट उनका भैया हाथ उठान लगे तो कछु काहू कहू नुकसान सोए अपन झेलन लगा। ये बात को भी हमारे किसान भैया बिल्कुल खून ध्यान रखने। और बात आओ से भैया देखो घड़ी अपन को आगे बोलवे की ज्यादा नहीं दे रही, तो कहने हमारे कार्यक्रम को पतो सुई नोट कर लो। कार्यक्रम को पतो है कार्यक्रम चौपाल द्वारा के निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड है 284128। देखे संगे संगे विपिन भैया खान दो आ गया। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल FM 103 पर। हम आकाशवाणी की झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

संध्या के 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7:19 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। 7:31 पर आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे शीर्षक गीत में फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज 8:09 जो आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार, जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, नए पुराने गीत सुहाने।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीत समीर ने लिखा था, संगीत दिया था आनंद मिलन ने, फिल्म का नाम था दिल। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, बाघी फिल्म से। आवाज अंकित तिवारी और श्रुति पाठक की है, गीत लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है गौरव रोशन ने।

0: भैया कछु अनमने दिखा रहे कावा है
1: भैया। एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
0: हैं अपन को भैया पता नहीं है आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
1: हेलो किसान फोन इन जोका है भैया?
0: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उसको समाधान करवे के लाने बैठे है विशेषज्ञ भैया।
1: कैसे पाए समस्या को समाधान?
0: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
1: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
0: फोन नंबर है 0510-232-0068।
1: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अब ना होए हमारे किसान भैया परेशान।

0: じゃあり。
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। बरसात फिल्म से आवाज अभिजीत अलका याग्निक की है और गीत लिखा है समीन ने, संगीत दिया है नदीम सिरवन ने।
2: He loves me. He loves me not. He loves me.

आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है जीत प्रीतम ने। फिल्म का नाम है मेरे यार की शादी है।

अभी आप सुन रहे थे राज फिल्म से, आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, मुस्कान फिल्म से, आवाज सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की है। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है निखिल बिनाय ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, नए पुराने गीत सुहाने। अभी आप सुन रहे थे मुस्कान फिल्म से। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, साजन फिल्म से। आवाज अनुराधा पौडवाल की है, गीत लिखा है समीन ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

इसी गीत के साथ ही अब फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर बनेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर, केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया किसानों, उद्यमियों और लघु उद्यमों को नई गति मिलने का विश्वास। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक संपन्न। आखिरी दिन शिक्षाविदों, पद्म पुरस्कार सम्मानित हस्तियों और मीडिया से हुआ संवाद। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़कर इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही प्रदेश सरकार। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए वरुणा नदी के किनारे 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। 43 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 10,998 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये वाराणसी के प्रमुख स्थलों को कनेक्ट करेगा।
2: एक नया कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिसमें वरुणा नदी के साथ साथ कंप्लीट एक एलिवेटेड कॉरिडोर हैम मोड में डेवलप होगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट एक तरीके से देश के लिए जो बहुत पुराने शहर है उन शहरों के लिए मॉडल बनेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज 7 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। श्री वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने काशी में कंप्लीट 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को भी मंजूरी दी है। गंगा किनारे वाला ये कॉरिडोर 46 किलोमीटर लंबा होगा जिस पर 14,448 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह दोनों परियोजनाएं शहरों में विकास का पूरे देश में मॉडल बनेंगी।
2: गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इसके साथ ही यूरिया 2026 की राष्ट्रीय निवेश नीति और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी प्रदान की गई है। यह स्कीम वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू की जाएगी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। इस समझौते पर और जानकारी हमारे संवाददाता से।
3: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70%

0: प्रतिशत शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। तकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर देश भर के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर यूके को जाने वाले सामानों के लिए एक साथ फ्लैग ऑफ सेरेमनी का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इसी क्रम में कानपुर नगर में भी फ्लैग ऑफ समारोह हुआ। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस समझौते से स्थानीय निर्यातकों को लेदर, फुटवेयर समेत दूसरे उत्पाद के लिए बड़ा बाजार मिलेगा।
2: अगर हम लेदर की बात करें तो अभी तक लेदर के उत्पादों में या फुटवेयर में या तमाम अन्य उत्पादों में 16% का शुल्क लगाया जाता था, आज से ये शुल्क 0 हो जाएगा। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, अपैरल्स की बात करें, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो ये भी शुल्क 0 हो जाएगा, जिसमें 12% का शुल्क लगाया जाता था। और अब लगातार हमारा जो एक्सपोर्ट है यूके को वो बढ़ेगा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयकों पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक आज संपन्न हो गई। अंतिम दिन समिति ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों, निदेशकों, विधि एवं राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ बात की। वहीं प्रदेश के पद्म पुरस्कार विजेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ भी संवाद किया। समिति को प्राप्त सुझावों और अभिमतों पर आगामी चरणों में विचार किया जाएगा। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि कमेटी 10 राज्यों में जा चुकी है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से कई अहम सुझाव भी मिले हैं और जो राष्ट्रहित में होगा वो संसद के सामने सिफारिश रखी जाएगी।
3: 10 राज्यों में हम जा चुके हैं, जिसको हम कह सकते हैं काफी लोगों से सुनवाई, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को, हर तरह के स्टेक होल्डर्स को सुना। हम कमिटी इससे बहुत बेनिफिट हुई, कई ग्रेट इनपुट हमें मिले। पूरा टीम रूप में हम काम कर रहे हैं कि हम सब अपनी अपनी बात कहते हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा होगा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वो हम पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन देंगे।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस 2026 पर आयोजित समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़कर प्रदेश सरकार इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने देश में पहली बार कौशल विकास का मंत्रालय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया।
4: सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स हमारे पास है, यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए। मैं आभारी हूं आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया।
1: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ की अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में प्रदेश के संबद्ध कॉलेजों के MBBS, MD, MS, नर्सिंग और पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। साथ ही 55 मेधावी छात्राओं को गोल्ड और सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए बल्कि कठिनाइयों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
5: हमें ऐसे वडिलों से, नागरिकों से, देश प्रेमियों से, शहीदों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और जीवन में उतारने का काम करना चाहिए। संघर्ष जीवन का

0: स्वाभाविक हिस्सा है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीख कर आगे बढ़ता है, वही इतिहास रचता है।
1: प्रदेश में बीते 24 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भाग में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं बारिश के कारण बाराबंकी में घाघरा, कानपुर में गंगा और कुशीनगर में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। देवरिया में भी सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए निगरानी तेज कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों पर बनेंगे एलिवेटेड कॉरिडोर, केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया किसानों, उद्यमियों और लघु उद्यमों को नई गति मिलने का विश्वास। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में 3 दिवसीय विचार विमर्श बैठक संपन्न। आखिरी दिन शिक्षाविदों, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों और मीडिया से हुआ संवाद। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, स्किल को स्किलिंग के साथ जोड़कर इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही प्रदेश सरकार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बुंदेली लोकगीतों का, खुशबू माटी की। आइए इस कार्यक्रम की आरंभ में सुनते हैं नारायण सिंह कुशवाहा की आवाज में एक गीत।

0: भैया कछु अनमने दिखा रहे कावा है
1: भैया। एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
0: हैं अपन को भैया पता नहीं है आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
1: हेलो किसान फोन इन झोंका है भैया।
0: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उनको समाधान करवे के लाने बैठे हैं विशेषज्ञ भैया।
1: कैसे पाए समस्या को समाधान?
0: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
1: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
0: फोन नंबर है 0510-232-0068।
1: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हुए हमारे किसान भैया परेशान।

0: डेंगू चिकन गुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, स्वच्छता गीत।

इसी बुंदेली लोकगीत के साथ ही अब बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम समाप्त होता है। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित होंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मदन मोहन खन्ना की लिखी झलकी वादों की शाम। निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर।

0: आज शाम
1: वादों के नाम
0: हमारी शादी के वर्षगांठ का दिन
1: आज की शाम को दोनों का प्रणाम।
0: हर साल की तरह
1: हम एक दूसरे को
0: साक्षी मानकर
1: मैं यानी सुदेश कुमार बिंदु,
0: मैं कमला श्रीमती सुदेश कुमार
1: बिंदु।
0: ओ बिंदु तो तुम्हारा साहित्यिक नाम है।
1: वो तो क्या हुआ, पूरा नाम लेकर ही शपथ ली जाती है।
0: चलो हो गया ना, अब आगे बढ़ो।
1: शपथ लेते हैं
0: हम एक दूसरे के प्रति
1: वफादार रहेंगे,
0: प्यार से रहेंगे,
1: झगड़ा नहीं करेंगे,
0: कभी नहीं लड़ेंगे,
1: एक दूसरे का आदर करेंगे,
0: एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे,
1: मन की बात बताएंगे,
0: झूठ नहीं बोलेंगे,
1: सच सच कहेंगे
0: और किए हुए वादों को पूरा करेंगे,
1: वादे पूरे करेंगे
0: जो कभी पूरे नहीं हुए,
1: जो कभी पूरे नहीं हुए। ठहरो ठहरो, क्या मतलब है तुम्हारा?
0: मैं आज वादों की शाम की खुशी में विघ्न नहीं डालना चाहती, मगर फिर भी क्या पूछ सकती हूँ कि तुम जो कहते हो उस पर अमल भी करते हो?
1: मगर कौन सा वादा कह के ये, और कुछ कहा ना गया कि मुझे आपसे शिकायत है।
0: अभी बताती हूँ।
1: अरे अरे कहाँ जा रही हो?
0: ये देखो।
1: ये क्या, कागजों का पुलंदा? अरे अरे तुमने भी कोई उपन्यास लिख डाला?
0: उपन्यास? जी हाँ, उपन्यास ही है शिकायतों का।
1: शिकायतें? अरे बाबा, बिगड़े हुए हैं, जिद पे हैं, कोई उनसे क्या कहे, इस वक्त बात बात के दफ्तर बनाएंगे।
0: तो आज्ञा है, खोलो शिकायतों का दफ्तर।
1: ना बाबा, बंद ही रहने दो इस दफ्तर को। आज शाम प्यार की शाम है, वादों की शाम है, हमारी शाम है, जितनी भी हसीन बन सके बनाई जाए।
0: तुम एक शाम की बात करते हो, यहाँ मैं हर शाम इंतजार करती रही, कब आप पिछले साल वादों की शाम की वादों को निभाने शाम को जल्दी घर आते हैं।
1: कमला मैम,
0: सबके सब पुरुष 5 बजे घर आ जाते हैं, कोई अपनी पत्नी का हाथ बटाता है, कोई बच्चे खिलाता है, कोई पत्नी को लेकर बाहर घुमाने चला जाता है, मगर तुम हो के।
1: कमला, तुम मेरी तुलना उन क्लर्कों से करती हो जो संसार में केवल क्लर्की करने आते हैं और क्लर्की रिटायर हो जाते हैं।
0: उनकी पत्नियां तो खुश हैं, उनका जीवन तो सुखी है, और बुरा न मानना तुम भी तो एक क्लर्क ही हो।
1: हाँ हाँ, मैं एक क्लर्क हूँ, ये मेरी किस्मत है कि मैं साहित्यिक होते हुए भी एक क्लर्क हूँ, कर्म से, धर्म से नहीं।
0: और अपनी पत्नी के प्रति तुम्हारा धर्म?
1: अपनी तरफ से तो निभा रहा हूँ,
0: मगर गृहस्थ की गाड़ी अकेली मैं ही चला रही हूँ।
1: तुम चाहती हो साहित्यकार अपना कलम तोड़ दे और लून तेल लकड़ी के चक्कर में फंस जाए?
0: मैं चाहती हूँ साहित्यकार और कुछ नहीं तो अपने वादे निभाए।
1: कौन सा वादा भंग किया है मैंने?
0: एक हो तो बताऊँ, इंटरिम रिलीफ को लो, तक कहती थी सारी की सारी इंटरिम रिलीफ तुम्हारे कदमों में रख दूंगा मेरी रानी। क्या हुआ जिस रकम का?
1: वो जिस रिलीफ के लिए सरकार ने दी थी उस फंड में दे दी।
0: क्या मतलब?
1: कमला, हम लोगों के छोटे मोटे कर्जे उतर गए।
0: मगर ये कर्जे
1: क्या करूँ कमला, सारी तनख्वाह तो तुम्हें दे देता हूँ, कभी कभार कोई आवश्यकता आन पड़ती है तो इधर उधर से पैसे पकड़ने पड़ते हैं।
0: सारी तनख्वाह? आहा, सारी तनख्वाह तो तुमने ऐसे कहा जैसे मैं तो सेविंग बैंक में जमा करवा देती हूँ ना, जानते हो घर का खर्च किस तरह चलाती हूँ। तुम क्या जानो, तुम्हें तो पड़ी रहती है अपनी गोष्ठियों की। मैं पूछती हूँ जी, क्या दिया है तुम्हारे साहित्य ने तुम्हें? नाम मात्र भी कुछ नहीं मिलता।
1: ना सही, पर कमला नाम तो है।

0: खाली नाम से रोटी तो नहीं चलती। मैं कहती हूँ तुम और कोई काम क्यों नहीं करते, ओवर टाइम लगाओ। सभी क्लर्क इतना इतना पैसा बनाते हैं।
1: ओवर टाइम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कमला।
0: जी हाँ, गोष्ठियों से फुर्सत मिले तब ना।
1: साहित्य मेरा जीवन है।
0: और मेरा जीवन? कभी ये भी सोचा है मैं अकेली पड़ी रहती हूँ घर में क्या करती हूँ? क्या मेरा दिल नहीं करता कभी बाहर घूमने को?
1: तुम बाहर निकलना ही नहीं चाहती। मैं कितनी बार कह कहकर हार गया।
0: बाहर निकलने के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए, और मेरे पास कोई अच्छी साड़ी भी नहीं।
1: साड़ी? क्यों जी, वो साड़ी क्या हुई जो जनाब ने पिछले महीने ही खरीदी थी? मेरी अनलिखी कविता की रॉयल्टी?
0: वो तो आउट ऑफ डेट हो गई।
1: ओहो हो, मुझे क्या मालूम था कि आजकल कपड़ों पर दवाइयों की तरह तारीखें पड़ी होती।
0: और देखो ना, अब साड़ी का फैशन ही कहाँ रहा है। अब तो चलता है कुर्ता पायजामा या लुंगी।
1: कुर्ता पायजामा और लुंगी?
0: हाँ हाँ, जमाने के साथ तो चलना ही पड़ता है ना।
1: डार्लिंग, जमाने के साथ चलना है तो मेरा साथ दो।
0: तुम्हारा साथ?
1: हाँ कमला, जैसे शादी से पहले तुम मिलने चली आती थी, अब भी आ सकती हो।
0: काश ऐसा हो सकता।
1: ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कितने अच्छे थे वो दिन।
0: हम रोज मिलते थे,
1: कहीं दूर निकल जाते थे,
0: कहीं एकांत में।
1: मैं अपनी कविता पढ़ता था,
0: मैं उसे गा कर सुनाती थी।
1: तुम्हारी आवाज में जादू था,
0: तुम्हारी कविता में अमृत।
1: तब तुम्हें मेरी कविता से प्यार था,
0: तब तुम्हारी कविता में मैं थी, तब तुम्हें मुझसे प्रेम था।
1: उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। प्रेम तो तुमसे अब भी है कमला। हाँ, कविता का रंग जरूर बदल गया है।
0: रंग बदल गया है या तुम बदल गए?
1: कैसी बातें करती हो कमला, मेरे लिए तो तुम अभी वही हो। मेरी कम्मो,
0: जाओ जाओ, बातें न बनाओ।
1: बातें न बनाओ तो तुम्हें कैसे बनाऊं?
0: बातों से नहीं, मेरे सुदेश बनकर मनाओ।
1: ओ, मेरी कम्मो, मेरी सपनों की रानी।
0: अब सपने साकार हो गए ना।
1: तुम्हें क्या हो गया है आज, तुम अपने आप को ऐसा क्यों समझती हो डार्लिंग? मेरा ख्याल है मैं नहीं, तुम बदल गई हो। हाँ तुम।
0: हाँ हाँ, मैं बदल गई हूँ।
1: हाँ, ना मेरे घर आने पर पहले सा स्वागत, होठों पे मुस्कान, ना आंखों में चमक, ना चेहरे पे वो खुशी। बस बस, अब तो रह गया है बात बात पे लड़ना, बहस करना, झगड़ना।
0: हाँ हाँ, मैं लड़ाकू हूँ ना, दिन भर लड़ती रहती हूँ ना दीवारों से, अकेली पड़ी रहती हूँ। फूट गई मेरी किस्मत।
1: किस्मत तो हमारी एक बंधन में बंध चुकी है भगवान।
0: तो कौन रोकता है, खोल दो नए बंधन, छोड़ दो मुझे। मैं आज ही चली जाऊंगी बाबूजी के यहाँ।
1: कमला डार्लिंग सुनो तो।
0: मैं नहीं रुकने की।
1: सुनो कमला, सुनो तो प्लीज।
2: क्यों जी, कोई है घर में?
3: आवाजें तो आ रही थी।
1: कौन है?
0: मनोज और सीमा है।
1: आप क्या किया जाए?
0: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि झगड़ा रोक दिया जाए या जारी रखा जाए।
0: मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो आज ही बाबूजी के यहाँ जा रही हूँ।
1: मगर कमला सरा सोचो, बाहर मेहमान खड़े हैं, तुम चाहती हो वो हमारा मजाक उड़ाए? क्या थोड़ी देर के लिए ये झगड़ा बंद नहीं हो सकता?
0: अच्छा अच्छा, मान लेती हूँ, मगर एक शर्त पर।
1: किस शर्त पर बोलो?
0: मेहमानों के जाते युद्ध विराम समाप्त हो जाएगा।
1: युद्ध विराम? ठीक है, मुझे मंजूर है।
4: अरे भाई, अंदर से अपनी कहते रहोगे, बाहर से हमारी भी सुनोगे?
0: बुलाओ ना उन्हें।
1: अरे आइए आइए आइए, अरे आप हैं।
3: और आप क्या समझे थे?
2: कमला बहन, रेडियो क्यों बंद कर दिया?
0: रेडियो?
2: कोई नाटक सुन रहे थे क्या?
1: नाटक? अरे हाँ हाँ, वो बीवी का भाषण सुन रहा था।
3: अरे हाँ, ब्याह की वर्षगांठ मुबारक हो भाई।
2: हम तो बधाई देने आए थे।
1: धन्यवाद।
2: क्या प्रोग्राम है आज आपका?
1: प्रोग्राम?
3: जी हाँ, हम ये जानने आए थे कि आप ये पुण्य त्योहार कैसे मना रहे हैं।
2: पुण्य त्योहार? आपका आपस में प्यार देखकर मानना ही पड़ता है आप एक आदर्श दंपति हैं।
3: ना कोई झगड़ा, ना कोई तकरार,
2: बस प्यार ही प्यार।
3: एक ने कहा,
2: दूसरे ने माना।
3: मैंने सीमा से बहुत दफा कहा है कमला बहन से कुछ सीख लो, कुछ।
2: और आपको सुदेश भाई साहब से शिक्षा लेनी चाहिए, समझे?
3: बस सुदेश जी, क्या बताऊँ, हमारी श्रीमती जी तो तरह तरह सी बात पर झगड़ा कर बैठती
2: है। बिल्कुल गलत, छोटी छोटी बातों को बढ़ावा आप देते हैं।
3: देखिए मैडम, पहल हमेशा तुम्हारी ओर से ही होती है और तुम खाम खाम बोलना शुरू कर देती हो।
2: तुम तो मेरी कोई सुनते ही नहीं हो, बस हंसना शुरू कर देते हो, जैसे मैं कोई पागल हूँ या।
0: सीमा ठीक कहती है, आपको इसकी बातों पर हंसना नहीं चाहिए,
3: बल्कि रोना चाहिए।
0: और आप लोगों के सिवा हंसने की और आता ही क्या है?
2: ये मर्द लोग हमारा दुख दर्द जान ले तो सारा झगड़ा ही ना खत्म हो जाए।
0: ये तो घर घर की कहानी है बहन, मर्द हमेशा अपनी मनवाना चाहते हैं, बस।
2: आप ठीक कहती हैं।
3: मगर सुदेश जी, मुसीबत तो ये है कि पढ़ लिख कर ये औरतें मर्दों पर अपना

0: अधिकार जताना चाहते
1: हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ।
2: देखा देखा, मर्द कितनी जल्दी औरतों के खिलाफ एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
3: और दे मर्दों के खिलाफ अपना यूनाइटेड फ्रंट बनाने में जरा भी देर नहीं करती।
0: और औरतों का यूनाइटेड फ्रंट बजाय पति पत्नी में सुलह सफाई कराए तलाक दिलाने पर जोर देता है।
4: आप यहाँ भी बाज नहीं आए अपनी मट्टी उछालने में, तलाक की तारीफ के गुनगाने शुरू कर दिया आपने।
5: तो दोस्त, तुम्हारे यहाँ भी तलाक की चर्चा होती रहती है ना?
0: यहाँ तो केवल चर्चा ही होती है यार, बाहर के देशों में तलाक यूं मिलता है जैसे हमारे यहाँ बाजार में डबल रोटी।
3: और तो और, मर्द बेचारा काम काज से थका हारा मीठी नींद में दो चार खराटे भर ले तो अगले दिन तलाक।
2: और औरत खाने में जरा सा नमक ज्यादा डाल दे तो बेचारी को तलाक मिल जाती।
4: तलाक तलाक तलाक, मैं तो तंग आ गई हूँ ये सुन सुनकर। तो दे दो ना, दिल का भड़ास निकाल लो ना।
0: सीमा, ऊटपटांग मुंह से निकालते हुए जरा तो सोच लिया करो, हम कहाँ हैं, किस जगह हैं।
4: तो घर चल के ही बात कर लेना, मैं जा रही हूँ।
0: सीमा सुनो तो, मैं भी आ रहा हूँ।
5: शुक्र है चले गए, आदर्श पति पत्नी को देखने आए थे।
2: वो तो देख कर चले गए, अब क्या इरादा है?
5: क्या मतलब?
2: युद्ध विराम समाप्त किया जाए,
5: यानी लड़ाई दोबारा शुरू कर दी जाए।
2: हाँ
5: कमला डार्लिंग, छोड़ो भी गुस्से को।
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ हमने कहा किस बात पे युद्ध विराम किया था?
5: युद्ध रुक नहीं सकता है।
2: जी नहीं, मैं अपना फैसला चाहती हूँ। बताइए मैं क्या कह रही थी?
5: आप, हाँ आप शायद अपने बाबूजी के यहाँ जा रही थी।
2: हाँ याद आया, तो सुन लीजिए मैं आज ही जा रही हूँ।
5: जा रही हूँ, ठीक है मैं छोड़ाऊंगा, मगर जरा सोचो मेरी रानी, क्या आज ही, आज हमारी शादी की वर्षगांठ है। याद है आज के दिन हमारा गठबंधन हुआ था और तुम उसे खोलना चाहती हो, मुझे छोड़ना चाहती हो। छोड़ना ही है तो छोड़ो अपनी जली कटी बातों को, अपने गुस्से को, अपने गर्म स्वभाव को।
2: तभी तो कहती हूँ ना सुखी हो जाओगे मुझे छोड़।
5: ऐसी बातें करती हो कमो डार्लिंग, आज तुम्हें क्या हो गया है? देखो देखो देखो देखो मेरी तरफ देखो। हाँ मेरी आंखों में झांको, क्या मैं तुम्हारा सुदेश नहीं हूँ?
2: देखो अब तुम प्यार के ओछे हथियार पर उतर आए हो, जंग में मोहब्बत के शब्द इस्तेमाल करके तुम जंग के नियमों को भंग कर रहे हो।
5: जंग और मोहब्बत में सब जायज है डार्लिंग। कितनी खूबसूरत लगती हो तुम गुस्से में।
2: तुम्हारा मतलब है तुम्हें सुंदर दिखाई देने के लिए मैं लड़ती ही रहूं?
5: लड़ना भी एक आर्ट है डार्लिंग, और बिना बात के लड़ने वाला एक महान आर्टिस्ट है, कलाकार है।
2: देखो देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो।
5: उनको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है।
2: और तुम्हें आता ही क्या है?
5: इस सादगी पे कौन न मर जाए या खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं।
2: हाँ, यानी मतलब ये हुआ कि मेरी बातें तलवार की तरह तीखी हैं।
5: ऐसी तीखी कम हो कि ये घायल प्रेमी आज तक तड़प रहा है।
2: और अब क्या चाहता है ये घायल प्रेमी?
5: सफेद झंडी दिखा रहा है सुलह की।
2: अब लड़ झगड़ कर मनाने चले।
5: बड़ा मजा उस मिलाप में है जो सुलह हो जाए जंग होकर।
2: सुलह की शर्त क्या है?
5: वही पिछले साल वाली शर्तें, मैं वादा करता हूँ।
2: फिर वही वादों की शाम?
5: हाँ डार्लिंग, आज भी वही तारीख है, वही शाम है।
2: तो शपथ लो।
5: तुम भी साथ कहो।
2: हम शपथ लेते हैं,
5: हम आपस में नहीं लड़ेंगे,
2: नहीं झगड़ेंगे,
5: लड़ेंगे भी तो जल्दी सुलह कर लेंगे
2: आज की तरह।

वादों की शाम आप सुन रहे थे मदन मोहन खन्ना की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में शीर्षक गीत। आज का शीर्षक है फूल। आइए इस कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं आरजू फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन।

0: जीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। मैं शीर्षक गीत, आज का शीर्षक है फूल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। मैं शीर्षक गीत, आज का शीर्षक है फूल। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। फिल्म का नाम है प्यार किए जा।

आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। गीत लिखा है इंदीवन ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में शीर्षक गीत। आज का शीर्षक था फूल। इसी गीत के साथ ही अब फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या और उसके तत्पश्चात न्यूज 8:09 जो आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कम्प्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए, 6 नए प्लांट ऐड

0: करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरू ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं, जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है, जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस्ड फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
5: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में

आधारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक

0: शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आकाशवाणी की मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित होंगी विविध भारती के कार्यक्रम।

अब आशा भोसले को सुनिए फिल्म इजाजत में, बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। We'll be right back.

0: अभी आपने आशा भोसले को फिल्म इजाजत में सुना, अब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुनिए पारसमणी फिल्म में। असद बवाली ने गीत की रचना की है और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: वो जब याद आए बहुत

अभी आपने जूली फिल्म में किशोर कुमार को सुना। राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की थी आनंद बख्शी ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत।

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे। तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों, जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों,

0: फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस वक्त विक्की अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया। जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता, और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 बजे ऑन किया, और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूँ। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ, और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूँ, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया, और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा का? मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी, और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी, और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है, और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था, और दस्तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए, और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए, और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ, एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था, जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काफी छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथे बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तो इतने तेज

से क्यों चला रहे हो? गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए, और उन्होंने कहा मदन जी मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को, और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

सन 1976, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए इस कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कर्ज फिल्म का ये गीत। आवाज थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, सिंदूर फिल्म से, आवाज मोहम्मद अजीज की है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। कुदरत का कानून फिल्म से आवाज लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की है। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

गीत आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं नितिन मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

इसी गीत के साथ ही अब चित्रपट संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। एफएम 103 पर यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए इस कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

इसी गजल के साथ ही अब सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त तो होता है। FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे हिंदी में समाचार और उसके तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था, दूसरे

0: चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
2: Semicon 2.0.
3: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: The minister said
1: the cabinet also cleared